100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज वैशाख मास की 27वीं तिथि शक संवत 1948 तदनुसार 17 मई 2026 दिन रविवार प्रातः के 5:55 हुए हैं और अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं स्वेच्छा सुरों की इस पावन बगिया में, भक्ति संगीत कार्यक्रम पुष्पांजलि में। सुबह की इस ताजा हवा में चलिए अपने दिल के मंदिर के कपाट खोलते हैं और ईश्वर के चरणों में श्रद्धा के कुछ सुरों के फूल अर्पित करते हैं और डूब जाते हैं भक्ति के इस महासागर में।

हर अच्छे काम की शुरुआत श्री गणेश जी से होती है। वो जो विघ्न हरता है, जो बुद्धि के दाता है और जिनके आते ही जीवन के सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं। आइए उन्हीं गजानन के चरणों में शीश नवाते हैं और मांगते हैं सुख समृद्धि का आशीर्वाद।

जिनके माथे पर चंदा और जटाओं में गंगा बहती है, वो हैं देवों के देव महादेव। कहते हैं दुनिया भले ही आपको ठुकरा दे, लेकिन जब आप हार मानकर महाकाल के दरबार में जाते हैं तो वो आपको गले से लगा लेते हैं। और जब दुनिया की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं ना, तब महाकाल का हाथ थामने का सुकून ही कुछ और होता है।

शिव अगर संकल्प हैं तो माँ पार्वती उस संकल्प की भक्ति हैं। सृष्टि का कण कण जिनके इशारे पर चलता है, जो ममता की मूरत भी हैं और दुष्टों के लिए साक्षात काल भी। जब भी जीवन में कमजोरी महसूस हो तो माँ के आंचल की छाव याद कर हर डर गायब हो जाता है।

कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है। राम नाम में वो ताकत है जो डूबते हुए पत्थरों को भी तैरा देती है और अशांत मन को परम शांति देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लीजिए और जीवन की हर मुश्किलों को मुस्कुराकर पार कर जाइए।

और जब बात प्रभु श्री राम जी की हो तो हम हनुमान जी की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमने हमेशा हनुमान जी को तस्वीरों में, मूर्तियों में हाथ जोड़े खड़ा देखा है। इतने बलशाली महाबली हनुमान जी, जिन्होंने इतनी बड़ी लंका को जलाकर राख कर दिया, इतना बड़ा समुद्र लांग गए, उनके मन में अहंकार नहीं है, उनके अंदर सामर्थ्य है, उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान है, पर वे सरल हैं, सौम्य हैं, क्योंकि वे एक भक्त हैं। और जहां भक्ति होती है वहां अहंकार का वास नहीं होता।

पता है दोस्तों, विश्वास क्या है? विश्वास वो चिड़िया है जो सुबह का उजाला होने से पहले अंधेरे में गाने लगती है। ईश्वर पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन मुश्किलों में भी आपका बाल बांका नहीं होगा। और जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान को आना ही पड़ता है।

ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं ना, और जब बात प्रेम की हो, समर्पण की हो, तो जुबां पर एक ही नाम आता है, राधे कृष्ण। कान्हा की मुरली की तान और राधा रानी का निश्चल प्रेम, ये वो एहसास है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। तो चलिए थोड़े नटखट और थोड़े भावुक अंदाज में खो जाते हैं वृंदावन की इन कुंज गलियों में इस भजन के साथ।

और घड़ियों घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि अब विदा लेने का वक्त हो चला है। आज पुष्पांजलि में हमने सुरों के जो फूल ईश्वर के चरणों में चढ़ाए, उम्मीद है उनकी खुशबू आपके पूरे दिन को महकाती रहेगी। ईश्वर पर भरोसा रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। न्यूज़ ब्रेक के उस पर हम मिलेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार गीत के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में बेली पार्क क्षेत्र स्थित तालनादौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है। इस अवसर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में एक नोटिस जारी किया है। CBSE ने कहा है कि

जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे एक संरचित समीक्षा प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। इस बीच समस्याओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन 26 से 29 मई के बीच जमा किए जा सकते हैं। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में आज से एक महीने तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। भगवान विष्णु को समर्पित पुरुषोत्तम माह को अधिक लौद और मल मास भी कहते हैं। इस महीने में प्रायः सभी धर्म केंद्रों में प्रभु के अद्भुत दर्शन और अनुपम सेवा सहित कई प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि अधिक मास मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहे और मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

नमस्कार सुप्रभात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं स्वेच्छा रविवार के इस अलसाई और खूबसूरत सुबह में। और आपका पसंदीदा कार्यक्रम सदाबहार गीत अब शुरू हो चुका है। भागदौड़ से भरी इस जिंदगी में हफ्ते के 6 दिन तो बस घड़ी की सुइयों के पीछे भागने में गुजर जाते हैं, लेकिन आज का दिन इतवार का दिन है। आज कोई जल्दी नहीं है, चाय की प्याली हाथ में हो, खिड़की से आती हल्की सी धूप हो और साथ में हो बीते जमाने के वो नगमे जो सीधे दिल को छू लें। तो बस अपनी व्यस्तताओं को कुछ घंटे के लिए अलमारी में बंद कर दीजिए और खुद को सौंप दीजिए इन मखमली यादों के नाम। चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं अपने पहले सदाबहार नगमे के साथ।

कहते हैं पहली मोहब्बत या पुरानी मोहब्बत कभी दिल से मुकम्मल तौर पर नहीं जाती, वो बस दिल के किसी कोने में एक दराज में बंद सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी जैसी महकती रहती है। और जब भी कोई पुराना गाना बजता है वो दराज खुद ब खुद खुल जाती है। क्या आपके दिल के दराज में भी ऐसा कोई नाम छुपा है? तो याद कीजिए इस बेहद हसीन नगमे के साथ।

अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे इतना भागते हैं कि रोज मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को देखना ही भूल जाते हैं। किसी पुराने दोस्त का अचानक आ जाना, या चाहे कि एक कप प्याली का परफेक्ट बन जाना, या फिर रेडियो पर अपना पसंदीदा गाना बज जाना। जिंदगी यही तो है, छोटी छोटी चीजों में सुकून ढूंढने का नाम।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

7:24 का वक्त सदाबहार गीत कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं आप आज स्वेच्छा के साथ। सनी स्पेशल है, इतवार की सुबह है और बहुत कुछ खास होता है हमारे रेडियो पर। आज भी ठीक 9 बजे आप सुनेंगे बागवानी स्पेशल सेगमेंट, जिसमें आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कॉल लाइन पर होंगे एक एक्सपर्ट। और ठीक 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस। आज का विषय है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, जिसके लिए डॉक्टर कोमल अग्रवाल MBBS MD आंतरिक चिकित्सा विभाग से आज हमारे स्टूडियोज पर उपलब्ध रहेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, इस विषय से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर 0522-2238-852 और 0522-2238-845। साथ ही आप मेल भी कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। तो मेल करना मत भूलिएगा, अपने सवालों का जवाब लेना मत भूलिएगा। फिलहाल एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए, आप सभी के रेडियो सेट पर।

0: 7:30 का वक्त सदाबहार गीतों का सिलसिला यूं ही जारी है स्वेच्छा के साथ। जानते हैं इतवार की यानी संडे की सबसे खास बात क्या होती है? यही कि आज अलार्म की आवाज से आंख नहीं खुलती बल्कि नींद खुद ब खुद पूरी होती है। रोजमर्रा के इस कोलाहल से, जिम्मेदारियों के इस बोझ से आज थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है। आज का दिन खुद के नाम करने का दिन है। इस गाने को सुनिए और अपने आप के लिए कुछ पल निकालिए।
1: बोलो

मई के ये गर्मियाँ और इतवार का दिन बहुत कुछ याद दिलाता है ना। वो बचपन के दिन जब दोपहर में बाहर जाने पर पाबंदी होती थी, कूलर की ठंडी हवा होती थी और रेडियो पर बजते यही सदाबहार गाने। वक्त बदल गया, हम बड़े हो गए, पर इन गानों की ठंडक आज भी वैसी ही है।

प्यार कितना छोटा सा लफ्ज है, लेकिन जब ये किसी से होता है तो पूरी कायनात का रंग बदल जाता है। धूप मध्यम लगने लगती है और हवाओं में एक सांस बजने लगता है। पुराने गानों की यही तो खासियत है, इनमें इश्क की वो सादगी है जो आजकल के शोर में कहीं खो सी गई है।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और देखिए वक्त पंख लगाकर उड़ चला और कब एक घंटा बीत गए पता ही नहीं चला। तो अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें आपसे विदा लेनी होगी। स्वेच्छा को दीजिए इजाजत। सदाबहार गीत कार्यक्रम से 8 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी में, जो कि रिले किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और ठीक 8:15 बजे होगी हमारी आपकी मुलाकात एक बार फिर से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ के साथ। तब तक आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गाना एंजॉय करिए और हम मिलते हैं आप सभी से गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और

0: आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृति

0: भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी

0: अपने शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत।
1: सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
2: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
1: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात।
2: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ।
1: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
0: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
1: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
2: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कम्प्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: जी गुड मॉर्निंग, आज बजकर 16 मिनट का वक्त हो चुका है। गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं आपके दो दोस्त आपके संडे को स्पेशल बनाने। मैं हूं स्विच और हमारे साथ हैं,
1: और दोस्तों मैं हूं आपका अपना दोस्त विनय। और आपको पता बताते चले कि कल आप मिले थे विनय यादव से, आज है विनय कुमार आपके साथ। तो ये जो दो नाम एक से नाम है ना, कहते हैं नवरासी, तो उनसे कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्मली संडे को आपसे हम मिलते हैं स्वेच्छा के साथ, तो इस बेहतरीन सुबह की शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग लखनऊ की शुरुआत हो चुकी है
0: बिल्कुल। तो चलिए एक प्यारे से ट्रैक के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आज के संडे को और भी स्पेशल बनाते हैं आप सभी के लिए।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर।
1: आज का मॉर्निंग मंत्रा, मॉर्निंग मंत्रा, मॉर्निंग मंत्रा।
2: जय दोस्तों, गुड मॉर्निंग लखनऊ आप सुन रहे हैं और गुड मॉर्निंग लखनऊ में आप जानते हैं कि हम हर रोज लेकर आते हैं मॉर्निंग मंत्र। तो स्वेच्छा बताएंगे कि आज का मॉर्निंग मंत्र क्या कहता है।
3: आज का मॉर्निंग मंत्र हमसे ये कहता है कि एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है और विभाजन से हमारा पतन होता है।
2: जी हाँ, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपके हाथ हथेली में 5 उंगलियां हैं और जब ये साथ रहती हैं तो ये मुट्ठी बन जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। और अलग अलग रहती हैं तो उतनी मजबूत नहीं होती हैं। ऐसे ही परिवार है, ऐसे ही समाज है, हम सब एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे।
3: बिल्कुल।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।
2: तो स्वेच्छा, हमें ये बताइए कि आपने एक कंसेप्ट सुना होगा ना, ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया ना आज जुड़ी हुई है
3: जी।
2: और वो कैसे जुड़ी है?
3: जी, वर्चुअल एक वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है आजकल, और उस दुनिया में हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
2: जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट के आने के बाद, टेक्नोलॉजी के आने के बाद पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ गई है। आप किसी से कभी भी कहीं भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम अभी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हम चाहे तो किसी अदर कंट्री में वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हैं बड़ी आसानी से। तो टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में बड़े सारे चेंजेस लाए।
3: बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी की ही खासियत है कि हम लखनऊ में बैठकर शो कर रहे हैं और आप कहीं किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में भी हमें सुन रहे हैं।
2: बिल्कुल, हमारा जो ऐप है उसके माध्यम से न्यूज ऑन AIR, और साथ ही साथ गूगल पे आप टाइप करके भी हमें आसानी से ऑनलाइन रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं।
3: बिल्कुल, तो ये टेक्नोलॉजी की कुछ खासियत है। और इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टेली कम्युनिकेशन, हमारा जो दूर संचार है, वो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे।
2: और दोस्तों, आज मुद्दे में बहुत ही सिंपल सी बात हम जानना चाह रहे हैं कि आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में आपकी लाइफ में टेक्नोलॉजी ने कैसा चेंज लाया है। कोई पॉजिटिव या नेगेटिव या कोई भी बात टेक्नोलॉजी से जुड़ी आप हमसे कहना चाह रहे हैं तो हमें बताइए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर।
3: जी, एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए, और लौटेंगे इस गाने के बाद।

0: जी दोस्तों, कॉलर ट्यून जी मोबाइल से जुड़ा ये जो शब्द आप सुन रहे थे, हम अपनी पसंद की कॉलर ट्यून लगाते हैं, क्यों सोच?
1: बिल्कुल, हर किसी की जो फोन में जो टेक्नोलॉजी की व्यवस्था हो गई है ना कि अब आप अपनी रिंगटोन बदल सकते हैं, साथ ही साथ जब आपको कोई कॉल करता है ना तो उसको भी एक बढ़िया सा गाना सुनाई देता है, आप ये भी सेट कर सकते हैं।
0: क्या बात है। और दोस्तों, आज हम सब पूरी दुनिया वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे मना रही है, ये आज ही के दिन 17 मई को मनाया जाता है
1: जी। और इस दिवस का उद्देश्य सूचना एवं संचार तकनीकों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और डिजिटल तकनीक के माध्यम से समाज के विकास को बढ़ावा देना है।
0: दोस्तों, इस दिन की जो शुरुआत हुई थी वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना की याद में मनाई गई है, और इसकी स्थापना आज ही के दिन 17 मई 1865 को हुई थी
1: जी। और बाद में यूनाइटेड नेशन ने सूचना समाज के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया।
0: तो दोस्तों, आज इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया है। इसमें एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस और जो हमारा सोसाइटल जीवन है उसमें संचार तकनीकी की बहुत ही बड़ी भूमिका है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है
1: जी। और ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि तकनीक का सही उपयोग ज्ञान, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन सकता है।
0: तो आइए इस डिजिटल दुनिया का उपयोग समाज और देश की प्रगति के लिए करें। और इस विशेष दिवस पर दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक अरुण कुमार वर्मा से प्रवीण कुमार जी की खास बातचीत सुनते हैं।
2: मैं हूं प्रवीण। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी WTISD मनाया जा रहा है। यह दिवस हर एक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए मैंने बात की दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक अरुण कुमार वर्मा जी से। जी, तो सबसे पहले यह बताएं कि विश्व दूरसंचार दिवस क्यों मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है?
3: देखिए, ये हर साल मनाने का उद्देश्य क्या होता है कि दूरसंचार में जो प्रगति हो रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए और क्या थीम रखी जाए और उस पर कार्य करा जाए। तो हर बार एक नई थीम आती है और एक

0: साल तक लोग उस पर कार्य करते हैं, उस डायरेक्शन में हमने टेलीकॉम जो नेटवर्क होता है, दूरसंचार का जो नेटवर्क होता है, उसको सुधारने की और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं जिससे और हो सके। तो इस बार की जैसे थीम है आपकी डिजिटल लाइफलाइन स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस इन कनेक्टेड वर्ल्ड। जो डिजिटल लाइफलाइन है ये एक तरह से हमारी एक जीवन रेखा, डिजिटल जीवन रेखा हो गई है, जैसे कि आप कोई काम बिना इसके कर नहीं सकते हैं। जैसे आप सर्वाइव नहीं कर सकते बिना एयर के, ऑक्सीजन के, वाटर के, तो इसी तरह से आप बिना डिजिटल लाइफलाइन के सर्वाइव नहीं कर सकते। आपके पास मोबाइल नहीं है, आप कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिए कि आज की तारीख में 50 करोड़ लोग UPI यूज़ करते हैं, तो अगर आपका ये डिस्कनेक्ट हो जाए, आपके पास नेटवर्क ना रहे, तो आप क्या कर पाएंगे? सारी चीज़ रुक जाएंगी, आप रेलवे टिकट नहीं खरीद पाएंगे, या फिर आप एयरलाइन की रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, कुछ पेमेंट नहीं कर पाएंगे, कोई शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। छोटी शॉप पे भी आज की तारीख में आप जाएंगे QR कोड देता है, तो UPI से पेमेंट होती है। तो एक तरह से डिजिटल लाइफ आपकी पूरी ज़िंदगी रुक जाएगी। तो हमारा नेटवर्क ऑलरेडी रेजिलियंस है, ऑलरेडी सुदृढ़ है, हमें और उसे सुदृढ़ बनाना है। किसके लिए बनाना है? जिससे हम लोग आपस में जो कनेक्टेड है वो और अच्छी तरह से कनेक्टेड रह सके। जैसे किस तरह से कोई डिजास्टर हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो या फिर कोई साइबर अटैक हो गया, किसी ने नेटवर्क को कंप्रोमाइज़ कर दिया है, उस पर सेंध लगा दी है, तो उसको कैसे दोबारा वापस अच्छी तरह से लाया जाए। तो इस तरह की जो और हमारा सुदृढ़ कर सके, इसकी थीम है। अब जैसे ऑलरेडी हमारा जैसे जो टेलीकॉम नेटवर्क होता है ऑप्टिकल फाइबर पर कनेक्टेड होता है, वो एक रिंग में होते हैं। रिंग में होने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर रिंग एक साइड से कट गई तो रिंग दूसरी साइड से चलनी शुरू हो जाती है, तो नेटवर्क डाउन नहीं होता है, मेंटेन कर सकता है। आप ये देखिए, जब आप बात करते हैं, अगर कोई आदमी रोमर है, अगर केरला से यहाँ पे आता है, यूपी में आता है, और उसकी कॉल कैसे जाएगी? जैसे वही उसको अगर किसी ने कॉल करनी है, तो पहले अगर केरला वाला बंदा केरला वाले को कॉल कर रहा है, तो पहले उसके सिस्टम में जाएगा, वो सर्च करेगा कहाँ रोम कर रहा है, वो ढूंढते हुए सर्च करेंगे, फिर कॉल यहाँ पे आएगी। पता भी नहीं लगता कि आप जैसे आप रोम करते हैं, केरला से यहाँ पे रोम कर रहे हैं। हर जैसे हमारे 22 LSA हैं, अलग अलग LSA में ये डाटा अलग अलग जगह मेंटेन है, और ये डाटा रोमर का रिकॉर्ड रखा जाता है कि रोमर कहाँ जा रहा है, तो वो कॉल फिर वहाँ ट्रांसफर होती है। तो ये देखिए सीमलेसली होता है। तो जब बहुत कंजेशन होते हैं थोड़ा डिले हो सकता है, बट होता नहीं है। जैसे कुंभ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी, उसका भी हमने नेटवर्क बहुत अच्छा बनाया था, अलग से BTS लगाए थे और सब कुछ इंश्योर किया था। तो इन सब बातों को ध्यान में रख लीजिए, दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, इसे लोग हम इसके प्रति जागरूक रहे।
1: आपदा की स्थिति में भी कार्य करने वाली संचार व्यवस्था के लिए भारत क्या कुछ खास कर रहा है?
0: देखिए, आपदा के लिए क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जैसे कहना है एक जो स्टैंडर्ड मानक जो है हमारा, किस तरह से हमें रिएक्ट करना है कोई भी डिजास्टर हुआ, तो एक मानक उसका बना हुआ है, दूरसंचार विभाग के दिल्ली के कार्यालय द्वारा निर्गत किया हुआ है, वहाँ से निकला हुआ है, और सारे जितने हमारे दूरसंचार सेवा प्रदाता उसको फॉलो करते हैं। उसमें टीम बनाई गई है, हमारे लोग भी उस टीम में है। तो जैसे ही कोई दुर्घटना होती है, जैसे किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर कहाँ कहाँ पर बह गई है, उसको दोबारा डलवाना है, कहीं पर आपके लाइट नहीं आ रही है, बहुत समय तक लाइट डैमेज हो गई है, तो वहाँ पर डीजल पहुंचाना है, तो ये सब आपदा प्रबंधन का कार्यक्रम होता है। और उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है टेम्प्रेरी BTS भी लगाते हैं जैसे, तो इस तरह से नेटवर्क जो दुर्घटना के समय पे भी ये एस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे इस तरह से हम आपदा प्रबंधन का कार्य करते हैं।
1: जी बिल्कुल, अपना टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मुस्तैदी से कार्य करता है, जिसकी वजह से हम इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। लेकिन सर, अभी 5G के बाद 6G की बात चल रही है, तो 6G में क्या प्रगति हुई है अब तक?
0: देखिए, सरकार क्या कोशिश कर रही है, 6G टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, उसके अभी स्टैंडर्ड बन रहे हैं और उस पर R&D चल रही है, और उसके जो छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं उस पर कार्य चल रहा है, और उसके लोग पेटेंट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हमारा देश भी उस कार्य में कार्य कर रहा है। जैसे हमने कई जगह 5G लैब लगाई है, सरकार ने 100 इंस्टीट्यूट में 5G लैब लगाई है, जिससे जो हमारे विद्यार्थी हैं 5G की टेक्नोलॉजी का तरह समझ सकें, जिससे वो 6G टेक्नोलॉजी पर कार्य कर सकें। तो कई सारी IIT वगैरह में 6G की जो रेडियो टेक्नोलॉजी है उस पर कार्य चल रहा है, तो उस पर उस टाइप के किस टाइप के एंटीना आएंगे, और वो 5G से बेटर होगी आपके नंबर ऑफ कस्टमर सर्व करने के लिए, लेटेंसी के लिए, और आपकी डाटा स्पीड के लिए। 6G में ये भी प्रोविजन किया जा रहा है कि फ्यूचर में आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नॉर्मल कम्युनिकेशन में सीमलेसली आप मूव कर पाएंगे। जैसे आप किसी रिमोट एरिया में चले गए, सपोज आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप सैटेलाइट नेटवर्क से भी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे, और सेम हैंडसेट, सिंगल हैंडसेट आएगा। अभी तक जो आंकड़े हैं वो कहते हैं 2030 में लॉन्च होगा, बट प्रगति चल रही है, हो सकता है कि पहले भी लॉन्च हो जाए, बट अभी टारगेट जो ITU ने डिसाइड की हुई है वो 2030 सर्विस लॉन्च करने की है।
1: और सर, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेष करके साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए?
0: साइबर सिक्योरिटी में यह है कि सतर्क रहना बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी है। डिजिटलाइज नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो कोई आपको अगर डिजिटलाइज कर रहा है तो आप फ़ोन काट दीजिए जिस फ़ोन से आपको कॉल आई है। अगर हमारा संचार साथी ऐप और एक संचार साथी वेबसाइट है, उस पर सूचना दें। अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आप साइबर क्राइम वाली साइट पर जाएंगे, 1930 पर कॉल करेंगे। हमारी जो साइट है और हमारा जो ऐप है, वो साइबर क्राइम होने के बाद हेल्प नहीं करता है, होने से पहले हेल्प करता है, जिसे रिपोर्ट कर सके, उस नंबर की हम जांच कर सके, नंबर को काट सके। फ्रॉड हो गया तो 193 पर

0: चाहिए या फिर साइबर क्राइम GOV.in पे जाइए। तो जैसे आपके पास SMS भी आते हैं, किसी को OTP ना बनाएं, SMS भी आते हैं तो लिख के आते हैं, डैश जो लास्ट में सफिक्स है उसमें डैश T है, डैश S है, डैश P है, तो जो इनकी जो कोडिंग है वो डिफाइन करके, डैश T का ट्रांजेक्शनल मैसेज है, डैश P का मतलब प्रमोशनल मैसेज है, डैश G का मतलब गवर्नमेंट का मैसेज है। तो ये जो सफिक्स है हेडर का वो ध्यान से देखें, फिर आपको पता लगेगा कि मैसेज कहाँ से आया हुआ है। तो इसी तरह से अभी सरकार ने क्या किया है, पहले 1540 की कॉमर्शियल कॉल कर दिया। बैंक से अगर कोई कॉल आएगी, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो ऑफिशियल कॉल आएंगी, वो 1560 पर फिक्स होकर आएंगी। तो आप 1560 कॉल को विश्वास करें, 140 वाली कॉल का विश्वास ना करें, या फिर जो नॉर्मल नंबर से कॉल आ रही है उन पर कोई विश्वास ना करें। तो और किसी कॉल सेंटर जो आपका ऑथराइज बैंक का कॉल सेंटर 160 वाली कॉल पे विश्वास करें। और आपको किसी साइट पे डाउट होता है तो हमारे संचार साथी साइट पे जाके भी आप ये चेक कर सकते हैं कि इसका फ़ोन नंबर जेन्यून है नहीं है, इसका एड्रेस जेन्यून है नहीं है, या फिर वेबसाइट जेन्यून है नहीं है। और RBI ने एक गाइडलाइन निकाली है सारे बैंकों को, जब आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो उस पर आपको एक पॉपअप आता है कि भाई इस पे नंबर पे ट्रांसफ़र करना या हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क है या मीडियम रिस्क है। अगर इंडिकेशन आ रहा है तो आप दोबारा कन्फर्म कर लें कि वास्तव में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं।
1: थैंक यू सर आकाशवाणी से बात करने के लिए।
0: धन्यवाद सभी सोचता को, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू
2: जी। दोस्तों आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे पर दूर संचार विभाग के अपर महानिदेशक अरुण कुमार वर्मा से प्रवीण कुमार जी की खास बातचीत आप सभी ने सुनी।
3: और दोस्तों गुड मॉर्निंग लखनऊ में ये सिलसिला जारी रहेगा जहां पर हम म्यूजिक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कराते हैं।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbow@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
3: जी दोस्तों, आप सुन रहे 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की विनय और स्वेच्छा के साथ।
4: जी, और संडे स्पेशल है, अभी आपने सुना कि आज बागवानी स्पेशल सेगमेंट फिर से आप 9 बजे सुन सकेंगे। अपने सवाल हमें जल्दी जल्दी मेल कर दीजिए fmrainbowhelpline@gmail.com पर, और हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी, तो बिना देरी करे अपने सवाल जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए।
3: बिल्कुल, गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर आपने छत पे गैरी में या कहीं पर भी फल फूल लगाए हुए हैं और कोई समस्या हो रही है, उसका समाधान आप पा सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देते हैं fmrainbowhelpline@gmail.com।
4: जी,
3: और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोग भाई थोड़ा अलर्ट हो जाए,
4: आपके शहर से जुड़ी हुई, आपके शहर की बिजली से जुड़ी हुई, कि भाई आज सुधार कार्य के चलते शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां बिजली नहीं रहेगी। नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में फीडर 2, 4, 6 की आपूर्ति सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बीच बीच में बंद की जाएगी। और राजाजीपुरम के RDSO केंद्र के तहत तेजीखेड़ा, लक्ष्मण विहार, नॉर्थ रेलवे कॉलोनी, देवपुर पारा, ब्रेड फैक्ट्री और RDSO की सप्लाई सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी।
3: और साथ ही साथ दोस्तों, सुभाष पार्क महानगर उपकेंद्र के सेक्टर ए महानगर, पुराना महानगर, गोल मार्केट, निषादगंज, गोपालपुरवा, सिविल अस्पताल और आसपास के इलाकों की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली गुल हो सकती है। तो आप लोग भाई पानी की टंकी भर लीजिए, मोबाइल रिचार्ज कर लीजिए, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
4: और एक प्यारा सा चाय हम आपको भेज रहे हैं आपका मूड को रिलैक्स करने के लिए।

0: क्या बात है, लता मंगेशकर जी की बेहतरीन आवाज दिल को छूती है और बड़े सारे लोगों का दिल इसलिए पागल होगा, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं कई बार बेवजह मोबाइल देखते हैं और बहुत ठंडा पानी पीते हैं। तो देखिए आज टेली कम्युनिकेशन डे है, तो टेली कम्युनिकेशन डे में आप याद रखिए कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन बहुत लिमिट में।
1: बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी ने आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव किया है, आज का ये हमारा मुद्दा है। तो आप हमें लिख भेजिए हमारे मेल आईडी पर fmakashwanilakhnow@gmail.com पर।
0: और अभी ना समय इजाजत नहीं दे रहा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ के फर्स्ट हाफ को आगे बढ़ाया जाए, न्यूज ब्रेक के उस पर आपसे फिर से मिलते हैं।

नमस्कार, आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी कल नीदरलैंड पहुंचे। यहां द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम ने कोरोना महामारी, अलग अलग युद्धों और पश्चिम एशिया संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया के लिए चुनौतियों का दशक बनता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन हालात को तेजी से नहीं बदला गया तो कई दशकों की कामयाबियां खत्म हो जाएंगी। ये खबर विभिन्न समाचार पत्रों के पहले पन्ने की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया है, पीएम बोले युद्ध ना रुके तो गरीबी की दलदल में फंसेगी दुनिया। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीदरलैंड्स दौरे पर पहुंचे पीएम ने चेताया, पहले कोरोना अब युद्ध और ऊर्जा संकट। वहीं स्वतंत्र भारत का शीर्षक है, मोदी बोले ये दुनिया के लिए आपदाओं का दशक। वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंकाओं को देखते हुए प्रदेश में बड़े संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू होगी। साथ ही कार्यालयों के समय को अलग अलग शिफ्टों में विभाजित करने और सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। कल श्रम विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस समाचार को सभी समाचार पत्रों ने मुख्य रूप से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूपी में भी हफ्ते में 2 दिन होगा वर्क फ्रॉम होम। पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए श्रम विभाग ने दिए निर्देश। दैनिक जागरण ने लिखा है, अनिल राजभर ने कहा सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अपनाएं बड़े व्यवसायिक संस्थान। वहीं अमर उजाला लिखता है, प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, अलग अलग शिफ्टों में खुलेंगे कार्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त बनाया है। इससे प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जब विकास होता है तो रोजगार का सृजन स्वतः स्फूर्त भाव से होता है। सीएम योगी कल केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में गोरखपुर के तालनादौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करने के बाद उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। इस खबर को विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, सीएम योगी बोले जाति धर्म के नाम पर बांटने वाले नहीं हो सकते जनता के हितैषी। हिंदुस्तान ने लिखा है, योगी ने कहा यूपी में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती से नौकरी। वहीं अमृत विचार ने लिखा है, योगी ने किया 393 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, युवाओं के सपनों को मिलेगा नया आसमान। इसके अलावा नीट पेपर लीक में पुणे से एक और टीचर गिरफ्तार। हेट स्पीच में आजम को 2 साल की जेल और जुलाई से सीबीएसई 9वीं और 10वीं के छात्र पढ़ेंगे तीसरी भाषा। स्कूलों की बड़ी चिंता जैसी खबरों को भी समाचार

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NACC द्वारा जनहित में जारी।
4: गुड मॉर्निंग डैडी।
5: वेरी गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग टीचर।
6: गुड मॉर्निंग बेटा।
7: गुड मॉर्निंग बॉस।
8: गुड मॉर्निंग मम्मा।
9: गुड मॉर्निंग।
10: गुड मॉर्निंग।
11: गुड मॉर्निंग।
12: गुड मॉर्निंग।
13: गुड मॉर्निंग।
14: करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बर्थडेज, ट्रैफिक, वेदर, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिलेगा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग लखनऊ में हर सुबह 8:15 से ओनली ऑन रेनबो धड़कन लखनऊ की।
15: वेलकम बैक। 9:05 का वक्त गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम के सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है। आपके साथ आपके दो दोस्त हैं स्वेच्छा और विनय, और अब बारी है हमारे संडे स्पेशल के बागवानी स्पेशल सेगमेंट की।
16: बिल्कुल, और दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव जी, जो की प्रधान वैज्ञानिक है फसल उत्पादन ICAR केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ से। तो सर, गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
17: नमस्कार, सभी का धन्यवाद
15: जी। सर, हमारा पहला सवाल है प्रीति श्रीवास्तव अलीगंज से पूछती हैं, मेरे आंवला के पेड़ में छोटे छोटे माहू लग गए हैं, पेड़ के जो नई पत्तियां आती हैं उन पर वो कीड़े लगे हुए हैं, उसके लिए क्या करें, और मेरा आंवला का पेड़ अभी छोटा ही है, इन्होंने ये बताया है।
17: आंवले के पेड़ में माहू की समस्या है इनको है?
15: जी,
17: एक प्रश्न है
15: जी जी।
17: हाँ देखिए, माहू जो है इसमें या तो आप नीम के तेल का छिड़काव करें, उसको ले लीजिए, अच्छी ग्रेड का आजकल नीम का तेल आता है, जो कि घर में लगा हुआ तो कोई हम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की हम वो नहीं कहते हैं, तो नीम का ऑयल ले करके अच्छे ग्रेड का 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप उसको स्प्रे करें, और दूसरा पानी की बौछार तेजी से करें, प्रेशर से करें, तो सारे माहू नीचे गिर के मर जाएंगे।
15: जी।
16: और सर, ये ऐश बाग लखनऊ से हमें वारिस जी ने मेल किया है, इन्होंने गमले में एलोवेरा लगाया हुआ है और पानी भी सुबह शाम देते रहते हैं, और इसके बावजूद उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, क्या उपाय है?
17: थोड़ा सा ये देखिए कि उसकी जड़ें कहीं ज्यादा वो तो नहीं हो गई है, तो आवश्यकता ये है कि उसको पॉट से निकाल करके और थोड़े से बड़े गमले में उसको शिफ्ट कर दें, और हल्की हल्की उसकी छटाई कर दें, और फ्रेश थोड़ा सा उसमें मीडिया भर दें, जैसे उसमें गोबर की खाद है या थोड़ा मिट्टी मिला करके और नीम की खली वगैरह मिला करके फिर से फ्रेश मीडिया भर दें, और आपका पौधा ठीक हो जाए, कोई ऐसी समस्या नहीं है, गर्मी में हल्की फुल्की आती है ये।
15: जी। सर, मनाकिनी जी पूछना चाहती है कि मेरे तुलसी के पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे काले काले कीट लग गए हैं, जिससे मेरी तुलसी सूख रही है, कीटों को हटाने के लिए।
17: जी, उसमें भी वही माहू की समस्या है।
15: जी,
17: तो उसमें जो है वही तेजी से पानी का छिड़काव करें, बौछार दें, जिससे कि सारे माहू नीचे गिर जाएंगे, और पानी देते समय ध्यान दें कि सुबह ही पानी दें या शाम को पानी दें, और ज्यादा पानी ना दें, कई बार ऐसा होता है उसकी जड़े में भी समस्या आ सकती है, तो इस तरह से करेंगे तो आपके पौधे, और थोड़ा सा छाया में रखिए क्योंकि इस समय गर्मी बहुत है, 40-42 डिग्री के आसपास तापमान जा रहा है, तो थोड़ा सा उसको छाया में रखिए।

0: जी जी
1: जी और सर हमें रमेश दत्त त्रिवेदी जी ने मेल किया है और ये कहते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड केयर मेजर्स फॉर पाइनएप्पल स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। पाइनएप्पल के बारे में ये अगर प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पे करना चाह रहे हैं तो क्या क्या मेजर्स रखें, क्या क्या उसका ध्यान रखें सर?
2: देखिए पाइनएप्पल की बागवानी वैसे धीरे धीरे यहाँ भी लोग करने लगे हैं, उत्तर प्रदेश में भी, तो ये संभव बागवानी है। और इस पे डिटेल जो है बहुत सी चीजें हैं, एक तो उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, कई बार बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ने से भी जो है उसमें सूखने खतरा रहता है। और उसमें अच्छे सीडलिंग लें, अच्छे पौधे ले आए कहीं से, अच्छी वैरायटी का यहाँ इस्तेमाल करें, तो ये सारी चीजें हैं उसको। और बिना शेड के हल्की लाइट शेड, इसमें डिफ्यूज लाइट चाहिए, तो तब इसका उत्पादन यहाँ अच्छा हो जाता है।
1: जी सर, कहीं पर ट्रेनिंग भी होती है इसकी, अगर हो तो बता?
2: देखिए इसके लिए तो देखिए केंद्रीय बागवानी संस्थान में जो है हम लोगों ने पौध लगाया तो है, लेकिन इसके अभी यहाँ, चूंकि हमारे यहाँ अभी प्रोडक्शन कम है, लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट या कई ऐसे स्टेट में जहाँ इसका कमर्शियल करते हैं, अगर वहाँ ये विजिट करेंगे उन संस्थानों में, तो वहाँ इनको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी।
0: जी सुनील यादव जी पूछना चाहते हैं कि पानी जो हम लोग पौधों में डालते हैं उसको स्प्रे से करना अच्छा होगा या जड़ से सिंचाई करना, जिससे पानी की भी बचत हो?
2: देखिए ऐसा है कि इस समय गर्मी में पानी सब पौधों को आवश्यकता पड़ती है, कई बार सुबह शाम पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, तो कोशिश ये करें कि गमलों में जो है 3-4 इंच जो है मोटा कुछ मल्च बिछा दें, मल्च मतलब जैसे घास फूस है, पत्तियां हैं, उसको बिछा दें, तो एक पानी कम उड़ेगा, और दूसरा जो है उसकी जड़ में पानी दें और कम से कम 2-3 इंच गहरा पानी उसको दें, तो डेली आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर मल्चिंग कर देंगे, तो इससे पानी की आपकी बचत रहेगी। हाँ, उसमें देने से रहेगा कि अगर बौछार से देते हैं थोड़ा थोड़ा, कभी 2-3 दिन में आप स्प्रे कर दीजिए, तो उसपे जो डस्ट बैठ जाता है वो हट जाता है, जिससे इसकी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है वो प्रभावित नहीं होती है। जी
1: जी। और सर ये मुनेश कुमार राज गांव भाव लखीमपुर से हमें मेल कर रहे हैं, कहते हैं हमारे खेत में लगभग 25 थाले तरोई लगी हुई है, उसमें 3 बार हम दवा का छिड़काव भी कर चुके हैं, मगर उसमें आधे से ज्यादा तरोई सड़ जाती है, बाकी पौधे अच्छे हैं, क्या करें, उपाय बताइए।
2: देखिए अब उसमें क्या समस्या है, उसको अगर फोटो भेजेंगे किसी विशेषज्ञ के पास तो अच्छी तरह से बता पाएगा। वैसे तुरई में जो है क्या करें कि अगर उसमें बीमारी लग रही है तो थोड़ा सा उसका जो है कुछ अच्छे ब्रांड की दवा लें, अच्छी कंपनी की दवा लें, कई बार ऐसा होता है लोकल वाले जो ऐसी सस्ती दवाएं जो बेचते हैं ज्यादा दाम लेकर के दवाएं बेच देते हैं और वो अच्छे ब्रांड की नहीं होती, तो उससे भी जो है नकली दवाएं होती हैं, इसकी समस्या आती है और आपकी बीमारी जो है उसमें वो कंट्रोल नहीं आता, तो कोशिश कीजिए कि अच्छे ब्रांड की दवा लाए और उसका इस्तेमाल करें, ये समस्या दूर हो जाएगी।
0: जी सर, स्वरांजलि जी पूछना चाहती हैं कि मेरे घर के बाहर जमीन पर भिंडी के पौधे लगे हैं जिसमें सफेद कीड़े लग गए हैं, उसके लिए क्या कह रहे हैं?
2: हाँ, उसमें भी वही मिलीबग की समस्या है, मिलीबग की समस्या आती है, तो क्या करें कि एक तो अगर घर में हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि केमिकल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि आप जानते हैं कि केमिकल से तमाम बीमारियां फैलती हैं, कैंसर तक की बीमारी फैलती हैं, तो बड़ी तेजी से वही पानी की बौछार डाल दें तो धीरे धीरे घुल जाएंगे, और थोड़ा सा उसमें पानी में ये सर्फ मिला लें, तो क्योंकि ये जो मिली बग होता है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, जब वो उसके ऊपर पड़ेगा तेजी से तो उसका कोट धीरे धीरे उस पर पाउडर जो है निकल जाएगा, धीरे धीरे सारे कीड़े नीचे गिर के वो संभर जाएंगे।
0: जी जी जी
1: जी। और सर हमारे पास एक और मेल है, राममोहन गुप्ता जी ने हमें मेल किया है, लिखते हैं कि घर में लगे गमलों में मीठी नीम कैसे फले फूले, ज्यादा वर्षों से लगे पौधे सूख गए, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है।
2: जी जी, देखिए मीठी नीम तो बहुत अच्छा पौधा होता है जो अच्छा चलता है, उसमें ज्यादा समस्या नहीं आती। आप उसमें जो है अभी तो थोड़ा सा मौसम बहुत हार्श है, लेकिन कभी पौधे कभी छाया में शिफ्ट कर दीजिए, और उसके बाद उसको जड़ सहित पौधे को गमले से बाहर निकाल दीजिए, थोड़ी सी जो जो जड़ का मिट्टी का बॉल है हल्की सी छिलाई कर दीजिए चारों तरफ से, और फ्रेश मीडिया उसमें डाल करके फिर से लगा दीजिए, आपका पौधा उसमें चलता रहे। कई बार ऐसा होता है कि पौधे जो है उसकी जड़ें पार्ट बाउंड हो जाती है, तो उनका ग्रोथ जो है उनकी वृद्धि नहीं होती, रुक जाती है, तो इस तरह से करेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और ठीक से चल जाएगा, फ्रेश मीडिया उसमें थोड़ा सा डाल दें। जी
0: जी जी। सर दिव्याता राज वर्मा ने किया है कि बोगनविलिया कैसे लगाएं?
2: बोगनविलिया देखिए समर के लिए बोगनविलिया एक बहुत बढ़िया पौधा है, तो इस नर्सरियों में उपलब्ध पौधे हैं, उसको ले आए और बढ़िया सा एक मीडिया बना करके कम से कम 7-8 इंच 10 इंच गहरा गमला लें, उसमें आप जो है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी, नीम की खली मिला करके उसको मीडिया को भर दीजिए, और उसके बाद उन पौधों को लाके लगा दीजिए। कई किस्में यहाँ उपलब्ध है, डॉक्टर राव है और दूसरी कई किस्में हैं, उसको आप लगा सकते हैं, बैरीगेट

0: है, नॉन बैरिकेटेड है, तो कई तरह के इसमें वैरायटीज उपलब्ध हैं, उसको लाके आप लगा सकते हैं।
1: जी
2: सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे सवालों के, आपने बेहतरीन जवाब दिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद, नमस्कार सभी को।
2: नमस्कार सर
1: जी। तो दोस्तों, संडे स्पेशल में आज हमारे साथ जो बागवानी स्पेशल सेगमेंट के एक्सपर्ट थे डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने आपके सभी सवालों का जवाब दिया। ये थे प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन ICAR केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से।
2: और दोस्तों, अगर आपके सवाल रह गए हैं और आप नहीं पूछ पाए तो आप हमें मेल कर दीजिए, अगले सप्ताह हम आपके सवाल जरूर लेंगे। हमारी मेल आईडी FM Rainbow Helpline@gmail.com।

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की

0: देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
2: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। आज विनय और स्विच्छा आपके साथ है और जो ब्रेकफास्ट शो है उसमें हम बहुत सारी चीजें आपके सामने ला चुके हैं, लेकिन बहुत सारी बाकी भी है।
3: आज और भी बहुत सारी चीजें खास खास हैं, जिसमें अगली चीज ये है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आज हम मना रहे हैं।
2: दोस्तों, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो आज ही के दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और इस दिन का जो मेन मोटो है वो लोगों को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन के प्रति जागरूक करना है और इसके बचाव और इसके लिए जो उपचार है उनके बारे में लोगों को बताना है।
3: जी, उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी संबंधी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है।
2: दोस्तों, इस दिन की शुरुआत 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा की गई थी, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो सके।
3: और आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली, तनाव, अनियमित खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं।
2: तो डॉक्टरों के अनुसार नियमित व्यायाम, और आप जानते हैं कि बैलेंस डाइट और अच्छी नींद और समय समय पर रक्तचाप की जांच इस समस्या से बचाने में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों
3: जी, और इसी से रिलेटेड आज एक डॉक्टर कोमल अग्रवाल MBBS MD आंतरिक चिकित्सा विभाग से हमारे स्टूडियोज पर मौजूद रहेंगी आज के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में हाइपर टेंशन यानी उच्च रक्तचाप विषय के साथ।
2: जी हाँ, दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर साहिबा मौजूद रहेंगी। हमारे टेलीफोन नंबर है 0522 2238 852, और दूसरा नंबर है 0522 2238 845, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashmailakhnow@gmail.com।
3: जी, और हमारे अगले गाने की तरह आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि
2: जीने के हैं चार दिन।

0: दोस्तों कहा गया है सैर कर दुनिया के गाफिर जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। गाने में कहा जा रहा है ना कि जीवन के चार दिन हैं, बाकी है बेकार दिन, तो जवानी जाने से पहले आप एंजॉय कर लीजिए। और वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है बच्चों की, तो घूमने का प्लान कर लिए। जब तक आप घूम फिर सकते हैं, घुटने आपका जवाब नहीं दे रहे, तो घूमिए फिरिए एंजॉय करिए। और जब स्विच आपको बताएंगे, जब आप घूमते हैं ना, नए कल्चर को देखते हैं, नए एनवायरमेंट को देखते हैं, तो आप अलग ही दुनिया में पहुंचते, नई नई चीज सीखने को मिलता है।
1: बिल्कुल, आपका मूड फ्रेश हो जाता है। और जो डेली के जो आपके रूटीन है, आप उससे कभी अलग करते हैं तो आपको अंदर से अच्छा महसूस होता है। फिलहाल हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी खुश कर दें, उन्होंने सुबह से इतने सारे मेल्स भेज के हमें तो खुश कर दिया। अब उनके मेल्स को हम आप तक पहुंचा देते हैं। सुनील यादव ने सुल्तानपुर से हमें मेल किया है। सुबह सुबह लिखते हैं, हर हर महादेव, हम नए जमाने के होकर भी स्पेशली आपका प्रोग्राम सुनने के लिए नए रेडियो खरीदे हैं और मम्मी पापा भी सुन लेते हैं। आप सबसे निवेदन है कि 90s ज़्यादा सुनाया करिए, आज तो भाई 90s ही बजा।
0: और साथ ही साथ हमें सुबह सुबह मेल किया है, ये देखिए मोनू सेठ जी ने मेल किया है और ये राम राम कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि पुष्पांजलि ने बहुत ही बेहतरीन लगी और सदाबहार गीत में गाने अच्छे बजे।
1: जी रोशनी जी ने मेल किया है, नहीं ये तो इन्होंने रात का फॉरवर्डेड दिया है।
0: जी बिल्कुल।
1: गीता सेठ ने अभी लिखा है, आप दोनों आरजेस को राम राम, नमस्ते, माता पिता की सेवा सर्वोपरि।
0: और साथ ही साथ हमें आंचल अंकित सेठ रायबरेली से मेल आया है और इन्होंने भी कुछ लिखा है, लिखते हैं, रेडियो मेरी आशिकी, रेडियो मेरी शान, अच्छा ओके। और साथ ही साथ दो लाइन लिखी है कि कणकड़ में विष्णु बसे हैं, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी, मन में बसे हनुमान, दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा मेल आपने हमें भेजा। सोनू परवाना भेजते हैं, स्वच्छता ही सबसे बड़ा धन है, स्वच्छता सभी रोगों को दूर करती है, ये सभी सुखों को प्रदान करती है और सभी लक्षणों को प्राप्त करने में सहायक है।
0: साथ ही साथ गीता जी ने हमें मेल किया है और ये लिखती है, एफएम की दीवानी है और लिखती है, सकारात्मक सोच स्वस्थ और खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है, ढेर सारी सूचनाओं और प्रतिस्पर्धी दुनिया में हम अक्सर उन विचारों में गुम हो जाते हैं जो हमारी जिंदगी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सभी विचार सकारात्मक हो, अक्सर हम तनावपूर्ण चीजों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत भी प्रभावित होती है। बात सही है कि अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो जीवन में हर परेशानी को आसानी से झेला जा सकता है।
1: जी बिल्कुल। सुनील कुमार जी ने हमें भेजा है मेल, सुनील प्रांजल जी ने विकास नगर से भेजा है, ऊपर कुमार लिखा है, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आप सभी को, टेक्नोलॉजी से जीवन बहुत बदल गया है, आवागमन आसान हो गया है, लगता है दुनिया छोटी हो गई है, कहीं से देख कर बात करना आसान हो गया है, सिस्टम से जुड़ जाने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, रेल टिकट से लेकर पैसा भेजना तक आसान हुआ है, न मनी ऑर्डर का जमाना रहा, न पोस्ट कार्ड की जरूरत, इंटरनेट गूगल ने तो घर बैठा कर दुनिया ड्राइंग रूम में समेट दिया है।
0: क्या बात है। और साथ ही साथ देखिए महेंद्र दीपन जी ने गुड मॉर्निंग लखनऊ लिखते हुए लिखा है कि आदरणीय आरजे विनय जी और आरजे स्वेच्छा जी, वैसे आदरणीय आप हैं, आप हमें मेल कर रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं, लिखते हैं, मैं महेंद्र दीपन, गांव रूड, जिला नागौर, राजस्थान से, और आज के बेहतरीन और प्रासंगिक मुद्दे पर मैं अपने दिल की बात साझा करना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी और मेरा जुड़ाव, सीखने की कभी ना खत्म होने वाली लड़क, सच कहूं तो मुझे टेक्नोलॉजी से बहुत गहरा और आत्मीय जुड़ाव महसूस होता है। दुनिया में तकनीक के क्षेत्र में जब भी कोई नया बदलाव या नया आविष्कार आता है तो मेरे भीतर उसे जानने और सीखने की अनोखी ललक जाग उठती है। सीखने का जज्बा जो उम्र या जगह चाहे कोई भी हो, मेरा ये जी करता है कि मैं हर नई तकनीक को बारीकी से समझूं, उसे अपने जीवन में उतारूं और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ूं। और इनके लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि हर रोज कुछ नया सीखने और खुद को अपग्रेड करने का अद्भुत जरिया है।
1: क्या बात है। ब्रजेश सिंह जी ने हमें मुद्दे से रिलेटेड बात लिखी है, गुड मॉर्निंग के साथ बहराइच से मेल किया है, सबसे बड़ी हमको सुविधा मिली टेक्नोलॉजी से, एफएम रेनबो से दूरी जो हो गई थी उसको नजदीकी में बदल दिया, आज कहीं भी रहते हैं आपके माध्यम से कहीं भी सुन सकते हैं, ये बदलाव हुआ है हमारी जिंदगी में और इन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साथ ही साथ अलीगंज लखनऊ से हमें प्रीति श्रीवास्तव जी सुन रही है, राधे राधे कह रही है हमें और आपको, तो आपको भी राधे
1: राधे,
0: सुबह से गाने अच्छे प्ले हो रहे हैं और आज के टॉपिक पर बस ये इतना कहना चाह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी कोई भी हो वो हमारे फायदे के लिए ही बनाई जाती है।

0: होती है, बस हमें उसका इस्तेमाल एक दायरे में रहकर करना चाहिए और सतर्कता पूर्वक करना चाहिए, तो हमें किसी तरह की कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे अच्छा इन्होंने अच्छा इन्होंने दोनों एक साथ भेजा था, आपने मुझे बताया था इन्होंने बागबानी वाला सवाल भी इसमें जुड़ा हुआ है और आपने थैंक यू लिखा है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मेल किया।
1: जी आप सभी लोगों का जिन्होंने हमें मेल किया बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है, उसके बाद फिर लौटेंगे बहुत सारी बातों और आप सभी के मेल्स के साथ।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान।

0: सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आ गए आप?
2: जी आ गया।
1: जन्मदिन मुबारक हो आपको।
2: ओह हो, थैंक यू वेरी मच।

0: टू यू, वेरी हैप्पी बर्थडे आप सभी लोगों को.
1: कितनी बड़ी से स्माइल आ गई होगी अगर आपका हैप्पी वाला बर्थडे होगा आज. तो बड़े सारे लिसनर्स जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं उनको बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ एनिवर्सरी जो मना रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई
0: जी. और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका आज का दिन स्पेशल डे बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में लेकर आए. और अब जानते हैं कि ये जो आप खास दिन स्पेशल डे आप मना रहे हैं अपना, वो किन शख्सियतों के साथ शेयर करते हैं.
1: बहुत ही महान हस्तियां हैं जिनका आज जन्म हुआ था दोस्तों. 1897 में धीरेन्द्र वर्मा जी, जो कि हिंदी और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि, लेखक और भाषाविद थे, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था. इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है और हिंदी साहित्य के विद्वान शिक्षकों में गिने जाते हैं और कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े रहे हैं
0: जी. और आज के दिन 1951 में जन्म हुआ था पंकज उदास जी का, भारतीय गजल गायकी की सबसे लोकप्रिय नामों में से एक थे. उन्होंने अपनी मधुर आवाज और भावपूर्ण गायकी से गजलों को घर घर तक पहुंचाया. उनकी प्रसिद्ध गजलों और गीतों में चिट्ठी आई है विशेष रूप से बेहद लोकप्रिय हुआ और हिंदी सिनेमा और भारतीय पॉप संगीत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा.
1: बिल्कुल, जब भी चिट्ठी आई है बजता है तो दिल एकदम अलग सा हो जाता है, बहुत भावपूर्ण हो जाता है. और 1953 में आज ही के दिन जन्म हुआ था प्रीति गांगुली जी का, जो कि हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक अभिनेत्री थी, हैं कहेंगे. और इन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार के परिवार से संबंध रखती हैं और अपनी कॉमिक और जो सहायक भूमिकाओं से इनको पहचान मिली हुई है. इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है और कॉमेडी के लिए जानी गई हैं. और 70 और 80 के दशक में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में दी हैं. तो इन सभी शख्सियतों को उनकी जयंती पर हम शत-शत नमन करते हैं
0: जी. और पंकज उदास जी का नाम आया और उनका एक बड़ा ही प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए.

0: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
8: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
9: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
8: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
10: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
11: जी हाँ, ना सिर्फ लखनऊ की बल्कि बहुत सारे ऐसे शहरों की, ऐसे राज्यों की और कई देशों की धड़कन बन चुका है FM रेनबो। और अब आप सभी के मेल्स की बारी आ चुकी है। राम मोहन गुप्ता जी ने हमें मेल भेजा है हमारे मुद्दे से रिलेटेड। लिखते हैं, रह सकते हैं सुरक्षित टॉपिक के साथ। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के युग ने बदल दी है जिंदगी, जब चाहे एक दूसरे से जुड़ काम कर सकते सभी। अमूल चूक परिवर्तन हुआ है आज दूर संचार में हो रहे हैं कामकाज, शिक्षा, सेवा और व्यापार में दूरस्थ शिक्षा, वर्क फ्रॉम होम, वार्ता संघ बैठकें भी फेस टू फेस, मुलाकातें, अदालतों में सुनवाई पैरवी, छोटी बड़ी लेन देन, भुगतान सहित सूचना, समाचार अंतरिक्ष तक पहुंचने के खोल दिए सैटेलाइट ने द्वार। क्या कुछ नहीं है जहां हुई ना पहुंच इस क्रांति की, पर काफी बढ़ गई है घटनाएं धोखे स्पैम भ्रांति की। ऐसे में बहुत सोच समझ सावधानी से कर उपयोग, रह सकते हैं सुरक्षित संरक्षित दैनिक जीवन में लोग। राम मोहन गुप्त अमर लखीमपुर खीरी से हमें मेल करते हैं।
12: लेकिन बहुत ही बेहतरीन आपने शब्दों को जो पिरोया है और जो लयबद्ध किया है, बढ़िया है, मुद्दे को सही सही बता रहा है। और हमें मनोज विश्वकर्मा जी ने मेल किया है और कह रहे हैं, दोनों खूबसूरत आवाज को मेरे पूरे परिवार की ओर से गुड मॉर्निंग, प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और सुबह से ही ये सुन रहे हैं और इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, पुष्पांजलि और सदाबहार अच्छा लगा इन्हें। और लिखते हैं मुद्दे पर कि AI से बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है, सही उपयोग करें तो बहुत अच्छा है, गलत उपयोग करें तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। और यह हमें छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव से मेल कर रहे हैं।
11: घनश्याम सिंह जी ने हमें मेल किया है, मोबाइल का उपयोग के लाभ हानि इन्होंने हेडिंग तो डाली है पर मुद्दे पर कुछ बात नहीं आई है। इन्होंने ये लिखा है कि रजनीगंधा कार्यक्रम कल रात सुनकर ही ये सोए थे, इसलिए आज इनको सुबह उठने में 8:52 हो गए। तो इन्होंने उठते ही FM रेनबो चलाया मोबाइल फोन में और लिखते हैं, मोबाइल से बहुत से काम छूट गया है।
12: और वारिस जी ने मेल किया है और ये हमें और आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और साथ ही साथ लिखते हैं, कहते हैं, अर्ज़ किया है, इतना सस्ता नहीं हूँ मैं जितना आपने सस्ता समझ लिया। माना मैंने आपके प्यार में झुका ज़रूर था और आपने मुझे गिरा समझ लिया। आशिक मिजाज है ना। और अब देखिए स्वेच्छा जी को ये 6 बजे से सुन रहे हैं, पुष्पांजलि इन्हें अच्छा लगा, सदाबहार गीत में इन्होंने जिंदगी को रूप दिखाया, बहुत बेहतरीन गाने बजाए आपने। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि अब 2 विनय हो गए हैं। जी, विनय यादव और विनय कुमार
11: जी। दिव्या राज वर्मा हमें लिखती है जी, अच्छा ये तो इनका बागवानी का मेल है। नीलू यादव हमें लिखकर भेजती हैं मंगला बाजार आशियाना से कि सभी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहे हैं, अपनी दोनों बेटी अनुराधा श्रेया के साथ सुन रही हैं। और लिखती हैं, जय श्री राम, नेकियां तो अब भी करते हैं लोग, बस फेसबुक पर डालने के लिए दिखावे की

0: मुझ से हमेशा सादगी का सच बेहतर होता है, क्योंकि चमक कुछ देर की होती है और सादगी उम्र भर का सुकून देती है।
1: और हमें सुनील प्रांजल जी ने विकास नगर से मेल किया है, आपने जो लिखा है उसका हम ध्यान रखेंगे।
0: तो ये थे हमारे कुछ मेल, एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए, और फिर लौटेंगे इस गाने के बाद।

0: जी 9:45 का वक्त हो चुका है और आप सभी को अब आपके शहर से जुड़ी ट्रैफिक अपडेट्स के लिए लिए चलते हैं TSI विकास सिंह जी के पास।
1: तो सर गुड मॉर्निंग, लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज संडे का दिन है सर, संडे के दिन ट्रैफिक बहुत ही कम रहता है और वर्तमान में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है। सर अवगत कराना चाहेंगे कि नगर निगम द्वारा जो है प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। ये क्षेत्र है हमारा स्वास्थ्य भवन से कैसरबाग वाला क्षेत्र, तो इस मार्ग पर हम लोग जो है डायवर्जन रखे हुए हैं। इस दौरान जो जिन लोगों को अशोक लाट होते हुए अपने गंतव्य को जाना था, उन्हें हम डालीगंज से सुभाष चौराहा से डाइवर्ट कर रहे हैं और डाइवर्ट करके हम भेज रहे हैं। कृपया यदि अति आवश्यक न हो तो इस मार्ग के प्रयोग से बचें, वैकल्पिक मार्ग जो बताया जा रहा है उस वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें, तभी जो है आप अपने गंतव्य तक सुगमता से पहुंच जाएंगे। जी सर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सभी को देने के लिए।
2: जी धन्यवाद, आभार।
1: तो दोस्तों हमारे साथ थे हमारे साथ थे TSI विकास सिंह जी, जो बता रहे थे कि आज कहीं पर नगर निगम की कार्रवाई हो रही है तो वहां पर थोड़ा बाधित हो सकता है ट्रैफिक।
0: जी एक ट्रैक आ रहा है आप सभी के लिए, गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम भी अपने वाइंड अप की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके बाद लौटेंगे गाने के बाद।

0: जी 9:50 का वक्त हो चुका है दोस्तों, और अब आप को ये भी बता दें कि आज का जो हमारा दिन है वो किन किन रूपों में खास है। भाई इतिहास के पन्नों में बहुत सारी खास चीज़ें आज के दिन दर्ज हैं, जिसमें पहली चीज़ है कि 1975 में जापानी महिला श्रीमती जिनको तैबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी।
1: ये तो गौरव की बात है कि पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और वो है जापान की श्रीमती जुनोको तैबेई। साथ ही साथ दोस्तों 1987 में आज ही के दिन सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहा था।
0: और 2010 की बात करें तो भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीत लिए थे आज ही के दिन, और बीजिंग ओलंपिक के कांस्य विजेता वीरेंद्र सिंह के अलावा दिनेश कुमार, परमजीत समोटा, अमनदीप, सुरंजय व जय भगवान ने अपने अपने वर्ग का फाइनल जीता था, और प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर का अवार्ड विजेंद्र कुमार को मिला था, जबकि मेजबान भारत ने सर्वाधिक 36 अंक लेकर टीम की चैंपियनशिप भी जीती थी।
1: 2010 एक और मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतीय सेना ने उड़ीसा के व्हीलर्स द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी SITR में परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 प्रक्षेपण का परीक्षण किया था। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती है, और साथ ही साथ अग्नि 2 का विकास रक्षा विकास और अनुसंधान संगठन DRDO की प्रयोगशालाओं में भारत में हैदराबाद में किया गया है।
0: जी तो ये थे कुछ खास बातें आज के दिन से जुड़ी हुई। एक प्यारा सा ट्रैक और आ रहा है आप सभी के लिए, और बस गुड मॉर्निंग लखनऊ में ये गाने के बाद फिर लौटेंगे हम।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: जी 9:55 का वक्त, और ये वक्त हमसे कह रहा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है अपने वाइंड अप की ओर, लेकिन बस चलते चलते कुछ मेल्स हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। रोशनी रावत जी ने हमें लिखकर भेजा है, प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है इन्होंने, और मुद्दे पर लिखती हैं कि मैं छोटे शब्दों में कहूं तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान है, कभी भी कहीं से भी तुरंत गुफ्तगू कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से सब कुछ सीख सकते हैं, बस सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। और इन्हें पंकज उदास जी की गजल बहुत पसंद है, ये भी लिखकर भेजा है जो हमने प्ले की थी
5: जी। और साथ ही साथ मोनू सीट जी ने भी लंबा चौड़ा सा मेल किया है और ये टेक्नोलॉजी के फायदे बता रहे हैं, थैंक यू सो मच।
4: बबिता राव गुड मॉर्निंग लिखती हैं, और प्रोग्राम बहुत अच्छा है, उम्दा प्रेजेंटेशन, नाइस सॉन्ग्स, और बस इन्होंने प्यारा सा बुके भेजा है और लिखा है कि मेरा मेल शामिल कर लीजिए।
5: और साथ ही साथ आकाश लोधी ने मलिहाबाद से मेल किया है, मोबाइल का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप कभी अकेले और असहाय नहीं होते, क्या बात है। और इन्होंने अश्विनी लोधी, युवराज लोधी, विशाल लोधी के नाम भी लिखे हैं
4: जी। जावेद अख्तर जी हमें लिख करके भेजते हैं मेल, खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे हैं कार्यक्रम, अच्छा लग रहा है, मुफीद और मालूमात से भरी जानकारी हमें फराहमन की जा रही है जिसके द्वारा हमें जो सीख मिलती है जिससे हमारे बहुत काम आसान हो जाते हैं। इन्होंने हमें आजमगढ़ से मेल किया है।
5: और साथ ही साथ सोनू परवाना जी ने भी हमें मेल किया है और ये भी आधुनिक युग के फायदे बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए
4: जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम से हम लेते हैं विदा, मेरी यानी सोचा कि होगी किसी और दिन किसी और वक्त आप सभी से मुलाकात
5: जी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में बेली पार क्षेत्र स्थित ताल नादौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाले इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा कि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसका मुख्य उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटाकर देश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान को और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में कल रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालिक जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
6: श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। प्रसिद्ध नेत्रांगना, पूर्व कुलपति भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर कुमकुम धर से सुमोना एस पांडे जी की बातचीत।
7: श्रोताओं, आज है इस माह का तीसरा रविवार। रविवार का दिन हमेशा होता है खास, और आज हमारे साथ जो स्टूडियो में है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, वो एक महान कलाकार है जो जितनी महान है उतनी धरती से जुड़ी हुई है, और इनका व्यक्तित्व बहुत ही निर्मल, बहुत ही सौम्य है, और जो भी इनसे मिलता है अभिभूत हुए बगैर नहीं रह सकता। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में है डॉक्टर कुमकुम धर जी, और जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रबुद्ध नृत्यांगना है। कुमकुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आज के मेहमान में।
8: नमस्कार।
7: कुमकुम जी, आपके बारे में लखनऊ वासियों को क्या ही बताऊं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें मालूम है कुछ पक्ष आपके ऐसे हैं जो अनछुए हैं अभी भी, जिनके बारे में आप ही से सुनना हम पसंद करेंगे, हमारे श्रोता भी पसंद करेंगे। तो सबसे पहला यही सवाल कि आप नागपुर से लखनऊ कैसे आए?
8: नागपुर में सिर्फ मेरा जन्म हुआ था
7: जी,
8: और उसके बाद जो है मेरे पिता प्रशासनिक सेवा में आए थे, तो फिर वो उनको यूपी कार्डर मिला था, तो हम लोग सबकी जो पढ़ाई लिखाई, तालीम, जो अपना करियर है, वो सब उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उसमें से भी लखनऊ में हुआ है। मैं अपने आप को बिल्कुल लखनऊ का ही मानती हूँ हर तरह से। इस शहर ने मुझे सीखते हुए, फिर परफॉर्म करते हुए, फिर सिखाते हुए, कोरियोग्राफ करते हुए देखा है, और सच बताऊँ

0: इतना प्यार दिया है, क्या बताऊं मैं, बिल्कुल कभी उड़न नहीं हो सकती है। अक्सर मुझे मौका मिला जैसे बंबई जाने का, रहने का, जैसे मेरे हस्बैंड थे दिल्ली में थे, बंबई में थे, और ये हुआ कि भाई तुम यहाँ क्यों पड़ी हो, यहाँ से जाओ जब तुम्हें मौका है, रहने की जगह है, सब कुछ है। लेकिन मेरा मन ही नहीं माना, मैं जाती थी आती थी, जाती थी आती थी, पर मैं रही कभी नहीं कहीं, मैं हमेशा यहीं रही।
1: जो आपका पड़ाव शुरू हुआ कला के क्षेत्र में, जी इसके बारे में कुछ बताएं।
0: मैं किसी संगीतज्ञ परिवार से नहीं हूँ,
1: जी जी
0: हाँ, तो जहाँ पढ़ाई लिखाई करना भी बहुत जरूरी था, मेरे नाना कश्मीर के एक बहुत सुविख्यात कवि थे, और मेरी माँ कश्मीरी फोक थोड़ा गाती थी, बस इतना था
1: उनका,
0: प्रभाधर उनका नाम, अब वो नहीं है, तो इतना ही संगीत से जुड़ाव था। लेकिन मुझे नृत्य करने का बहुत शौक था, और तब मुझे
1: इनबॉर्न,
0: जैसे घरों में नहीं बच्चे नाचते हैं शादी ब्याह पे या किसी अवसर पे, तो मुझे मेरी बुआ और मेरे बहन एक छोटा सा लहंगा पहना के या कुछ ऐसा करके मुझे कोशिश करती थी कि मैं उसमें मतलब नृत्य करूँ। तो तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो कौन सा नृत्य है, और जैसे बच्चे घर में करते हैं वैसे मैं करती थी। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब लखनऊ में मेरे पिता पोस्टेड थे, तो यहाँ पे कथक केंद्र की स्थापना की गई, उत्तर प्रदेश सरकार से बड़े आग्रह और अनुरोध के साथ मेरे गुरु आदरणीय पंडित लच्छू महाराज जी को बंबई से बुलाया गया। वो इसलिए कहा गया कि साहब ये लखनऊ घराना है, पर लखनऊ के आचार्य यहाँ कोई नहीं है। तालीम हो रही थी, मतलब शिक्षा होती थी, लेकिन उस घराने के आचार्य कोई नहीं है। तो हमारे गुरु जी को बुलाया गया वहाँ से, 1972 में कथक केंद्र की स्थापना की गई, और मेरे गुरु उसके पहले निदेशक और गुरु नियुक्त हुए। जब हमने सुना, और उस अवसर पे एक कार्यक्रम भी हुआ कि भाई शुरू होने जा रहा है कथक केंद्र लखनऊ, तो और उसमें इतने बड़े गुरु सिखाने आ रहे हैं, तो फिर हमने एक कार्यक्रम हुआ यहाँ पे रविंद्रालय में, उसमें बृजू महाराज जी ने नृत्य किया, और भी हमारे गुरु जी ने भाव बताए, बड़ा अच्छा लगा देख के, हम छोटे थे। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, हमें जाके सीखना चाहिए। तो मैं और मेरी एक स्कूल की फ्रेंड, हम दोनों चले गए जहाँ आज भातखंडे है, वहीं पे संगीत नाटक अकादमी होती थी, और उसमें 2-3 कमरों में कथक केंद्र चलता था।
1: अच्छा।
0: जिस दिन मैं गई हूँ, हमारे गुरुजी मुझे अभी भी याद है, उसकी बड़ी बड़ी आर्चेज याद हैं। गुरुजी सीढ़ियों के 5-6 सीढ़ियां उसके ऊपर खड़े थे, तो और नीचे देख रहे थे। वो बहुत समय के पाबंद थे, और वो समय से बहुत पहले आ जाते थे हमेशा, तो खड़े थे बाहर। हमने कहा सब हमको सीखना है, हम नहीं पहचानते थे उनको, तो उन्होंने कहा कि तुमको कुछ आता है? तुमने कहा नहीं आता तो नहीं गुरुजी। अच्छा ठीक है, सिखाएंगे। तो उस दिन के बाद से जो है मेरे जीवन की बिल्कुल दिशा ही बदल गई, और मैंने उनसे तालीम लेना शुरू कर दिया। जब उनको बुलाया गया तो यही निश्चित किया गया था कि वो गुरु शिष्य परंपरा में ही सिखाएंगे, कोई पाठ्यक्रम कोई एग्जाम नहीं होगा, जो क्योंकि वो गुरु उनकी इच्छा जो है वो सिखाएंगे। तो उन्होंने सिखाना हमको शुरू कर दिया था। उसके बाद भी मेरी पढ़ाई तो जारी रही, क्योंकि मेरे घर से ये था कि भाई तुम नृत्य करना चाहती तो करो, लेकिन पढ़ाई तो पूरी करनी है।
1: बहुत अच्छी बात है कि उस जमाने में भी आपको इसमें प्रोत्साहन मिला अपने परिवार से।
0: बहुत ज्यादा, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे अगर जो कुछ भी, अगर मैं किसी के प्रति उऋण नहीं हो सकती हूं, मेरे पिता एक बड़े अफसर थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं, लेकिन एक पिता के रूप में मेरी बहुत मार्गदर्शन किया, और मुझे बहुत आजादी दी कि मैं नृत्य सीख सकूं। आपको पता है मैं जितना जुड़ी हुई इस आकाशवाणी से, वो भी लगभग उतने ही समय से है। उतना ही समय हो गया मुझे यहाँ पे आपके यहाँ नाटक में काम करते हुए, सुगम संगीत में काम करते हुए, डॉक्यूमेंट्रीज के पीछे बोलते हुए, और समाचार भी पढ़े हैं मैंने यहाँ पे। तो आकाशवाणी मेरे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह हमारी तालीम शुरू हो गई अपने गुरु से सीखते सीखते। तो वो गुरु शिष्य परंपरा में ही सीखना था, तो उनकी जो इच्छा होती थी, जिस शिष्य में वो जो सिखाते, सबको सब कुछ थे, लेकिन जिस शिष्य में कोई विशेष गुणों, जैसे किसी का पैर बहुत अच्छा है, किसी का अभिनय बहुत अच्छा है, तो मेरे पे उन्होंने सबके साथ अभिनय पे बहुत काम किया, क्योंकि उनका खुद का जो विशेषता थी वो लास्य अंग प्रधान नृत्य और अभिनय प्रधान नृत्य था। तो फिर वैसे ही मैंने उनसे सीखना शुरू किया लगातार।
1: तो कुमकुम जी, आपसे हम आगे बात करते रहेंगे, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्यारा सा गीत सुनते हैं, कोई आपकी पसंद का हो तो।
0: हाँ बिल्कुल, गाने तो बहुत सारे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। एक गाना है इशारों इशारों में दिल लेने वाले।
1: क्या बात है। तो कश्मीर की कली का ये गाना हम आपको सुनवाते हैं।

0: आज हमारा तीसरा रविवार होता है, इसमें आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुमकुम धर जी, जो कि एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है और अपने विषय में बता रही हैं, साझा कर रही हैं, जो कि वाकई में बहुत ही लोमहर्षक है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है आपके जो अनुभव है वो आप जब हमसे बता रही हैं, तो लखनऊ वालों को भी अच्छा ही लग रहा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आप अपने सफर के बारे में बता रहे थे।
1: तो फिर ऐसा हुआ कि हमने तालीम लेना शुरू किया और उनके ही निर्देशन में छोटी छोटी प्रस्तुतियां, एकल प्रस्तुतियां, समूह प्रस्तुतियां, उनकी नृत्य नाटिकाओं में काम किया। उन्होंने बहुत अच्छी नृत्य नाटिकाएं यहाँ पे लखनऊ में भी प्रोड्यूस की थी, गौतम बुद्ध, चंद्रावली और भी सारी चीजें उन्होंने की, तो उनके निर्देशन में काम करते रहे। लेकिन 1978 में हमने उनको खो दिया, उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद एकदम ऐसा लगा कि अब क्या होगा,
0: अब क्या करें,
1: अब

0: कौन बताएगा और किससे पूछ के काम करें. बहुत समय लगा अपने आप को इकट्ठा करने में, गैदर करने में. फिर ये लगा कि नहीं, अगर हमें मान लो कोई चीज करनी है, अगर हमारे गुरु होते तो वो कैसे सोचते. हालांकि उस वक्त बहुत छोटे थे कुछ नया और वो करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी गुरु शिष्य परंपरा के विषय में. उसमें ये होता है कि आप हमेशा अपने गुरु के साथ साथ ही रहते थे, त्योहारों में दिन भर वहीं पर रहते थे, कथक इनमें शाम को उनके घर चले. मैं तो उनके घर में रही भी हूँ. जब मेरे पिता कमिश्नर होके पौड़ी चले गए तो फिर ये अब तो रुक जाएगा सीखना, तो मेरे गुरु ने कहा कि नहीं मैं इसको अपने घर में रखूंगा.
1: क्या बात.
0: तो मैं अपने गुरु के घर में रह के सीख. तो उसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ, उस गुरु शिष्य परंपरा की ये एक विशेषता है कि उसमें आप केवल नृत्य करना या संगीत या जो भी आप वही नहीं सीखते हैं, आप और भी बहुत कुछ सीखते हैं. मतलब जीवन जीने का ढंग, आप कैसे दर्शकों से संवाद करेंगे वो सब, और कैसे आप अपने दर्शकों को एसेस करेंगे कि आप अगर मंच पे हैं तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए. और बहुत कुछ हमने जब वो नहीं थे तो ये रियलाइज किया कि और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अप्रत्यक्ष आदमी के अंदर आ जाती हैं. जब आप करने लगते हैं तो वो प्रकट होने लगती
1: है. बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं रहता है.
0: बिल्कुल. लेकिन मेरी सहायता भी बहुत लोगों ने की. मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस जगह के लखनऊ के जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे जो लोग नाटक से जुड़े थे, जो लोग फोटोग्राफी से जुड़े थे, जो लोग मतलब संगीत से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने मेरी मदद बहुत की, क्योंकि उस वक्त मैं सीख रही थी, पहली बार कहाँ करने की कोशिश कर रही थी. तो बहुत लोगों ने इसमें मेरी बहुत सहायता की है, इसीलिए मैंने उनसे बहुत सीखा है, उनसे बहुत समझा है. आकाशवाणी के भी यहाँ जो आपके निर्देशक होते थे उनसे भी मैंने बहुत सीखा है. तो धीरे धीरे करके मैंने फिर कोशिश की खुद ही कोई आप स्क्रिप्ट ले, मतलब जो अपना टेक्निकल पक्ष है वो तो है ही है, लेकिन जो अगर कुछ नया करना है तो कैसे उसकी स्क्रिप्ट ढूंढी जाए, कैसे उसको कंपोज कराया जाए, फिर उसको कैसे कोरियोग्राफ कराया जाए, ये धीरे धीरे धीरे करके वर्षों में सीखा, कार्यक्रम करने लगी.
1: नृत्य आपकी पहली पसंद और आखिरी पसंद जरूर है, लेकिन इसके अलावा जैसे आप नाटक विधा में हैं, आप वॉइस ओवर करती हैं, आप बहुत सारे आप सुगम संगीत वगैरह, मतलब कोई ऐसा शायद क्षेत्र छूटा नहीं है कला का जिसमें आप नहीं है. तो इन सब के लिए आप समय कैसे निकाल.
0: तो देखिए इसमें क्या बात है, जैसे हमारी जो भारतीय अवधारणा है उसमें नाटक एक टर्म है, और ये माना जाता है कि उस नाटक के सभी तत्व हैं, नृत्य भी उसी में, संगीत भी उसी. लेकिन मैंने भी ये रियलाइज किया कि सब एक दूसरे की परस्पर सहयोगी विधाएं हैं. जैसे मतलब मैं सोच ही नहीं सकती, अगर आपको स्वर का थोड़ा समझ नहीं है तो आप कैसे नाचेंगे, अगर आपको लय की समझ नहीं है तो आप कैसे नाचेंगे, तो सवाल ही नहीं उठता है. अगर आपको संवाद बोलने का तरीका नहीं मालूम है तो आप कैसे इंटरैक्ट करेंगे दर्शकों से, कैसे बात करेंगे. तो ये सब चीजों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है और इसका फायदा भी मिलता है. जैसे मैंने रंगमंच भी, अच्छा सीरियस रंगमंच यहाँ पे किया, बहुत प्रसिद्ध संस्था है दर्पण, जिसकी तो अब हीरक जयंती भी हो चुकी है. तो उसमें भी मैंने काम किया अच्छे निर्देशकों के साथ. अच्छा एक बार और बताऊं आपको बहुत मजेदार, मेरे अपने गुरुजी जो थे उनको नाटक बहुत पसंद था, वो आगा हश्र कश्मीरी के शागिर्द थे. अच्छा. उन्हें पूरे पूरे नाटक जबानी याद थे. तो कभी कभी तो मुझ पर गुस्सा करते थे, ये क्या है नाटक रिहर्सल, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, गुस्सा भी. लेकिन मेरे सारे नाटक देखने आते थे और मुझे नाटक करने की अनुमति भी देते थे
1: और आशीर्वाद आपको.
0: बिल्कुल, देखने आते, लगातार देखने आते थे, क्योंकि उनको खुद को शौक था. उन्होंने फैयाज खान से गाना सीखा था, मतलब ये लोग कंप्लीट आर्टिस्ट होते थे. लेकिन वो क्या हुआ कि नाटक का आपको ब्लॉकिंग कैसे होती, आना जाना, उसने मदद की, गायन के स्वरों ने मदद की, नृत्य की अपनी जो हमने सीखा अभिनय भंगिमाएं जो भी, उसने मदद की. तो कुल मिला के ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा, ये तो मुझे पक्का विश्वास है.
1: और एक पूरा व्यक्तित्व निखर कर आता है जब इतनी सारी विधाओं में आप पारंगत होते हैं. और कुमकुम जी, आपके बारे में हम जितना कहें वो कमी है, और आप इस तरह से हमारे श्रोताओं से जुड़ी हुई इस वक्त, क्योंकि सबको अच्छा लग रहा होगा आपके जो.
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.
1: तो हम जानना चाहेंगे कि आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, आपको यश भारती का सम्मान मिला, संगीत नाटक अकादमी जो सेंट्रल केंद्रीय सम्मान भी आपको मिला. और जब कलाकार को सम्मान मिलता है, कलाकार तो उनसे बहुत ऊपर होता है वैसे, लेकिन जो सम्मान मिलता है तो जो उनको एक खुशी मिलती है.
0: हाँ,
1: वो तो जरूर है.
0: बिल्कुल है, वो जरूर है. मुझे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 94 में, बहुत छोटी थी मैं तब, मिल गया था. उसके बाद फिर यश भारती 2015 में, फिर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी 2020 का मुझे 23 में मिला था वो आके. ये बिल्कुल सही बात है, अगर कोई इस बात को रिकग्नाइज करता है कि हाँ आप कुछ काम कर रहे हैं, उससे बड़ी तसल्ली होती है. और एक चीज और से बड़ी तसल्ली होती है, भाई आदमी परफॉर्म करता है मंच पे तो वो दाद के लिए ही करता है, सबसे ज्यादा प्रेम.
1: तालियां बजती है तभी एक कलाकार को उत्साह मिलता है और अच्छा लगता है.
0: अच्छा लगता है बहुत सब.

0: बहुत फर्क पड़ता है, सब कुछ उन दर्शकों के लिए यही है, और अगर उन्हें अच्छा लगता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई साल तालीम भी दी है, मैंने पहले से ही गुरु शिष्य परंपरा में मैं सिखाती थी, फिर मैंने भातखंडे में जब एक प्रोफेसर की जॉब निकली तो मैंने प्रोफेसर मैं कई साल वहां सिखाया, तो मैंने वहां पे एमए की कक्षाएं कई साल ली, और मैं उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थी, डीन भी थी, और कुछ समय के लिए मैं कुलपति भी रही वहां पे।
1: तो आप उसमें कुलपति रही हैं, कुछ उस सफर के बारे में भी हमारे श्रोताओं के साथ थोड़ा अपने अनुभव साझा कीजिए, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा गीत हो जाए आपकी पसंद का।
0: हाँ, मेरी पसंद का गीत है, इतनी शक्ति हमें देना दाता।

0: तो श्रोताओं, इस गीत के बाद हम पुनः जुड़े हुए हैं डॉक्टर कुमकुम धर जी से, जो आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि आप बहुत ही प्रबुद्ध और प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं और आप गुरु शिष्य की परंपरा को भी मानती हैं और आपकी बहुत सारी शिष्य शिष्याएं हैं जिनको आप लगातार सिखा रही है। और भातखंडे की हम बात कर रहे थे, भातखंडे विश्वविद्यालय में आप कुलपति रही हैं, अभी प्रोफेसर भी हैं, तो आप अपने उस सफर के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
1: देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भातखंडे पहले तो वो महाविद्यालय था, फिर वो सम विश्वविद्यालय था, फिर वो संस्कृति पूरा एक स्टेट यूनिवर्सिटी। तो उसमें क्या बात है, जब उसकी प्रतिष्ठा बहुत पहले से बहुत है, जब मैं भातखंडे से जुड़ी भी नहीं थी तब भी मुझे लगता था अगर आप किसी से भी बात करें तो लोग कहते थे कहीं देश में विदेश में, अरे हाँ हमारी मौसी ने वहां सीखा है, अरे हाँ हमारा भतीजा वहां तबला सीखा, मतलब पूरी प्रसिद्धि और लोग उससे जुड़े हुए हैं। जो इस कम से कम इस शहर या इस प्रदेश के लोग हैं उनके किसी न किसी मित्र संबंधी कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा ही है। इस तरह से इस जगह की प्रतिष्ठा बहुत थी, फिर इसमें बड़े बड़े गुरुओं ने सिखाया है। और एक मजेदार बात यह है कि मैंने भातखंडे से तालीम नहीं ली है, अच्छा। मैं वहां सीखी नहीं हूँ, लेकिन उसी परिसर में मैं पिछले 52-53 साल से जा रही हूँ। कैसे, मैंने आपको बताया भातखंडे जो जगह है उसी परिसर में संगीत नाटक अकादमी का, उसी बगल में हम अपने गुरुजी से सीखते थे, तो एक इंटरेक्शन भी रहता था। हमारे गुरुजी से मिलने वहाँ के लोग आते थे, आचार्य आते थे, प्रिंसिपल आते थे, जो भी सभी आते थे, और हमारे गुरु भी कभी वहाँ जाते थे। मैंने उस समय भी कभी वो हम गुरुजी से मांग के ले गए कि हमें एक नृत्य नाटिका करनी है तो इसको क्या हम ले लें। हमारे देखिए, हमारे गुरु जो जिस परंपरा में हमने है वो बहुत स्ट्रिक्ट परंपरा होती थी, ऐसी इजाजतें नहीं मिलती थी और हम बहुत डरते थे कि जब तक उनकी बिल्कुल अनुमति 100% ना हो और उन्हें जब तक ये ना लगता हो कि हाँ ये सही जगह है। कई दफा तो उन्होंने कहा कि हाँ करना तो ठीक है लेकिन मेरे कमरे में आके रिहर्सल करो। तो ये भी था कि उनकी ध्यान उन निगरानी के वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इस भावना से। तो तब से भातखंडे से जुड़ाव रहा। फिर जब भातखंडे में मुझे प्रोफेसर के रूप में काम करने का मौका मिला, और हाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी मैंने भी बहुत सीखा, क्योंकि मैंने तो सीखा था गुरु शिष्य परंपरा में और मैं परफॉर्मर थी पूरी जिंदगी। यहाँ आके मैंने संस्थागत शिक्षण के बारे में सीखा कि भाई इंस्टीट्यूशंस में कैसे पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी की और क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं, कैसे परीक्षाएं होती हैं, कैसे सिलेबस बनते हैं, कैसे लोगों को मार्किंग की जाती है, सब कुछ कैसे कंडक्ट, मैंने बहुत सीखा।
0: जिम्मेदारियां
1: बिल्कुल, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी नीचे से लेकर ऊपर तक निभा ली, तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। तो उस परिसर में फिर पूरे मैं उसी में मैं काम करने लगी। तो मुझे ये लगता है कि वो एक बहुत प्रतिष्ठित और बहुत अच्छी संस्था है और वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहा था और उसे बने रहना चाहिए, ऐसी मेरी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं उसके लिए। और बहुत जुड़ा उससे, आज भी मैं उनसे अकादमिक कार्यों के लिए, शैक्षणिक कार्यों के लिए और कार्यक्रमों के संबंध में कई समितियों में सदस्य भी हूँ, जाती रहती, तो मेरा जुड़ाव लगातार वहाँ पे है बिल्कुल।
0: वाकई में बहुत ही अच्छा सफर हम आपके साथ तय कर रहे हैं, आपके जो कला क्षेत्र में और आपके जीवन के बारे में लोगों को पता लग रहा है। और आपके घराने के बारे में कुछ बताएंगे कि
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हाँ, मैंने एक बहुत बड़े आचार्य जिनसे सीखा वो लखनऊ घराने के बिल्कुल प्रतिनिधि आचार्य हैं। और इस घराने की जो खास बात है, वैसे तो सभी जो मशहूर बाकी घराने जयपुर बनारस रायगढ़ ये भी सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन लखनऊ घराने की विशेषता है तो यहाँ की फिजा में एक बात है, नज़ाकत है, नफासत है, इत्र फुलेल है, जरदोजी है, चिकन है, अदब है, बोलचाल है, वो सारी चीजें इस डांस फॉर्म में इस घराने की विशेषताएं भी बन जाती हैं। तो बड़ा कोमल अंग संचालन है, बड़ा बारीक अभिनय है, जो दर्शक भी होते थे पहले, क्योंकि महफिलों का नृत्य बहुत समय के लिए रहा है तो बड़ी क्लोज वो होती थी इंटीमेसी दर्शकों के साथ, तो वो भी रसज्ञ होते थे, पढ़े लिखे समझदार, जिसे अगर आप कुछ करें तो उन तक पहुंचता था। तो इस घराने की विशेषताएं यही बातें, यहाँ की गते बहुत खूबसूरत हैं, उस पे से भी मेरे गुरुजी का लास्य अंग, कोमल अंग, स्त्रियोचित अंग, और उस पे से अभिनय की जो

0: बिल्कुल पराकाश था। तो ये जो इस घराने की खास बात है, बाकी सब कुछ भी है इसमें, तैयारी, लयकारी, सब तरह की चीजें हैं, लेकिन इसका अभिनय, इसका लास्य अंग, इसका सुंदर ढंग से अंग संचालन बड़ा महत्वपूर्ण है।
1: वाकई में आप से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कुमकुम जी, और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस 50 वर्ष से ज्यादा के आपके जो कला का क्षेत्र आपका रहा है, तो आपका जो सफर रहा है, इस दौरान आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, कोई ऐसी घटना आपको याद हो जो आपको अभी तक याद हो, चाहे बचपन की हो या बात की हो?
0: यानी ऐसी कोई विशिष्ट घटना तो एकदम से याद नहीं आएगी, पर हाँ ये बात सही है कि इस सफर में उतार चढ़ाव आए हैं बिल्कुल। कभी कभी लगता था कि भाई अब ये कुछ नहीं हो पाएगा हमसे, ऐसा भी समय आया है जब लगा है कि नहीं, ये तो कभी नहीं सोचा कि मैं नृत्य छोड़ सकती हूँ, हाँ, वो तो नहीं छोड़ पाई, लेकिन वो कभी कभी करियर के मामले में थोड़ा सा एक ऊपर नीचे होना होता है। उसमें क्या कारण है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं, और नृत्य अपने आप में एक टीम वर्क है। आपको संगतकर्ता चाहिए, आपको मंच चाहिए, आपको घुंघरू चाहिए, ब्रोशर चाहिए, फोटोग्राफी चाहिए, कॉस्ट्यूम्स चाहिए, बहुत सारी रिहर्सल चाहिए,
1: और लाइटिंग
0: लाइटिंग चाहिए, साउंड चाहिए, तो इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं किसी एक परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए। कभी कभी वही होता है ना कि बहुत सब कुछ वैसा ही था फिर भी वो बात नहीं बनी, यहाँ तक कि दर्शकों का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा होता है। जब आपको अच्छे देखने वाले लोग मिलते हैं, आपको दाद देने वाले, आपको सुनने वाले, उसका भी आपकी परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए शायद जो लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में होते हैं, चाहे नृत्य हो या और कोई कला हो, वो बहुत ईश्वर के वो डिपेंड करते हैं भगवान पे,
1: आस्था है वो,
0: आस्था वो उनकी कृपा से ही अच्छा हो सकता है, ऐसा दृढ़ विश्वास होता है हम लोगों को, और होता भी यही है।
1: और एक कलाकार होने के नाते, जैसा कि आपने कहा, ईश्वर में आस्था होती है, प्लस अपने ऊपर भी एक कॉन्फिडेंस, जब आप एक कार्य करते जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस भी आता है,
0: हाँ।
1: वो एक संबल मिलता है, और साथ ही साथ जैसे शिष्याओं के बारे में
0: जरूर कहना चाहूंगी, वो मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत समय बहुत लोगों को खाया। उसमें भी क्या होता है ना, कुछ बहुत जो टिके रहते हैं, कुछ तो ऐसे जो 25 साल से टिके ही हुए हैं और सीखते जा रहे हैं, कुछ थोड़े समय के लिए सीखते चले आते हैं, कुछ क्योंकि मैं भातखंडे में थी तो वहाँ पे जितने लोगों ने उस समय एमए किया, क्योंकि भातखंडे ही एमए की डिग्री देता था, तो सारे लोग लगभग मुझसे सीख के गए हैं वहाँ पे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आज की पीढ़ी में इस कला के प्रति या शास्त्रीय कलाओं के प्रति रुझान नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो पूरी निष्ठा आस्था से सीखते हैं, हालांकि आजकल बहुत और भी वो है ना, मोबाइल है, हाँ, चीजें हैं, बहुत सारे लोग
1: थोड़ा
0: है,
1: सा
0: कमर्शलाइज हो, हाँ, हो जाता है,
1: थोड़ा लेकिन सा ये भी होता है कि लोग हमें ज्यादा से ज्यादा देखें तो शायद उस ललक में कहीं
0: ये कुछ ज्यादा ही हो गया है अभी, लेकिन पहले ऐसा नहीं, पहले थोड़ा सीख लेना चाहिए, अच्छा सीखना चाहिए। अब जैसे
1: कला होती है वो साधना ही होती है,
0: सिर्फ साधना है, वही मैं कहना चाहूंगी कि एक लक्ष्य निर्धारित करके लगातार चलते रहना और लगातार उसके लिए परिश्रम करते रहना, इसमें शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है, एकदम भी नहीं है, तो वो है। लेकिन एक गुरु के रूप में अगर आपसे कहूंगी तो एक वो परम संतोष होता है जब आप देखते हैं कि आपसे सीखे हुए जो बच्चे छोटे छोटे थे, बड़े बड़े होके वो अपने आप में इतने सफल नर्तक या नृत्यांगनाएं बन गई हैं और अच्छे से सीखती हैं, समझती हैं, उस पूरे परिवेश को समझती हैं, और आप मुझे ही सलाह देती हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए लेकिन ये परम संतोष देता है मुझे, मुझे अच्छा लगता है, बस ये लगता है गुरु से मिला उसको आगे बढ़ा दिया।
1: बिल्कुल, और जब गुरु को ये संतुष्टि मिलती है कि उसके शिष्य जो है वो उनकी परंपरा को या कला को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें सफल हो रहे हैं, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है, और ईश्वर की ऑफकोर्स ये नेमत होती है। आप में ये चीज शुरू से थी, आपने उसको विकसित किया और लोगों तक पहुँचाया। कुमकुम जी, आपने देश विदेश में सब जगह पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए होंगे, और कई देशों में ऐसा भी रहा होगा कि कुछ ऐसे अनूठे अनुभव आपको रहे होंगे, कुछ इसके विषय में हमारे श्रोताओं को बताइए, कुछ चटपटे अगर अनुभव है या कुछ अच्छे अनुभव।
0: एक तो बड़ा मजेदार है, जब शुरू शुरू में हम लोग जाते थे और खास तौर से गल्फ कंट्रीज वगैरह में, तो वहां लोगों को शास्त्रीय नृत्य के बारे में इतना जानकारी नहीं थी, फिर भी वो देखते थे कौतूहल से। अब बाद में तो फिर ऐसा हो गया, जैसे लंदन वगैरह में लोग टिकट खरीद के आते थे, वहां पे एक दर्शक वर्ग डेवलप हो गया था। लेकिन मुझे याद है कि किसी बड़ी गल्फ कंट्री ही थी कोई, जहां मैं एक ओपन स्टेज पे डांस कर रही थी मैं, और वहां पे एक लाइन में जमीन पे बहुत सारे लोग शायद फौजी ड्रेस में बैठे हुए थे।
1: अच्छा।
0: नाचते नाचते एक हुआ कि एक व्यक्ति उठा, एक यंग सा फौजी बेचारा, आके मेरे गले में एक माला डाल दी। अब

0: नाचते नाचते वो माला मेरे, फिर मुझे समझ में तो ये आया कि वो क्योंकि मेरी भाषा नहीं जानता हाँ। था तो अप्रिशिएट करने का उसका ये तरीका था, वो
1: एक समान
0: बिल्कुल। और भी जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ जो हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं, भारतीय हों और पहले तो मतलब बांग्लादेशी हो, फिलीपींस हो, क्योंकि वो एशियन ओरिजिन के लोग, वो संस्कार वही होते हैं, वो समझते हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं, वो आपसे बाद में भी मिलने आएंगे, नेक्स्ट डे भी आपके होटल में आएंगे, आपको घर में बुलाएंगे, आके खाना खा लीजिए, वो बड़े कौतूहल से आपके तबले वाले की उंगलियां देखें, हमारे घुंघरू को छू के देखेंगे हाँ। कि आखिर ये कैसे बज रहा है, कैसे होता है, हमें मालूम है हम जिंदगी में कभी दोबारा उनको देख ना, मुझे उनके नाम याद है ना, हम उन्हें मिल पाएंगे कभी।
1: लेकिन आपको ये अनुभव तो है कि जो हॉस्पिटैलिटी, जो वार्मथ उस वक्त आपको मिली, आज भी याद कर
0: मुझे है? याद है बिल्कुल जी, जी। एक लड़की थी, इजिप्ट में थी लड़की, वो हिंदी फिल्में बहुत देखती थी, वो वैसे पहनती थी ना हिजाब पहन के आती थी, वो मेरे साथ साथ लगी रही पूरे समय में
1: अच्छा।
0: हाँ, और वो कोशिश करती थी हिंदी के डायलॉग्स हिंदी फिल्मों से सीखे हुए उससे मुझसे बातचीत करे
1: हाँ।
0: पता नहीं क्या प्रेम, एक प्रेम था जैसे मैंने देखा इसराइल में, इसराइल के लोग जो है इसको अपना मदर लैंड मानते हैं
1: अच्छा।
0: अपने इस भारत को, बहुत ऐसे भारतीय हैं जैसे आप गुजराती स्पेशली जो बाद में इसराइल जब बना उसके बाद के, वो तो हिंदी बोलते भी हैं, बम्बई में रहे या कहीं, वो इतना प्रेम, कुमकुम बेन इतना प्रेम करते हैं, तो ये सब चीजें दिल को बहुत छूती हैं और बहुत मुझे याद है, मुझे मेमोरी में है चीजों का।
1: तो देखिए कला से जो है रिश्ते भी कायम होते हैं देशों के बीच में, और ये कितनी अच्छी बात है कि आपको आज तक ये अनुभव याद है, और ये जो रिश्तों में गर्माहट होती है इसी की चाहत सबको होती है, और इसी मोड़ पे हम आपसे एक गीत की फरमाइश करेंगे।
0: गीत बेताब दिल की तमन्ना यही है,
1: क्या बात।

0: तो चलते चलते कुमकुम जी हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका ये संदेश तो लोगों तक जरूर पहुंचा है कि कला को साधना है, लेकिन उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे आज के नई पीढ़ी को खासतौर पर?
1: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो कोई भी, वैसे तो पढ़ाई लिखाई हो या कोई भी और विधा हो जिसमें उसको, किसी भी बच्चे को या युवा को इंटरेस्ट हो, तो उसको तो जरूर परस्यू करे, लेकिन उसे हल्के में ना ले। मतलब उसे पूरी साधना के साथ, एक तो सही गुरु का चयन होना, फिर सही जगह जाके सीखना, ईश्वर पे आस्था रख के एक लक्ष्य निर्धारित करके और पूरे परिश्रम के साथ अगर कोई किसी विधा में मेहनत करेगा तो भगवान उसको जरूर फल देगा, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी।
0: आज के मेहमान में हमारे साथ थी डॉक्टर कुमकुम धर जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। प्रसिद्ध नृत्यांगना, पूर्व कुलपति, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर कुमकुम धर से बातचीत कर रही थी सुमोना पांडे जी।
3: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
4: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
3: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
4: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं,
3: धड़कन लखनऊ की
4: 100.7 FM रेनबो।
5: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
6: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
5: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें।

0: विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा, सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरबीएल लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
2: पुरानी जींस और गिटार,
1: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
3: है,
1: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
4: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई।

भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क।

जय दोस्तों, हमें आप और आप हमें मिल गए हैं। हम हैं 100.7 FM रेनबो और आपके साथ आपका दोस्त विनय बना हुआ है सुबह से। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच हमारा विशेष प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस आप सुनना बिल्कुल ना भूलें। और ये विशेष कार्यक्रम हर रविवार को आप तक पहुंचता है और आज का विषय है हाइपरटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप। और हाइपरटेंशन क्या है, इसके उपचार क्या है, लक्षण क्या है, कैसे इसे रोका जाए और कैसे एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए, इस पर बातचीत होगी। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद रहेंगे डॉक्टर कोमल अग्रवाल जी, जो कि MBBS हैं, MD हैं, आंतरिक चिकित्सा और आंतरिक चिकित्सा विभाग से। और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं 0522 2238 8052 और दूसरा नंबर है 0522 2982 3377। और अगर आपका फोन ना लगे तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। तो ये याद रखिएगा कि हम आपके साथ बने हुए हैं। जी, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, हम सब जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पवन ऊर्जा का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, भारत की बदलती और मजबूत होती स्थिति क्या है और क्या नए बदलाव हो सकते हैं, उसका उल्लेख किया है। आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें पवन ऊर्जा का उल्लेख है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूं जो अदृश्य है, लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। यह हमारी पवन शक्ति है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टि ही, वायुर्वै समष्टि है। अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है। साथियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूअल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है, नए अवसर बन रहे हैं, नई स्किल विकसित हो रही है, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सब की भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है।
0: तो इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए पवन ऊर्जा को थोड़ा और समझते हैं, इस बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञों को। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में, साथ ही आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक भी हैं।

0: प्रवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद धन्यवाद नीलम जी।
0: और साथ ही हमारे हैं यहाँ पर अतिथि ओम तनेजा जी। आप उद्यमी हैं और आपका अनुभव जो है पवन ऊर्जा क्षेत्र में है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय रूप से आप शामिल रहे हैं और भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम जी।
2: धन्यवाद।
0: जब हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, जिसमें से कुछ तकनीकी प्रश्न हैं, कुछ व्यवहार से जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत के लिए हम यही जानना चाहेंगे कि हवा से तो हम सबका रिश्ता है, लेकिन हम इसे ऊर्जा क्यों कहते हैं? पवन ऊर्जा का सही अर्थ क्या है? और ये मैं जानना चाहती हूँ प्रवीर जी आपसे।
1: ऊर्जा हम उसी को कहते हैं जो हमारे लिए कोई भी काम को सहज कर दे या कोई भी काम को करने में हमारा सहायता करे
0: जी।
1: तो उसमें पवन ऊर्जा एक प्रमुख ऊर्जा है और इनफैक्ट ये बहुत ही पुराने है। अगर हम मानव के इतिहास में देखें कि कौन सा ऊर्जा को हम पहले इस्तेमाल करना सीखे तो पवन उसमें से अग्रणी है। पुराने जमाने में पहले पवन के माध्यम से हमारा जहाज चला करते थे, पवन के माध्यम से पवन चक्की चलाया करते थे जिसमें उन्होंने ग्राइंडिंग करना शुरू किया। बट अभी मॉडर्न एज में हमने वही पवन को इस्तेमाल करके उससे हम बिजली बनाते हैं। और बिजली ऊर्जा हमारा क्या सहायता करता है ये शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर घर में प्रति क्षण हम बिजली का उपयोग करते हैं
0: जी।
1: तो वही बिजली हम पवन से बनाते हैं तो वही ऊर्जा फिर हमारा प्रति काम में हमें सहायता देती है
0: जी। इसलिए हम पवन की जो शक्ति है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं जी। हमने अक्सर वीराने में विशाल पंखे घूमते हुए देखे हैं और कई बार मन में सवाल आता है कि ये कैसे काम करते हैं, यहाँ एकदम वीराने में सुनसान जगह में इनकी देखरेख कैसे हो रही है, ये यहाँ पर क्यों है? जो शुरुआत है पवन ऊर्जा की वो कैसे होती है, जिन्हें हम टरबाइन कहते हैं या विशाल पंखे कहते हैं, ये कैसे काम करते हैं?
2: अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि ये पवन ऊर्जा कब से कहाँ से शुरू हुई है। ये असल में 1960 के दशक से ये कुछ हमारे साइंटिस्ट थे CSIR के और नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज के, जिन्होंने शोध करके हमारे यहाँ पवन ऊर्जा कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसके ऊपर कार्य किया जाए, उसमें किया था। तो पवन संसाधन जो हैं उसके लिए हमारी एक साइंटिस्ट थी अन्ना मनी जी, जिन्होंने बहुत कार्य करके और पूरा उसका जो है एक संकलन किया है और उस संकलन को उन्होंने 5-6 वॉल्यूम्स में डाल के और जो आज के दिन हमारे लिए एक किस्म से बाइबल जिसे कहते हैं वो है। पर उसके बाद उसके ऊपर बहुत काम हुए हैं, वो अलग चीज है, बट एक शुरुआत का जो था वो उनका था। हमारे यहाँ गुजरात में सबसे पहला जो है 1985 में एक पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया और समय के साथ सरकार ने इसमें कई बदलाव किए। हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना था जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंदर था, उसके बाद उसका नाम बदल के हमने MNES किया और उसके बाद आज के दिन वो MNRE कहलाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसका नाम है। ये 2006 से इसका नाम ये प्रचलित है। अब भारत में इस नवीनकरणीय ऊर्जा जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है
0: जी।
2: पवन ऊर्जा का जनरली फॉसिल फ्यूल या जिसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोल हुआ
0: जी,
2: या और इस तरह के जो उनके साथ मिलते जुलते हैं, इनके आयात और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का एक प्रभावी समाधान माना गया है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ गैर प्रदूषणकारी और सस्ती ऊर्जा स्रोत है जो ईंधन और परिवहन पर निर्भरता को कम करती है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या हरित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसमें एक खास बात है कि हमें इसके अंदर पानी का उपयोग भी बहुत कम करना पड़ता है। पानी का उपयोग जो है खाली कुछ एक कार्यों के लिए ही किया जाता है, सफाई वगैरह के लिए। अब इसका जो नीतिगत विकास हुआ है वो 1993 में हमारे मंत्रालय ने एक फिक्स टैरिफ बनाया था 2.25 रुपए का, जिसमें प्रति वर्ष 5% वृद्धि का प्रावधान था और उसके साथ साथ ही एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो एक ऐसा था कि आप जो भी कमाई करते हैं उसके अंदर जो उनको टैक्स

0: बेनिफिट मिल जाता था वो 80% तक का था उस समय, और उसमें जो है पहले 100% था, फिर उसको 80% कर दिया गया था, और जिसके लिए खुदरा निवेशकों को जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित किया। पवन ऊर्जा जनरेशन के लिए या उसके उत्पादन के लिए हम ये विंड टर्बाइंस का इस्तेमाल करते हैं
1: जी।
0: जो हमारे उस जगह पर जहां हमें हमारी स्टडी या हमारे एक किस्म से उसका अध्ययन किया जाता है
1: जी,
0: जो ये बताता है कि किस जगह पे हमें हवा का पवन का ज्यादा जोर मिलेगा
1: जी,
0: जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न कर पाए
1: जी।
0: तो हमने एक स्टडी करते हैं, उस स्टडी के हिसाब से जगह ढूंढते हैं कि किस जगह पर हमें इसको लगाना
1: जी।
0: अब आप जब लगाना चाहते हैं तो उसके लिए विंड टर्बाइंस जो बनाते हैं उनसे संपर्क करते हैं और उनके हिसाब से कि हमें किस जगह पर कितना जनरेशन मिलेगा इसका अध्ययन पूरा उसका किया जाता है, जिसके लिए एक अच्छी खासी साइंटिफिक स्टडी
1: जी। तो इस बारे में हम और भी जानेंगे, अब ये बताइए कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं?
0: आई थिंक मेरे हिसाब से हवा के साथ साथ
1: जी, हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है, यही गाना हम सुनवा रहे हैं।
2: हवा के साथ साथ,
3: अरे रे रे,
2: घटा के संग संग,
3: संभलना,
2: हवा के साथ साथ,

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, जो बता रहे हैं पवन ऊर्जा कैसे हासिल होती है, इसका महत्व क्या है और बदलते दौर में किस प्रकार से हम अपने काम करने के तरीकों को और भी अच्छा बना रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर भी हैं, और साथ हैं ओम तनेजा जी जो उद्यमी हैं और पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्य करते रहे हैं। तो प्रबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की तो हमने अक्सर बड़ी बड़ी टर्बाइन्स को देखा है, मन में सवाल आता है कि वीराने में ये खड़ी हैं, कैसे काम करती हैं, एक पूरा तंत्र क्या है, हम चाहेंगे कि आप हमें इस बारे में बताएं।
1: धन्यवाद नीलिमा जी, इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगा।
0: जी,
1: शायद आप अपने बचपन में कागज से छोटे छोटे पंखे बना के उसको कहीं पे जहाँ पे हवा चलता है वहाँ पे रखे होंगे तो वो घूमते हुए नजर आए होंगे।
0: जी,
1: इनफैक्ट मैंने अपने बचपन में बरगद की जो पत्ते होते हैं उसको दोनों साइड से एक विशेष भाव से काट के उसके अंदर एक दिन आप उसको
0: तीली लगा के रखिए
1: तो ये अपने आप घूमने लगता है जब आपका हवा चलता है। तो इसे पीछे का जो विज्ञान है वो ये है, उसको एरोडायनामिक्स बोलते हैं इंग्लिश में।
0: जी,
1: जो आपने अक्सर इवन हवाई जहाज का पंखों में वो देखा होगा वो शेप, तो उसी शेप में ये जो विंड टर्बाइन्स होते हैं उसको हम ब्लेड बोलते हैं, जो पंखा आप बताए उन्होंने तीन पंखे होते हैं उसमें, ये तीन ब्लेड उसी संरचना के साथ बनते हैं जो हवाई जहाज के पंखे होते हैं। तो ये कि उसको एक विशेष एरोडायनामिक शेप देता है जिसके वजह से जब हवा चलता है वो ये हवा का जो शक्ति है वो इसको घुमाने लग जाते हैं।
0: जी,
1: और कभी भी बिजली पैदा करने के लिए हमें जो जनरेटर है उसी जनरेटर

0: के अंदर जो स्टार्टर है या रोटर है उसी को घुमाने के लिए आपको शक्ति चाहिए। वो पंखा जब घूमता है तो वही घुमावट का जो शक्ति है वो जनरेटर में जाता है और जनरेटर से बिजली पैदा होता है, फिर वही बिजली को फिर हम ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर वही शक्ति हमारा घर पे बिजली बन के हमारा जो आमतौर के जिंदगी में हमारा डेली लाइफ में हमारे लिए, चाहे आपका लाइट हो, घर का पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो,
1: जी
0: वो हर जगह पे काम करता है।
1: जी, तो ये जो पवन चक्कियां हैं अल्टीमेटली ये बिजली आपूर्ति हमारे घरों में कर रही हैं और इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी टीम काम करती है और मंत्रालय जो है इससे जुड़ी हुई नीतियों को देखता है। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर टर्बाइन्स जो हैं, पवन चक्कियां जो हैं, इसमें प्राइवेट क्षेत्र काम करना चाहे तो किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, क्या नीतियां हैं?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है और इनफैक्ट आज हम देख प्राइवेट सेक्टर ही इसको ड्राइव करता है।
1: जी,
0: शुरुआती दिनों में जैसे तनेजा जी ने भी बताया, हमारा बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम जहाँ पे गवर्नमेंट से सहायता दी जाती है, वो तकनीकी रूप से हो या आर्थिक सहायता के रूप से हो, तो मंत्रालय के जो शुरुआती दिनों थे, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय पहले जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नया था तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत थी कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वेदर इट विल बी ए प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट, तो उसी समय मंत्रालय उसको आर्थिक सहायता भी देता था, फिर कुछ नीतिगत सहायता मिला, उसको हम जीबीआई कहते हैं, जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। जैसे आप एक जनरेटर है तो जितना यूनिट आप ग्रिड को देंगे हर यूनिट के लिए आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगा, बट ये सब सहायता 2017 के बाद बंद हो चुके हैं क्योंकि तब तक विंड एनर्जी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में उभर चुका था। तो 2017 के बाद आज के डेट पे जो नीति है गवर्नमेंट का उसको हम बिडिंग रेजिम कहते हैं।
1: जी,
0: मतलब इट इज ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। जितना हमें बिजली चाहिए होता है मंत्रालय के तरफ से हमारा चार, हम उनको रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहते हैं, जिसमें हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, एसजेवीएन है, तो वो अपने प्रतिवर्ष बिडिंग लेके आते हैं कि उनको कितना मेगावाट का या कितना गीगावाट का पवन ऊर्जा चाहिए। देन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो हमें लो टैरिफ सबसे ऑफर करता है
1: जी
0: वो प्रोजेक्ट उन्हीं को ही मिलता है। तो इसके कारण होता क्या है कि हमें बिजली सस्ते से सस्ते में मिलता है।
1: जी,
0: जो हमारे डिस्कम को, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो स्टेट्स में काम करते हैं, और ये बिजली अल्टीमेटली उन्हीं को खरीदना पड़ता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घर पे उसको उपलब्ध कराते हैं।
1: तो इसके लिए बिडिंग होती है।
0: बिल्कुल
1: जी। और मैं जानना चाहूंगी कि जगह का चुनाव कैसे किया जाता है कि कहाँ पर टर्बाइन्स जो हैं वो लगेंगी या इससे जुड़ी हुई रिसर्च कहाँ पर की जाएगी, तो उस जगह का चुनाव कैसे करते हैं?
0: हमें मंत्रालय को इसमें तकनीक सहायता देने के लिए हमारा एक सेंटर है जिसको हम, पहले इसका नाम था सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, सीवेट के नाम से शुरू हुआ था सन 2000 में, अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो चेन्नई में स्थित है।
1: जी,
0: तो इसका जितने भी टेक्निकल काम है या मंत्रालय को जो टेक्निकल सहायता है वो उसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है। और कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा का शक्ति ज्यादा है, जो वहाँ पे हमें पवन ऊर्जा या पवन चक्की बिठाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं, उसको पता करने के लिए हम उसको बोलते हैं रिसोर्स असेसमेंट, जो कि मिनिमम एक साल का काम होता है। तो वहां पे हम मास्ट लगाते हैं, विंड मास्ट, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगा हुआ होते हैं, जैसे आपका एनीमोमीटर होता है विंड का स्पीड को मेजर करने के लिए, विंड वेन होते हैं जो विंड का डायरेक्शन को मेजर करता है, और जब भी कोई पवन चक्की का प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें जो दूसरा एटमोस्फेरिक पैरामीटर से, जैसे कि आपका रेन गेज है, प्रेशर गेज है, क्योंकि एयर का कितना डेंसिटी है वो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, तो ये सबका मेजरमेंट होता है एक साल तक।
1: जी,
0: फिर उसी बेसिस में हमें पता लगता है कि इस साइट पे अगर हम पवन चक्की लगाते हैं तो हमें कितना उत्पादन होगा बिजली का, और उसी हिसाब से प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा कि नहीं होगा। बट ये तो मैंने बहुत ही टेक्निकल रूप से समझाने की कोशिश किया, अगर एक लेमैन लैंग्वेज में भी हम पता कर सकते हैं, जैसे ये कहाँ पे मास लगाएंगे, उससे पहले हम देख के भी बता सकते हैं कि कोई जगह यहाँ पे पवन है या नहीं है,
1: तो यानी जहाँ हवा का बहाव बहुत तेज होता है,
0: तेज होता है,
1: जहाँ हम महसूस कर पाए कि अक्सर यहाँ हवा चलती है, और कोई ऊंचा जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो आसपास, खुली जगह हो, तो उस हिसाब से हम जगह का चुनाव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे मास्क लगाने से पहले हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे जब जगह का भ्रमण करते हैं वो इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, इवन पेड़ का भी शेप को देखते हैं।
1: जी,
0: जहाँ पे कंटिन्यूअस विंड होता है आप वहां पर देखेंगे जो पेड़ होते हैं
1: वो
0: एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुका हुआ रहते हैं, तो वो एक प्राइमरी साइन है।
1: जी,
0: किसी भी
1: हवा की दिशा पता चलती है कि किस दिशा में प्रवाह ज्यादा होता है, तो फिर वो चक्कियों को उसी दिशा में लगाया जाता है। जी, बहुत अच्छे से हमें एक छवि आपने दी है बचपन से।

0: वैज्ञानिकों तक आप लेकर गए। अब ये बताएं कि कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं।
1: तो हम पवन की बातें करते हैं तो हमारा पवन का उत्पादन सबसे ज्यादा सावन के महीने में ही होता है
0: जी।
1: ये शायद आपके श्रोताओं को जानकर एक अच्छी जानकारी होगी कि पवन हमारा जो 4 महीना होता है
0: जी
1: सावन का, उसी समय सबसे तेज चलते हैं और सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं।
0: वाह,
1: तो सावन का महीना
0: जी। सावन का महीना,
2: सावन का महीना, पवन करे शोर,

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

ये समझ गए हैं कि सावन के महीने में पवन करे शोर, तो ये जो शोर है पवन का, ये ऊर्जा उत्पादन के बहुत काम आता है और हमारे विशेषज्ञों ने हमें ये आज बताया है, क्योंकि कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हैं जो कि उद्यमी हैं, पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। ओम जी

0: अब आपसे जानना चाहूंगी। जैसा कि अभी प्रवीर जी ने बताया कि ये आज तो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हम मान सकते हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तब आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप पवन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े, और उस वक्त क्या चैलेंजेस आपके सामने थे?
1: उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि ग्रीन एनर्जी की तरफ,
0: जी,
1: हरित एनर्जी की तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि जिस संस्थान में मैं कार्यरत था वहाँ थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से चलते थे, उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पानी से चलते थे, इन पर कार्य हो रहा था। तो हमारे एक निदेशक मंडल ने कहा कि हम लोगों को पवन ऊर्जा या सोलर ऊर्जा पे भी कार्य करना चाहिए।
0: जी।
1: तो उस समय पवन ऊर्जा पे हमने कार्य करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया, उसमें किया, और ये देखा कि पवन ऊर्जा एक समय तक लगभग, जिसे कह सकते हैं कि 5 या 6 वर्ष के अंदर, हमें जो उस समय इसके टैरिफ थे, उस समय चीजें थी, 5 से 6 वर्ष के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने किया हुआ है, उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो देखिए, कोई भी एक उद्यमी रहता है, उसको अपना प्रॉफिट और ये भी देखना होता है। तो ये एक ऐसा उस समय उद्यम था जिसमें हमें लगा कि हम इसके अंदर कार्य करके दो तरह के काम कर रहे हैं। एक तो हम जो है जिस जगह अपना विंडमिल या ये लगा रहे हैं,
0: जी,
1: उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होगा, जो हमारा एक किस्म से CSR एक्टिविटीज हो जाती है।
0: जी।
1: उसी के साथ साथ ही हमें जो है और पवन ऊर्जा का जो है लाभ भी मिलेगा, और हम जो है इसको, और इसी विषय पे, इसी के प्रेरणा को साथ में रखते हुए हमने पवन ऊर्जा के अंदर कार्य शुरू किया।
0: जी।
1: और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ 60-70 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए। पावर प्रोजेक्ट लगाने में हमें थोड़ा समय लगा,
0: जी,
1: पर जो मंत्रालय या और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी सहायता से हमने बहुत जल्दी ही इस कार्य को प्राप्त कर लिया। और उस समय हमें जो है विभिन्न सरकारों के, उनका भी अच्छा हमें साथ मिला। मंत्रालय की जो उस समय की योजनाएं थीं, जो एक किस्म से हम लोगों को फैसिलिटी थी, बेनिफिट्स थे, उन सब का भी हमें जो है भरपूर उपयोग किया, और हमने पाया कि हम जो है इस चीज के ऊपर अच्छा कार्य कर सकते और कर रहे हैं, और शायद साथ साथ हम देश में जो है अपने प्रदूषण की समस्या का भी एक निदान ढूंढ रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। जहां हम अभी कार्बन उत्सर्जन को लगातार कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, दूसरा जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो, हम कम से कम आयात करें। ऐसे में हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसे अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं, ऐसी ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगी, उस पर हमारी डिपेंडेंसी रहे, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जितना हम समझ पा रहे हैं कि पवन ऊर्जा एक ऐसी चीज है जहाँ लगातार आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो आप देख सकते हैं, वो मैनेज करना है। ऐसे में अगर कोई नया उद्यमी जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर सकता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
1: जैसा डॉक्टर प्रवीर ने बताया कि आजकल जो है बिडिंग का एक तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, वो उसमें भाग लेते हैं।
0: जी।
1: इससे पहले मैं आपको बताऊं, लगभग 70% तक जो इन्वेस्टमेंट हुई है एक छोटे उद्यमियों की रही है। इवन उसमें कुछ जो है ना इंडिविजुअल भी है, अकेले भी हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा कि कई कलाकारों ने अपना ये जो है इस क्षेत्र के अंदर अपना
0: इन्वेस्टमेंट
1: किया है। और वो जिसका 25 वर्ष तक जो है उनको फायदा हो रहा है, उनके अपने इनकम टैक्स में फायदा हुआ है जो स्कीम वगैरह थी।
0: जी।
1: और इसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र या जिन जगह पे लगा, वहाँ भी बहुत ज्यादा अच्छा उत्थान हुआ है, बहुत अच्छी उस जगह का प्रोत्साहन मिला है। वहाँ अच्छे खासे जो है लोगों का, जिसे बोलते हैं नौकरियां, या उनका कार्य करने का क्षेत्र बना है।
0: जी, उन्हें रोजगार मिलता है,
1: रोजगार मिलता
0: से
1: रहा है। पवन ऊर्जा जहाँ कहीं भी लगती है, आपको मैं बताऊं, चारों तरफ से मेन रोड से हर एक पवन चक्की के ऊपर चलने का एक रास्ता बनाया जाता है।
0: जी।
1: और

0: है उस रास्ते में लगभग कई बार वो रास्ता एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर का भी हो जाता है। तो रास्ते में कई उनको उद्यम जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको कुछ ना कुछ काम में मिल जाता है, उसके आसपास का क्षेत्र अच्छा डेवलप हो जाता है, अच्छा उसके अंदर उत्थान हो जाता है।
1: जी, हम डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जिन्हें बोलते हैं, जो किसी एक मुख्य काम से जुड़ी रहती हैं परोक्ष रूप से, यानी पवन ऊर्जा की वजह से जहां टर्बाइंस लगेगी वहां पहुंचने का रास्ता कोई तैयार करेगा, रास्ते में खाने पीने का सामान भी मिलेगा, फिर उस रास्ते पर वाहन भी आए जाएंगे, तो इसकी वजह से, परिवहन व्यवस्था की वजह से कई लोग जो हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, ये आप कह रहे हैं। जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी ये है हमारे लिए। मैं अब प्रवीर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, पवन ऊर्जा, आपने बताया कि पवन चक्कियां चलती हैं और उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या इन पवन चक्कियों को कभी पवन की वजह से ही नुकसान होता है? कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान में पवन चक्कियां अपने स्थान से उखड़ गई या उनके ब्लेड्स प्रभावित हुए और उसके बाद बिजली उत्पादन कम हो गया, क्या ऐसा भी कभी होता है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पवन चक्कियां हैं वो ऐसे ही डिजाइन होता है ताकि वो जो आंधी तूफान को भी झेल जाए, तो आंधी तूफान में भी वो गिरे ना। बट हाँ, बिजली उत्पादन थोड़ी देर के लिए शायद बंद हो सकता है, क्योंकि जब पवन चक्की काम करता है उसमें ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है कि जब पवन एक गति से आगे हो तो उसको वो बंद कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, गिरे ना।
1: जी,
2: तो फिर जैसे पवन आंधी तूफान चला गया तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है।
1: जी,
2: तो थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है, बट अभी तक आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा चक्रवात आया था अरबियन सी में, तो उसमें भी हमारा एक भी पवन चक्की नहीं गिरा था।
1: जी,
2: तो वो ऑलरेडी डिजाइन में इनबिल्ट है। बट हैविंग सेड सो, ये जब मैं बोलता हूँ तो आपको ये भी शायद ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे भारत जैसा देश है जहाँ पे हमारा जो पवन है उसका गति इतना भी ज्यादा नहीं है जितना यूरोप में होता है, क्योंकि हम जो इक्वेटोरियल कंट्रीज होते हैं हमारा यहाँ पे पवन जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आपने सुना होगा कि दिन में जो भूमि है वो जल्दी गर्म हो जाता है और हमारा जो समुद्र है वो थोड़ा ठंडा रहता है। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत जो है हमारा इक्वेटोरियल रीजन में हम रहते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल कंट्री में होता क्या है कि हमारा पवन का गति इतना ज्यादा नहीं होता है, हमें सिर्फ सावन के महीने में जो हमारा मानसून होता है उसी समय ही हमें पवन का गति ज्यादा रहता है। बाकी सब महीनों में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण ही हमारा हवा तेज होता है, इसीलिए हमारे जो ज्यादातर पवन की संभावनाएं हैं वो कोस्टल स्टेट्स में ही है। तो ज्यादातर आज के डेट पे जो भारत में लगे हुए हैं पवन ऊर्जा की प्रोजेक्ट्स वो 8 ही स्टेट में ही सीमित है।
1: जी,
2: अभी एक दो स्टेट में और अभी काम चल रहा है, जैसे कि उड़ीसा, तो वहाँ पे भी शायद अगले एक दो साल में आपको दिखेगा कि वहाँ पे भी लगा हुआ है, लग जाएगा।
1: ये कौन से 8 स्टेट हैं?
2: ये है हमारा सबसे आगे तो हमारा गुजरात है आज के डेट पे, उसके पीछे है तमिलनाडु, उसके पीछे है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देन मध्य प्रदेश।
1: जी,
2: तो यही सब स्टेट्स है जहाँ पे ऑलरेडी अभी पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे साइक्लोन, तो हमारा इंडिया जैसे कंट्री में क्या है कि पवन जो है ये मॉडरेट है, ऐसा नहीं है कि कम है, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज विंड स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड से लेके 7-8 मीटर पर सेकंड तक होता है, तो इसको हम एक्चुअली मॉडरेट मानते हैं। तो ये विंड में हम टेक्निकली बोलते हैं कि क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 साइड्स है, तो जो क्लास 1 होता है वो सबसे बेहतर साइड्स होते हैं जहाँ पे पवन की गति बहुत ज्यादा है, और क्लास 3 साइड्स होते हैं जहाँ पे मॉडरेट है। तो हमारा जो विंड के साइड से वो मॉडरेट है, एट द सेम टाइम हमें साइक्लोन भी देखना पड़ता है।
1: जी,
2: तो हमारे जो पवन चक्कियों को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। तो उसका परिणाम होता क्या है कि हमें थोड़ी सी वो जो डिजाइन है उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा।
1: जी,
2: बोलने का मतलब कि हमारा जो उसका टावर हो, गियर बॉक्स हो, ब्लेड हो, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं पवन चक्की का, वो सब एकदम मजबूत बननी चाहिए ताकि वो साइक्लोन को देख पाए, वो साइक्लोन में गिरे ना।
1: ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इसके लिए हम मशीनरी आयात करते हैं या ये भारत में निर्मित है सर?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे बहुत खुशी होगी इस बात को बताते हुए आपके श्रोताओं को कि भारत शायद विश्व में 5 या 6वां कंट्री है जहाँ पे ये सारे के सारे कंपोनेंट इंडिया में ही बनते हैं।
1: जी,
2: और इनफैक्ट हम आयात नहीं करते, हम निर्यात करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो मेरे पास डाटा है, हम 12,000 करोड़ से ज्यादा की पवन चक्की या पवन चक्की का कंपोनेंट भारत से बना के अलग कंट्री को निर्यात करते हैं, और जिसमें यूरोप भी है, यूएसए भी है, हम उस कंट्री को निर्यात करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम आयात नहीं करते, तो इसको बनाने के लिए जो कुछ कंपोनेंट या इनपुट मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स है, तो वो सब हम कुछ आयात भी करते हैं।
1: जी, तो एक तरह का संतुलन इसमें बना हुआ है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है। जी, मैं यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम सौर ऊर्जा से अगर तुलना करें तो सौर ऊर्जा के लिए हम हर किसी को

0: प्रेरित करते हैं कि वो अपनी ओर से योगदान करें और उनके पास जो भी स्थान है, छोटा स्थान भी हो, घर की छत है या खेत है, वहां से वो सौर ऊर्जा जो है उसमें योगदान कर सकते हैं, सोलर पैनल्स वहां लगा सकते हैं। क्या पवन चक्की के लिए भी ऐसा कुछ संभव है कि छोटे स्तर का कुछ उत्पादन वो कर पाए?
1: बिल्कुल संभव है, बट ये सोलर के तरह, जितना सोलर अभी हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा, शायद पवन चक्की का जो छोटा संरचनाएं है वो आपको नहीं मिलता देखने के लिए। उसका बहुत सारे कारण है, बट जो सबसे प्रमुख कारण होगा वो यही है कि कितना कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। जैसे अगर सोलर और विंड, जाहिर सी बात है कि हर कोई तुरंत कंपेयर करेगा कि मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो वो पैसा से मैं सोलर लगाऊं या विंड लगाऊं। अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपको जेनरेशन ज्यादा होता है, अगर विंड लगाते हैं तो कम होता है, तो आपका नेचुरल जो प्रेफरेंस है वो सोलर की तरह चला जाता है। बट ऐसा नहीं है कि विंड से नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर जो छोटे छोटे विंड टर्बाइन्स भी मार्केट में उपलब्ध है, जो 1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 10 किलोवाट तक, इवन 100 किलोवाट भी आता है, 500 वाट, 200 वाट, ये सब छोटे छोटे पवन चक्के भी मार्केट में उपलब्ध है। बट इसको जब आप सोलर के साथ कंपेयर करेंगे थोड़े महंगे लगेंगे। बट अगर मान लो आप रिमोट एरिया में है जहाँ पे आपको मेन ग्रिड नहीं मिलता है या मेन ग्रिड से बिजली जो है कंटिन्यूअसली नहीं मिलता है, तो उस क्षेत्र में अगर आप पवन चक्की, सोलर और बैटरी, ये तीनों को लगा देते हैं तो आपको शायद ग्रिड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएंगे बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में अपने ही घर के लिए। तो ये संभव है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस जगह पे है, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं और आप कितना बड़ा अच्छा सिस्टम घर पे बनाना चाहते हैं।
0: जी, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं, इसके बाद हमारी बातचीत जो है इसका सिलसिला जारी रहेगा।
1: आपने देश के बारे में पूछा है, पवन के बारे में पूछा है, तो पवन चले पुरबाई।
0: जी

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, इससे हमारी जानकारी बढ़ रही है पवन ऊर्जा को लेकर। साथ ही कुछ तकनीकी पहलू भी एकदम आम शब्दों में, साधारण भाषा में हम समझ पा रहे हैं। पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप एक साइंटिस्ट भी हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हमारे साथ हैं, उद्यमी हैं और भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से आप जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जो ये संघ है आपका भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ, ये किस प्रकार से काम करता है, क्या भूमिका है इसकी?
1: ये एक संस्था है
0: जी,
1: जो जितने भी हमारे टरबाइन के निर्माता हैं उन सबको आपस में जोड़ के रखे हुए है। समय समय पर जो उनके परेशानियां या चीजें हैं उनको मिनिस्ट्री के साथ या इन सब से साथ मिलके या और जगह पे मिलके, जैसे डिस्कॉम्स हैं, तो इन सब के साथ मिलके एक उसका सलूशन या एक निकालते हैं
0: जी।
1: इसमें जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब भी जुड़े हुए हैं
0: जी।
1: मैं आपको, जैसे प्रवीर जी अभी बता रहे थे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, लगभग 70-80% तक चीजें जो हैं कंपोनेंट और ये सब है
0: जी,
1: हम यहाँ भारत में ही निर्माण कर रहे हैं। और उसका स्टैंडर्ड भी जो है ना बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है, ताकि जो अभी बता रहे थे कि ज्यादा हवा चल रही है तो सब में कैसे उसको रोका जा सके, तो ये सारी चीजें जो है ना हम इन सब को अपने मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार हमारे जो एक मशीन्स हैं उनका टेस्टिंग और उनकी जो एक टाइप टेस्ट रहते हैं
0: जी,
1: जो हम बताते हैं कि ये सब चीजें हमारे यहाँ इस्तेमाल हों, और इस वजह से कम उसके अंदर जो है हमारा दुर्घटनाएं हों। मंत्रालय जो है हमारे ऊपर एक नजर रखता है कि हम जो है इस चीज को, ये टरबाइन जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसके पूरा जो है इसकी पूरी हिस्ट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग की और सब के ऊपर नजर रखता है
0: जी।
1: और समय समय पर वो उसमें बदलाव भी देता रहता है, ताकि एक विश्व के मानक या हमारे अपने भारतीय मानकों के हिसाब से ये चलता रहे।
0: क्या कभी लैंड एक्विजिशन को लेकर किसी तरह की कोई समस्या हुई है भूमि अधिग्रहण को लेकर?
1: ये वाकई ही एक प्रश्न ऐसा है जो एक द्विधापूर्ण रहता है हर एक जो भी पवन ऊर्जा का उद्यम लगाना चाहता है। क्या होता है कि पवन ऊर्जा की या पवन चक्कियां जो है इकट्ठी साथ साथ, जैसे आप सौर ऊर्जा को देखते हैं लगातार लगे हुए हैं
0: जी,
1: ये लगातार नहीं होते, इनके बीच में कुछ दूरी रखी जाती है ताकि एक का ब्लेड चलने से और दूसरे के चलने से उन दोनों के हवा का टकराव ना हो, और उन दोनों के टकराव को रोकने के लिए उसके बीच में कुछ डिस्टेंस रखा जाता है। इसके भी मानक बने हुए हैं
0: जी,
1: और जो मानक हमारे सिस्टम से या बहुत प्रयोग करके या बहुत उसके ऊपर जो है स्टडी करके बनाए गए हैं, तो उसमें जितना हमारा ब्लेड का डायामीटर या उसका व्यास रहता है उसके 3 गुना या 5 गुना दूरी उससे रखनी पड़ती है, ताकि दोनों ही टरबाइंस का आगे पीछे सामने साइड में कहीं पर भी हमारा इसका आपस में हवा का टकराव ना हो और उसकी वजह से एक बवंडर ना पैदा हो
0: जी।
1: क्योंकि बवंडर पैदा होने से हमारे मशीन जो एक लिमिट तक जो घूम सकती हैं वो थोड़ी सी हो जाती है और हमें वो मशीन को रोकना पड़ता है
0: जी। तो इसके लिए फिर जमीन भी काफी ज्यादा चाहिए होती है?
1: हाँ, देखिए हर टरबाइन जो है लगभग 2-2.5 हेक्टेयर के बीच में एक लगता है, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगला भी उसी तरह से, पर ये 2-2.5 हेक्टेयर जो जगह है ये ऐसे नहीं, इसके ये किस साइज की या कितनी बड़ी हम टरबाइन लगा रहे हैं उनके ऊपर, और आजकल जो है इसके बीच के दूरी के ऊपर कई लोगों ने

0: सौर्य ऊर्जा भी लगानी शुरू कर दी है
1: जी।
0: ताकि उसको विंड सोलर हाइब्रिड का कार्य किया जा सके।
1: यानी दिन में सौर ऊर्जा मिलती रहे और पवन चक्कियां जो है रात भर काम
0: खाली
1: करती
0: खाली
1: रहे।
0: यही नहीं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक संसाधन हमें बनाने पड़ते हैं विंड मिल के लिए, उनका भी उचित इस्तेमाल हो जाता है
1: जी
0: कि जिस समय जैसे सुबह 8 से 7 बजे से 4 बजे तक हमें सौर ऊर्जा मिलती है, उसके बाद हमारी पवन ऊर्जा का उत्थान होता है। तो वो जो ग्रिड लगी है, जो हमारी तारे हैं, जो हमारे सब स्टेशन लगे हैं, उनमें वो

0: जी, हम अक्सर युवा जो हैं आजकल वो घूमना बहुत पसंद करते हैं, और ऐसे में जब हम नई जगह पर जाते हैं उस जगह की हिस्ट्री भी जानते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी समझते हैं और वहां जो हाइलाइट्स हैं उनको देखना चाहते हैं, तो जहाँ पवन चक्कियां होती हैं वो पूरा क्षेत्र अगर हम बात करें तो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए क्या उस क्षेत्र में भी कुछ योगदान कर सकता है, और क्या ये पूरा एरिया सेफ होता है अगर हम पवन चक्कियों को नजदीक से देखना चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे कि तनेजा जी ने भी बताया कि ये जो पवन प्रोजेक्ट्स है ये ज्यादातर रिमोट प्लेस पे ही होते हैं और शहर से थोड़ा दूर भी होते हैं।
0: जी
1: किसी भी पवन चक्की के प्रोजेक्ट के कारण वहाँ पे अच्छे रास्ते बन जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, लोगों की इनकम थोड़ा सा बढ़ जाता है,
0: जी
1: तो जाहिर सी बात है कि फिर वो पर्यटन में भी योगदान करता है। जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा होगा, होटल्स रहने के लिए भी अच्छी मिलेगी,
0: जी
1: तो पर्यटन पे भी वहाँ पे सहायता होता है। अगर आप देखने भी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सेफ होते हैं ये। जैसे इन्होंने बताया कि हमारा पूरा, हम जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम बनाते हैं,
0: जी
1: हमारा अपना ही BIS स्टैंडर्ड है, और हमारा मंत्रालय का एक मैकेनिज्म है जिसको हम RLMM बोलते हैं। अभी हमने उसका नाम परिवर्तन करके ALMM कर दिया है,
0: जी
1: दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्हिच मीन्स कि जो प्रत्येक मैन्युफैक्चरर जितने भी मॉडल बनाते हैं हर मॉडल की जो क्वालिटी है उसको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना पड़ता है, जिसके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस मंत्रालय खुद रखता है,
0: जी
1: फिर वो लिस्ट बनती है। तो सिर्फ वो लिस्ट में आने के बाद ही वो इंडिया में लग सकते हैं। तो जितने भी टर्बाइन लगे हुए हैं
0: जी
1: वो निश्चित रूप से वो क्वालिटी को कंप्लाई करते हैं, तो
0: जी
1: ये बिल्कुल ही सेफ होते हैं। हाउएवर ये बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं,
0: जी
1: जैसे कि मैंने बताया कि जो सेफ्टी होता है उसको कभी जीरो नहीं किया जा सकता, उसको हम कम करते हैं।
0: जी
1: तो ऐसा नहीं है कि उसके नीचे जाके हमेशा खेलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर पवन चक्की लगा है तो
0: जी
1: वे बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट जैसे इन्होंने बताया कि एक पवन चक्की से दूसरे पवन चक्की के बीच में जगह खाली होता है,
0: जी
1: तो वहां पे इनफैक्ट कृषि भी होती है, सोलर का पैनल भी लगाया जा सकता है, या उस जमीन का दूसरा उपयोग भी करा जा सकता है।
0: जी
1: इनफैक्ट सोलर और विंड में ये भी एक पार्थक्य है कि वहां पे उनको कंटिन्यूअस लैंड चाहिए और सारे के
0: जी
1: सारे लैंड में सोलर मॉड्यूल लग जाता है, बट पवन चक्की के लिए हम उसको फुटप्रिंट एरिया बोलते हैं, जहां पे वो पवन चक्की खड़ा है, और उसके चारों तरफ थोड़ा जगह छोड़ना पड़ता है कि कभी मेंटेनेंस के लिए क्रेन का मूवमेंट हो, बाकी जो जमीन है वो दूसरे उपयोग में
0: उसका
1: आ
0: उपयोग
1: सकते हैं
0: किया जा
1: और
0: सकता
1: वहां
0: है।
1: पे लोग भी रह सकते हैं। कंटिन्यूअस रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है वो ये बोलता है कि 500 मीटर तक का, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत साउंड भी आता है, तो वो साउंड के कारण हमारा आज का गाइडलाइन है कि 500 मीटर तक का कोई ड्वेलिंग क्लस्टर नहीं होनी चाहिए। मतलब वहां पे कोई अगर गांव है,
0: जी
1: गांव बसा हुआ है, तो वहां से फिर वो 500 मीटर दूर ही रखेंगे उसको।
0: जी लेकिन ऐसे घूमने के लिए जा सकते हैं, समझने के लिए, या
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: रिसर्चर्स हैं
1: और
0: या
1: वो सड़क
0: स्टूडेंट्स
1: से
0: हैं।
1: आई थिंक उसका जो हाइट होती है, टिप हाइट तक आप मान के चलिए,
0: जी
1: उतना दूर में कोई सड़क नहीं रहता। मतलब
0: जी
1: जो कॉमन लोगों का यातायात का सड़क होता है वहां से वो उतना मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, ताकि अगर
0: जी
1: कभी किसी कारणवश वो गिर गया तो वहां पे जाते हुए लोगों को वो ना लगे।
0: जी और वैसे भी बहुत ऊंची होती है तो दूर से भी दिखाई देती है।
1: बिल्कुल, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी है, इट इज नॉट ओनली मैकेनिकल हैजर्ड। वो गिरेगा भी नहीं तो, क्योंकि वो बिजली पैदा करते हैं और बिजली संरचना का एक हिस्सा है,
0: जी
1: तो वहां पे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी रहता है। तो
0: जी
1: ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि वहां पे लोग जाए उसको छुएं।
0: एक निश्चित दूरी से देखा जा सकता है। जी यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो टर्बाइन्स है इनकी कितनी लाइफ होती है, और जब वो पुरानी हो जाती है तब उनका क्या किया जाता है?
1: तो जो टर्बाइन्स है उनका लाइफ निश्चित रूप से 25 साल होते हैं, बट उनकी हम बोलते हैं जब डिजाइन लाइफ, जब उनका सर्टिफिकेट लेते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से।
0: जी
1: कुछ पुराने टर्बाइन है जिसमें वो 20 साल भी था, बट आजकल के जितने टर्बाइन है वो 25 साल के लिए बनते हैं, और इनफैक्ट लोग अभी सोच रहे हैं कि इसको 30 साल या 35 साल किया जाए, क्योंकि जितना टर्बाइन का लाइफ ज्यादा होगा तो उसमें हमें जो पर यूनिट बिजली पैदा करने के जो कॉस्ट लगता है वो कम होगा, तो हमें और सस्ते में बिजली मिलेगी।
0: जी
1: तो कोशिश यही रहता है इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, कि इसका लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। और आपको जान के खुशी होगी कि जो पवन चक्कियां होती हैं इसमें जो भी मटेरियल लगती है, जिस पदार्थ से बनते हैं, उसका 85% मेटल्स होते हैं।
0: जी
1: तो जो मेटल्स होते हैं हम सबको पता है कि वो रिसाइकल हो जाते हैं, और इसका कॉस्ट इनफैक्ट हमें कभी भी स्क्रैप जो है, चाहे वो आप कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, यू नेम ए मेटल, स्टील ले लो, उसका कॉस्ट हमेशा बढ़ता ही है, तो स्क्रैप वैल्यू भी बढ़ेगा आगे जाके, और उसको हम 100% रिसाइकलिंग करा सकते हैं। बाकी जो 10-15% रह जाता है वो होता है वो जो ब्लेड, जो पंखा के बारे में बात किया, वो पंखा नॉर्मली हमारा ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स रेजिन से है उसमें, तो वही है जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, बट एंड ऑफ लाइफ के बाद उसका भी बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसको डिस्पोज करने का तरीका भी है। उसको हम जला सकते हैं, वो उसका जो आस बनता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, या तो उसको जो वो बहुत बड़े होते हैं उसको काट के, इनफैक्ट आप जो शेडिंग होती है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, बस स्टैंड हो, साइकिल

0: ब्रांड हो, इनफैक्ट यूरोप में बहुत सारे जगह पर आप देखेंगे वो सब जो सिटिंग प्लेसेस है इट इज यूज लाइक ए शेड। और अभी बहुत ही नए चीज है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी एक ऐसा रीजन लोग अभी डेवलप कर चुके हैं जहाँ पे जो ग्लास फाइबर से या कार्बन फाइबर से वो ब्लेड बना है 25 साल बाद हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं, जिस रेजिन से वो बनता है
1: जी।
0: कुछ और केमिकल प्रोसेस करके वो 100% वो भी रिसाइकल हो जाएगा
1: जी।
0: तो पवन एक ऐसा अक्षय ऊर्जा बनने जा रहा है जहाँ पे 100% चीज एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से रिसाइकल हो जाएगा
1: जी।
0: और आपको एक और जानकारी देता हूँ कि जितने अक्षय ऊर्जा टेक्नोलॉजी है, चाहे सोलर हो, बायोमास हो, हाइड्रो हो, पवन हो, इनफैक्ट पवन शक्ति एक ऐसा शक्ति है जहाँ पे हम उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट
1: जी।
0: लाइक एक यूनिट बिजली पैदा करने में आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड निर्यात किया है। लाइक जो मैंने बता रहा हूँ स्टील लगा है, कुछ लगा है, तो ये सबको बनाते हुए आपको कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ा होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो उससे कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने वायुमंडल में छोड़ा है। तो सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट पवन ऊर्जा का होता
1: जी।
0: है, तो पर्यावरण के लिए ये सबसे फ्रेंडली है
1: जी। यानी बहुत ही साधारण शब्दों में समझें तो एक यूनिट बिजली बनाने के लिए अन्य माध्यमों से हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पर्यावरण में, पवन ऊर्जा में वो सबसे कम है। और एक लाभ ये भी है कि जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी टर्बाइन्स है, वो रिसाइकल हो जाती है और जो भी हम उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं वो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरण के हित में भी है और हमारे हित में भी है जी। तो चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी ओम जी, जो आपका संघ है, आपने बताया कि कई तरह की समस्या आती हैं और उसका हम समाधान निकालते हैं और मंत्रालय से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और मंत्रालय के अपनी गाइडलाइंस है जिनको आप सब लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है अगर वो जुड़ना चाहें तो क्या उन्हें दूसरे बिजनेस जो है उन्हीं के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा या वो अपने आप भी अप्रोच कर सकते हैं? जैसा आपने कलाकारों का बताया कि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या उसका तरीका है, वो कहाँ अप्रोच करें, क्या कोई वेबसाइट है इसकी, कोई लिंक है?
2: देखिए आज के दिन क्योंकि ज्यादातर पवन ऊर्जा जो लग रहे हैं
1: जी
2: वो बिल्डिंग पे लग रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक जो छोटे उद्योग में इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं उनके लिए भी ये संभव है कि वो एक मशीन, दो मशीन, चार मशीन लेके लगा दें। अभी क्योंकि उनको डिस्काउंट्स में जो है थोड़ा सा उनके लिए डिस्काउंट अपने सुविधा अनुसार उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं, तो एक किस्म के स्वयं इस्तेमाल के लिए जिसे हम कहते हैं कैप्टिव पावर कंजम्पशन, के एक उद्योग में अगर मान लो 10 मेगावाट का या 5 मेगावाट का कुछ उनका इस्तेमाल हो रहा है तो अपनी पवन चक्कियां लगाकर और किसी मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक पवन चक्की लगाकर उसको अपने ही क्षेत्र में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा बहुत हो रहा है जिसमें कैप्टिव पावर जो है एक किस्म से अपनी पावर बना के अपने आप ही इस्तेमाल करते हैं इसको, ऐसा संभव है और हुआ भी है। और इस पावर को कई बार ये मॉल्स वगैरह वाले ये सब भी अपने उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जितने मॉल्स हैं उनको पावर जो है डिस्कॉम की पावर महंगी मिलती है और अपनी पावर उससे कुछ बचत कर पाते हैं, इसलिए इस कैप्टिव पावर का एक उपयोग जो है वो कर सकते
1: जी। तो एक तरह से ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर हम चाहें तो पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं और उससे भी कमाई हो सकती है जी। हमने बचपन में ये कविता पढ़ी है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, लेकिन इस हवा का जादू जो है वो आज हमें समझ में आया कि पवन ऊर्जा जो है वो किस तरह से कारगर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान है, पर्यावरण में भी इसका योगदान है और जो आम जन है उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी इसका योगदान है। इसके लिए मंत्रालय है जो नीतियां बनाता है और सहायता करता है और इसके लिए इस तरह के इंडिविजुअल्स जो हैं वो संघ भी हैं जो कि जागरूक कर सकते हैं, जिनसे मदद ली जा सकती है। तो चलते चलते ओम जी आपकी पसंद का एक गाना हमारे श्रोताओं के लिए।
2: पंछी नदिया पवन के झोंके
1: जी,
2: ये एक अच्छा गाना हो सकता है।
1: बिल्कुल, ये गाना बहुत अच्छा है, हमारे कार्यक्रम की थीम से मैच कर रहा है। पवन के झोंके जो है बहुत ही जादू का काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हमने बात की पवन ऊर्जा के बारे में और कार्यक्रम में हमारे साथ थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में आज आपने हमें पवन ऊर्जा जो है उसकी पूरी कार्य प्रणाली वो समझाई। हमारे साथ कार्यक्रम में रहे उद्यमी ओम तनेजा जी जो कि भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी अपना समय हमें देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। प्रबीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार
0: जी। ओम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अति धन्यवाद, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सके, हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, धन्यवाद।
0: तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जब आप बच्चों को हाथ में एक खिलौना लेते हुए खेलते देखेंगे जो हवा से घूम रहा है और बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखेंगे, उनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको समझ में आएगा और पर्यावरण से आप थोड़ा और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे

0: प्रमोद कुमार वत्स और दिलीप झा, कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्ति से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। सीएम ने आज गोरखपुर में बीजेपी के जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्थापना काल से लेकर अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में देश में केंद्र के साथ 22 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाई है। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लगभग 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्रतिबद्धता है। सीएम योगी ने प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में पहुंचकर गौ सेवा भी की। इस दौरान उन्होंने गोवंश को गुड़ खिलाया और उनकी देखभाल की जानकारी ली। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रूपये से बढ़ाकर 17,000 रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। प्रदेश में आंधी बारिश थमने के साथ ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है। पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। आज सुबह ज्यादातर शहरों में आसमान साफ है। मौसम विभाग ने आज 22 शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 1 बजे।

0: पाऊं।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
2: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में पीसीओडी और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख।

0: at Hardoi Road, Dubagga.
1: सेहत सर पर सजे हुए उस ताज की तरह है जिसे सिर्फ एक बीमार इंसान ही देख सकता है और जब तक वो ताज वो क्राउन हमारे सर पर है तब तक हम कभी उसकी कीमत नहीं समझ पाते। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना पसंदीदा वीकली हेल्थ शो हेल्थ एंड फिटनेस। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, ऑफिस की डेडलाइंस, बढ़ता तनाव, अनियमित खान पान और बदलती जीवन शैली के बीच एक समस्या बहुत तेजी से हमारे घरों में पैर पसार रही है जिसका हमें कई बार समय रहते एहसास तक नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की। मेडिकल वर्ल्ड में इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट इसलिए क्योंकि ये बिना शोर मचाए बिना किसी लक्षण के आती है लेकिन हमारे दिल, दिमाग, किडनी और शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण अंगों पर गहरा असर डाल सकती है। दोस्तों, आज यानी कि 17 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ही यही है कि हम और आप इस साइलेंट किलर के प्रति जागरूक हों क्योंकि सही समय पर जांच, संतुलित लाइफस्टाइल और सही जानकारी ही इस समस्या से बचाव का सबसे अचूक और प्रभावी तरीका है। तो बस इसी बेहद जरूरी विषय पर आज हम करेंगे एक खास चर्चा और इस चर्चा में आपको गाइड करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपकी शंकाओं के समाधान करने के लिए हमने खास तौर पर बुलाया है शहर की प्रख्यात चिकित्सक एवं विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल अग्रवाल जी को जो कि हैं एमडी आंतरिक चिकित्सा। डॉक्टर साहब, एफएम रेनबो लखनऊ के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है यानी कि अगले एक घंटे तक हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस बस आपके लिए खुली हुई हैं। तो अगर आपके मन में भी ब्लड प्रेशर, बार बार होने वाले सर दर्द, अचानक चक्कर आना, घबराहट, बीपी की दवाइयां, खान पान या तनाव से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो बिना किसी झिझक के हमें अभी कॉल करिए। हमारे स्टूडियो के नंबर वही पुराने वाले हैं 0522-223-8852 एंड 0522-298-2377। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। याद रखिए, हम लाइव हैं आपके लिए। तो आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके मन में हैं, जो भी सवाल हैं, आप उनके समाधान के लिए हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक्चुअली ये हाइपरटेंशन होता क्या है। अक्सर बड़ी कॉमन सी चीज लगने लग गई है, जिससे बात करो ये कहता है भाई हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या हमारा ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो ब्लड प्रेशर लो रहना या ब्लड प्रेशर बढ़ा होना ये होता क्या है?
2: बीपी जो है, जो ब्लड है वो रक्त कोशिकाओं में बहता है
1: जी।
2: वो एक पर्टिकुलर प्रेशर से जब बहेगा तभी जो हार्ट है उसको सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा पाएगा। मगर जब ये एक निश्चित नंबर से ज़्यादा हो जाता है, जिसको गाइडलाइंस के हिसाब से अगर 130-80 के ऊपर है, जो ऊपर वाला बीपी जिसको नापा जाता है, जिसको पहले लिखते हैं, अगर वो 130 के ऊपर आ रहा है और जो नीचे वाला बीपी जिसको बाद में लिखते हैं अगर वो 80 के ऊपर आ रहा है और एक लंबे टाइम तक ये इतना बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये नियमित मात्रा से ज़्यादा है, जो वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा है और इस पर हमें कॉशियस हो जाना चाहिए। हमें अपनी लाइफस्टाइल बदल लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करना, जो चेंजेस है वो ले आने चाहिए। और अगर ये 140 और 90 के ऊपर जा रहा है तो फिर हमें ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि इस पर दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हैं हमारे श्रोताओं के और हम ज़रूर इनसे बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल जो पहले कॉलर हैं उनसे आपको कनेक्ट कर रही हूँ। हालांकि हमारे सामने ईमेल्स भी बहुत सारे हैं। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार मैडम, गुड आफ्टरनून।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: संजय तिवारी बोल रहे हैं, लखनऊ से बोल रहे हैं।
1: जी संजय जी, अपना सवाल पूछें।
3: डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, हमको आपसे ये पूछना है कि जैसे जो बीपी जो होता है, जो ये फ्लक्चुएट हो जाता है बीपी, ऐसे बार बार किसी का 130 या 140 या 90 के अबव चला जाता है, तो इसके पीछे क्या कोई डेंजर कारण होते हैं? और दूसरा, ये हार्ट बीट से भी क्या ऐसा कोई रिलेशन है?
2: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके

0: आपको आजकल जो डिजिटल मॉनिटर्स हैं वो आपको अपने घर पे रखना चाहिए। दिन में सुबह शाम अपना बीपी नापिए, एक हफ्ते तक अपनी बीपी की रिकॉर्डिंग करिए, फिर जो भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीपी 130, 140, 190 ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है तो वो रिकॉर्डिंग्स लेके अपने डॉक्टर के पास जाइए। जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। ये नंबर ज़रूर आपको अपने पता होने चाहिए। बीपी हमारा अच्छा है अगर 120 80 के नीचे है, 130 180 तक है तो भी हमें चेंजेस पे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे चीज़ें सही हो सकती हैं। बट अगर बीपी 140 90 के ऊपर जा रहा है तो हो सकता है कि हमें दवाइयों की आवश्यकता हो। ये अच्छा गाइड, क्योंकि इसके लिए बहुत और जांचें भी करनी पड़ती हैं, तो डॉक्टर से, जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उससे मिलिए, उनको अपना प्रॉब्लम डिस्कस करिए। उसके साथ आपको जो दिक्कतें हो रही हो, सिर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, दिखने में कोई दिक्कत, वो आपको बतानी पड़ेंगी। जो हार्ट रेट बढ़ता है वो भी खुद में एक बीमारी है, उसका भी इलाज होना चाहिए। नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो 60 से 100 के बीच में होना चाहिए। अगर कॉन्स्टेंटली हमारा हार्ट रेट 100 के ऊपर जा रहा है तो इसके लिए भी हमें जांचें करवानी पड़ती हैं।
1: तो ब्लड प्रेशर बढ़े रहने से क्या हो सकता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे और जरूर जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्यों बोला जाता है ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर, इस बारे में भी हम जरूर उनकी राय लेंगे। लेकिन फिलहाल जो कॉलर हमारे साथ है उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। पहले तो आपसे एक गुजारिश करूं, प्लीज रेडियो से दूर हो जाइए।
2: हेलो
1: जी, अपना सवाल पूछिए और रेडियो से प्लीज दूर हो जाइए। हमारे ये दोस्त, बड़ी मुश्किल से मुझे पता है कॉल मिलता है डॉक्टर साहब, और जरूर कोई ना कोई समस्या होगी तभी इन्होंने कॉल लगाया होगा, लेकिन पता नहीं किस मजबूरी से ये रेडियो से दूर नहीं हो पा रही थी, इस वजह से हमें इनकी आवाज़ नहीं मिल पाई। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी आप सबसे कि जो भी सवाल आपका है वो ज़रूर पूछें, हमें फ़ोन मिलाएं, हमें ईमेल करें, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें, क्योंकि इतनी मुश्किल से फ़ोन मिलता है और बात नहीं हो पाती है तो हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर बढ़े रहने में लोग ये कहते हैं अरे बढ़ाए बढ़े रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हो सकता है, क्या खतरे हैं ब्लड प्रेशर बढ़े रहने के?
0: अगर लंबे टाइम तक हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो बहुत सारे ऑर्गन्स में दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि हमारी डिमेंशिया जैसी दिक्कत, ब्रेन में लगातार थक्के जम सकते हैं, कभी भी हमें लकवे की शिकायत हो सकती है, नस फट सकती है हमारे दिमाग की, या बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत याददाश्त जाने वाली बीमारियां हो सकती हैं, अचानक से विजन लॉस हो सकता है, हमें दिखना कम हो सकता है क्योंकि जो पर्दे पे वेसल्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, हमें नोज़ ब्लीड हो सकता है, हमें बहुत लंबे टाइम तक भरे रहने पे हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, जो हार्ट है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है तो हार्ट अटैक के चांसेस, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी पे बहुत असर पड़ सकता है, लोगों CKD जो बीमारी है जिसमें आगे चल के डायलिसिस करना पड़ता है, किडनी बदलनी पड़ती है, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं अगर आपका बीपी लॉन्ग टाइम तक बढ़ा हुआ है। बट अगर हम दवाइयां लें और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, बीपी को कंट्रोल में रखेंगे तो इन चीज़ों से बच सकते हैं।
1: शायद इसीलिए बोला जाता है इसको साइलेंट किलर, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे ये तो अब तकरीबन हर घर की प्रॉब्लम है, अरे इट्स ओके, अब तो घर घर में ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, लेकिन ये इतनी भी छोटी बात नहीं है, आपकी बात सुनकर के ऐसा महसूस हो रहा है डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, डरने की बजाय, परेशान होने की बजाय, अगर आपको थोड़ी सी भी शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो तुरंत हमें कॉल करें 0522-223-8852 और 0522-298-2377, ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। ईमेल आईडी वही पुराना वाला, fmakashwanilakhnow@gmail.com। मैं हूँ ज्योति और आज खास तौर पर हेल्थ एंड फिटनेस में हमने आपके सवालों के जवाब देने के लिए इनवाइट किया है डॉक्टर कोमल अग्रवाल को, जो कि हैं MD आंतरिक चिकित्सा। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर खास तौर पर हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की। डॉक्टर साहब, हमारे एक और कॉलर वेट कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात करने से पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होगा।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज।

0: एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
3: आपकी मुस्कुराहट बनी रहे और सेहत की चमक आपके चेहरे को हमेशा दमदमाती रहे, इसीलिए तो हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सारे प्रोग्राम जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। कभी हम आपको एंटरटेन करते हैं तो कभी हम आपको अवेयर भी करते हैं, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाता है। यस फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की, एंड लेट अस सी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो हेलो, तो फोन लाइन तो मुझे लग रहा है कि कुछ परेशान कर रही है। नेवर माइंड, चलिए डॉक्टर साहब, अशोक कुमार जी का ईमेल है हमारे सामने, रायपुर से है, रायपुर लखीमपुर खीरी से ये लिखते हैं, मुझे घबराहट की समस्या है, नींद नहीं आती, गुस्सा बहुत आता है और ये प्रॉब्लम तकरीबन 2 सालों से बनी हुई है। डॉक्टर को दिखाया है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उम्र मेरी है 30 साल। डॉक्टर साहब, सिर्फ 30 साल की उम्र में क्या हाइपरटेंशन हो सकता है?
4: हाँ, यंग हाइपरटेंशन आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल होती जा रही है, सोने का पैटर्न हम लोगों का बहुत बिगड़ता जा रहा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पे, लैपटॉप्स पे रहते हैं, तो 30 साल की उम्र में हाइपरटेंशन होना आजकल बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। 40 के नीचे जब हाइपरटेंशन होता है तो उसको यंग हाइपरटेंशन कहते हैं। ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत लंबी ज़िंदगी है जीने के लिए, और अभी से अगर हमारी रक्त धमनियों पे इतना प्रेशर पड़ेगा तो उनका जल्दी ख़राब होना, हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा आना, हार्ट पे जल्दी इफ़ेक्ट आना, ब्रेन पे जल्दी इफ़ेक्ट आना, ऐसा हो सकता है। इसको और अच्छा लाइफस्टाइल से हमें कंट्रोल करना है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी है।
3: मतलब ये मत सोचिए कि अगर उम्र कम है तो आपको ये बीमारी नहीं हो सकती, यही कहा जा सकता है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ज़रूर जो भी वो दवाइयाँ बताएं उनको फॉलो करें, उन्हें ज़रूर लें। एक और कॉलर हमारे साथ, डॉक्टर साहब हेलो।
5: हेलो
3: जी, नमस्कार
5: जी, अस्सलाम वालेकुम
3: जी, अपना सवाल पूछें प्लीज़, अपना नाम बताकर।
5: जी, मेरा नाम शादी अंसारी है, मेवागंज जिला लखीमपुर खीरी से बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि हम जब भी खाना खाते हैं या लेटते हैं बैठते हैं, हमारा सर एकदम से घूमने लगता है, आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है।
3: उम्र कितनी है आपकी?
5: जी 15 साल।
3: 15 साल की उम्र, खाना खाने के बाद अगर ये लेट जाती हैं तो इनको चक्कर आने लग जाता है। जी,
5: खाना खाने के बाद नहीं, अगर खाते हैं या लेटते हैं या बैठते हैं मतलब चक्कर आने लगते हैं।
3: मतलब कभी भी चक्कर आ जाता है?
5: हाँ, सर में दर्द भी बहुत होता है।
4: ठीक है, आपकी उम्र जो है 15 साल की उम्र पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपको कमज़ोरी महसूस होने के। एक बहुत कॉमन कारण औरतों में अनीमिया का हो सकता है, हो सकते हैं कि आपका खून हीमोग्लोबिन अभी कम चल रहा हो, आयरन की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि अभी आपके शरीर में उतने न्यूट्रिएंट्स ना हो, आपका खान पीन उस तरीके से ना हो। इसके लिए आपको अपने कुछ टेस्ट अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाइए, अपने टेस्ट कराइए, कारण पता करिए, अपना बीपी ज़रूर जांच कराइए, कई बार लो बीपी भी चल रहा होता है उसके भी कुछ कारण हो सकते हैं, उसके कारण पता करना ज़्यादा ज़रूरी है।
3: तो डॉक्टर साहब, लो बीपी भी क्या इक्वली ख़तरनाक होता है?
4: लो बीपी भी खतरनाक हो सकता है, उसमें चक्कर आना, दिमाग में सही ब्लड का दौरान नहीं होना, ऐसा हो सकता है, बट उसके अपने कारण होते हैं, इतना कॉमन नहीं होता है, वो जनरल दवाइयों के कारण या और किसी एंडोक्राइन कॉज की वजह से होता है। जनरली जो देखने को मिलता है वो हाइपरटेंशन की वजह से ही हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं,
3: ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर साहब, सौरभ का हमारे सामने है ईमेल, अकबरपुर सीतापुर से ये लिख रहे हैं, 1 महीने से सर में दर्द लगातार बना रहता है, सर दर्द क्या एक बहुत बड़ा सिम्टम है हाइपरटेंशन का?
4: जी, सर दर्द एक बहुत कॉमन सिम्टम हो सकता है, अगर आपका कॉन्स्टेंटली सर दर्द बना हुआ है तो ज़रूर जब भी आपका सर दर्द ज़्यादा हो उस समय बीपी ज़रूर लेना चाहिए, हार्ट रेट ज़रूर नापना चाहिए। एक कारण सर दर्द का बीपी हो सकता है, मगर केवल हम ये नहीं कह सकते कि सर दर्द का कारण बीपी होता है, सर दर्द के और भी अनेक कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है टेंशन हेडेक ही होता है सर दर्द का कारण, अगेन इसके लिए वही है, अपना बीपी कम से कम 1-2 हफ्ते मॉनिटर करें, अगर वो 130-80 के ऊपर लगातार

0: बार बना हुआ है तो नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें और उनके परामर्श अनुसार अपना इलाज कराएं।
1: डॉक्टर विजयपाल यादव का है ललहुआ लखीमपुर खीरी से ईमेल हमारे सामने, और ये पूछ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, इसकी रोकथाम के लिए घर पर क्या कर सकते हैं। मेरी पत्नी को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो हमें चुप होना पड़ता है। खैर ये तो अच्छी चीज़ है विजयपाल जी, मुझे लगता है जब एक को गुस्सा आए तो दूसरा चुप हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आगे ये भी लिख रहे हैं कि नहीं तो फिर उनका बीपी हाई हो जाता है। विजयपाल ललहुआ जिला खीरी, इनको आप क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर साहब? इन्होंने रीजन भी पूछा है कैसे रोक सकते हैं, ये भी पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए।
0: देखिए बीपी स्ट्रेस की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस है। मेडिटेशन करना, योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना मानसिक तनाव कम रखना ज़रूरी है क्योंकि ये बीपी बढ़ाता है। तो अगर वो कम गुस्सा करेंगी तो बीपी स्पाइक्स उनके कम आएंगे। बीपी अगर ऑलरेडी उनको है तो दवाइयाँ टाइम से लेनी है। बीपी की रोकथाम के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज करना दिन भर, दिन में खाने पीने में बहुत सारी चीज़ों का चेंज करना, जैसे कि मोटा अनाज खाना चाहिए, बहुत चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी है, नमक का परहेज़ करना है, कोशिश करना है दिन भर में एक टीस्पून नमक जो है बस उतना ही प्रयोग किया जाए, किसी भी चीज़ पे ऊपर नमक बरक के नहीं खाना है। ऐसी चीज़ें जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है जैसे कि सॉस, पापड़, चटनियाँ, इनका प्रयोग कम करना है। फल खाने हैं, फल और सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करना है। ऐसे जो मीट मांस मच्छी ऐसे जो बहुत ज़्यादा बटर में बनते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें होती हैं, इनको कम करना है। एग खा सकते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल है, टाइम से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पूरी नींद लेते हैं तो उससे भी बीपी कंट्रोल होता है, और अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
1: तो इस बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब एक कॉलर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इनसे बात करने के बाद आपने जिस गाने की फरमाइश की थी जब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, उस गाने को मैं पक्का प्ले करूँगी क्योंकि वादा किया है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ही। हेलो हेलो जी जी नमस्कार, नाम बताएं।
2: नमस्ते
1: जी, नाम बताएं और अपना सवाल पूछें डॉक्टर साहब।
2: सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ग्राम पोस्ट परसंदी कैसरगंज बहराइच से।
1: अपनी उम्र बताकर अपना सवाल डॉक्टर साहब से पूछें।
2: जी मैम, जैसे कि मैं ब्लाइंड हूँ इसीलिए तो जब कोई बीमारी का नाम सुनता हूँ ना मैम तो मैं बहुत डर जाता हूँ, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो हाइपोटेंशन है इससे हम बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, मतलब क्या ना खाएं, क्या क्या कर सकते हैं
1: जी। आपकी उम्र अभी कितनी है?
2: जी मेरी उम्र 18 होने वाली है 2 महीनों के बाद।
1: और अभी आपको कोई समस्या नहीं है, है ना?
2: जी समस्या नहीं है, लेकिन
1: आप चाहते नहीं कि आगे भी समस्या हो, ये हमारी जागरूक श्रोता हैं डॉक्टर साहब।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बीमारी को प्रिवेंट कर पाएँ और बहुत अर्ली एज पे ही अगर हम चेंजेस ला पाएं अपनी लाइफस्टाइल में तो हम इन चीज़ों को प्रिवेंट भी कर सकते हैं।
1: लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
0: बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, शरीर है, बीमारियां लगी ही रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शरीर को अगर अच्छा खिलाए पिलाएंगे, व्यायाम कराएंगे, स्ट्रेस फ्री रखेंगे तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। हमें किसी भी तरीके की नशापत्ती को कम से कम रखना है या ना करना है, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको है, नमक हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, तो हमें नमक का परहेज़ करना है, खाने में कम से कम उपयोग करना है। अगर हम एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जितना हम चलेंगे उतना ही हमारा हार्ट चलेगा, बहुत लंबे टाइम तक कहीं बैठना नहीं है, अगर हमारा सिटिंग जॉब है तो हमें बीच बीच में उठ के वॉक करना है और अच्छे खाना पीना खाना है।
1: तो आगे भी हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि आजकल कम उम्र में ये समस्या क्यों इतनी बढ़ती जा रही है। सवाल ढेर सारे हैं, कॉलर्स लगातार हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, ईमेल्स भी हमारे सामने ढेर सारे, लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जो वादा किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपने दिल दिया गल्ला ये गाना सुनने की फरमाइश की है फिल्म सुल्तान से, कोई ख़ास वजह इस गाने को सिलेक्ट करने की?
0: दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू माई हस्बैंड।
1: तो उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब के बेटर हाफ इस प्रोग्राम को ज़रूर सुन रहे होंगे और इस डेडिकेशन को वो एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपकी पसंद का गाना हम सबके रेडियो सेट पर।
3: में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
4: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 12:34 और ठीक 47 सेकंड हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना वीकली हेल्थ शो हेल्थ एंड फिटनेस। मैं हूं ज्योति और आज खास तौर पर आपके लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर कोमल अग्रवाल को हमारे स्टूडियोज में। डॉक्टर कोमल अग्रवाल आज बात कर रही हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर उच्च रक्तचाप

0: यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई शंकाएं हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो सोच कह रहे जल्दी से हमें फोन मिलाइए 223-8852 एंड 298-2377। ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहे हैं या लखनऊ के बाहर कहीं से कॉल कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इन नंबर से पहले लखनऊ का कोड 0522 ऐड करना होगा। और ईमेल आईडी वही पुराना, एफ एम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अपने कॉलर से बात करें, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी कम उम्र में आजकल इतनी समस्याएं क्यों होने लगे हैं? क्योंकि पहले, बहुत पुरानी भी बात नहीं है ये, पहले ये सोचा जाता था कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसकी उम्र तो होगी कम से कम 40 प्लस उसकी एज होनी चाहिए। तो ये उम्र आजकल मतलब कोई क्राइटेरिया रही नहीं गई, इसकी क्या वजह है?
1: जी ज्योति जी, बहुत अच्छा सवाल है। पहले हम मानते थे कि 40 के बाद जनरली बीपी बढ़ता है, मगर आजकल बहुत यंग 20-30 साल के बच्चे भी हमारे पास बीपी लेकर आने लग गए हैं। अगेन प्रॉब्लम लाइफस्टाइल का है। खाना आजकल पैकेज फूड बहुत ज़्यादा है, बाहर का जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है। लोग घर का बना हुआ खाना, कम तेल मसाले का खाना, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, इनको अवॉइड करते हैं। मैदा, नमक, खूब तेल, बटर वाला खाना खा रहे हैं। ये व्यायाम कम किया जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा टाइम बेड पे केवल फ़ोन स्क्रॉल करते हुए कर रहे हैं। तो वो जो घंटे हम केवल लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम ला रहे हैं, हम बैठे रहते हैं, हम वॉक नहीं करते हैं, हम लिफ्ट का यूज,
0: फोन भी मतलब एक बहुत बड़ी
1: प्रॉब्लम की तरह सामने
0: जो आ रहा। मम्मी कहती है कि तुम्हारा फोन सारी प्रॉब्लम की जड़ है, वो सही कहती
1: वो है। बिल्कुल सही कहती हैं कि तबीयत जो आजकल बीमारियां हैं वो उसी वजह से है। पहले बच्चे बाहर जाके खेलते थे, अब बच्चे बहुत यंग एज से फोन पे लगे रहते हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो पहले लोग वॉक करते थे, स्टेयर्स चढ़ते थे, वो सब कम हो गया है। अब क्योंकि खाने पीने में भी हम हेल्दी नहीं खा रहे और लाइफस्टाइल भी हमने बहुत सेडेंट्री कर ली है, इसलिए बहुत जल्दी हमें ये बीमारियां जो हैं वो लगने लग गई हैं।
0: डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया फ़ोन, तो फ़ोन किस तरह से इफ़ेक्ट करता है? बाहर नहीं जाते हैं हम खेलने के लिए, हम फिज़िकल एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, ये तो एक वजह है। क्या कोई और भी तरीके से ये हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है?
1: जो फ़ोन से रेडिएशंस निकलते हैं वो हमारे हार्मोनल मिल्यू को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। जो हार्मोन्स हमको टाइम के हिसाब से आते हैं उनका बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। स्पेशली कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ता है फ़ोन से, जो रील्स देखी जाती हैं, जो वीडियोस देखे जाते हैं, जो स्ट्रेस उससे क्रिएट हो रहा है, और ये हमारा बीपी बढ़ाने में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर बनता जा रहा है।
0: तो फ़ोन, जिसके लिए मम्मी कहती हैं कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम की जड़ ये फ़ोन ही है, तो दरअसल मम्मी गलत नहीं कहती हैं। और आज तो डॉक्टर साहब ने भी इस पर मोहर लगा दी, कुछ भी करिए लेकिन लिमिट के अंदर, तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स भी कभी भी लिमिट के बाहर नहीं जाएंगी, ये हम उम्मीद करेंगे। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं अल्तमस बोल रहा हूँ, लखनऊ के बीच।
0: जी, अपना सवाल पूछे।
2: मेरा सवाल यह है कि मैं जब सो जाता हूँ तो मेरा सर बहुत दर्द करने लगता है, ऐसा लगता है कि सर पर कोई बोझ आ गया है, और बाहर जाओ तो बिल्कुल ठीक हो जाता है।
0: और आप हैं अभी कितने साल के?
2: 16 साल के हैं।
0: 16 साल के हैं, जब घर में होते हैं, सोकर उठते हैं तो लगता है सर पर कोई बोझ है, थोड़ी देर के बाद अपने रूटीन में जब आप आ जाते हैं तो फिर चीजें नॉर्मल हो जाती है, राइट?
2: जी।
0: डॉक्टर साहब, सो करके उठने के बाद सर दर्द या चक्कर आना, ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, क्या इसका भी ब्लड प्रेशर से कोई रिलेशन है?
1: रिलेशन हो सकता है, मगर 16 साल की एज पे अगर ये कंप्लेन आ रही है तो हम पहले और कॉजेज रूल आउट करेंगे। जनरली वही मैंने कहा कि टेंशन टाइप, हेडेक, माइग्रेन, पहले इन सब चीज़ों को रूल आउट करना पड़ेगा। बीपी 16 की एज पे बहुत कम है, ना हो सकता ऐसा नहीं है, मगर इस एज पे ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक होना थोड़ा सा अनकॉमन है।
0: तो आप, यही आपसे गुजारिश है कि जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हो वहाँ जा कर के आप अपना परीक्षण ज़रूर कराएं। डॉक्टर साहब कॉलर भी हैं हमारे साथ, कई सारे ईमेल्स भी हैं और हम डेफिनेटली इनसे बात करेंगे, ईमेल्स भी पढ़े जाएंगे, लेकिन एक बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी

0: किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: डॉक्टर साहब ऋषभ का ईमेल है हमारे सामने, बर्रा कानपुर से लिख रहे हैं। I want to ask what are the early signs and symptoms of hypertension at any age? तो आपने हालांकि सिम्टम्स बताए हैं पहले, लेकिन शायद इन्होंने मिस कर दिया, तो डॉक्टर साहब अगर आप संक्षेप में सिम्टम्स और रीजंस दोनों को बता सकें।
3: सिम्टम्स में आपको सिर दर्द हो सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों से धुंधला दिख सकता है, आपको नाक से खून आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, कमर में बहुत सीवियर दर्द हो सकता है, यूरिन में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको ज़रूर अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
2: मतलब आपको महसूस होने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है शरीर में, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है।
3: महसूस होगा, सीने में धड़कन तेज महसूस हो सकती है, इस तरीके की अगर चीज़ें महसूस हो रही हैं
2: तो ऐसे में बोला जाता है कि लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी अगर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। मोनू सेठ जी का ईमेल है, डॉक्टर साहब अमेठी से लिख रहे हैं कि नमक और बीपी दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं? क्यों और नमक आयोडीन की जगह सेंधा नमक खाना कितना सही है? क्या बहुत मेहनत करने वालों को भी बीपी जैसी समस्या हो सकती है? क्योंकि आपने कहा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हम तो यही सुनते थे कि मेहनत करके जो पसीना बहाते हैं उन्हें बीपी शुगर जैसी बीमारियां नहीं आती हैं। क्या खान पान में बदलाव की वजह से ये समस्या है? तो डॉक्टर साहब दो तीन सवाल हैं, नमक और बीपी का कनेक्शन कितना है और सेंधा नमक खाने से क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं बीपी? पहले हम इस सवाल को लेते हैं।
3: नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आयोडीन का सोर्स हमारा टेबल सॉल्ट होता है, तो हम उसको पूरा एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए डाइट से। पॉइंट है हमें कम से कम मात्रा में यूज़ करना है नमक को। तो जो एडवाइस है वो है कि एक टीस्पून, जो छोटी चम्मच होती है, उतना नमक हमें दिन भर में लेना है। और उसमें जब हम एक छोटी चम्मच नमक लेते हैं तो सोडियम लगभग 2.5 ग्राम तब भी हमारे शरीर में जाता है। उस इसको कम करने के लिए किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने बोला था, ऊपर से नमक अलग से नहीं डालना है, जितनी भी चीज़ों में कम से कम नमक यूज़ करना है। सेंधा नमक में सोडियम का मात्रा कम होती है, उसको यूज़ किया जा सकता है, मगर टेबल सॉल्ट अगर बिल्कुल हटाएंगे तो आयोडीन की डिफिशियंसी हो सकती है। तो मिला के दोनों नमक को यूज़ किया जा सकता है आधी आधी मात्रा में।
2: और दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि जो मेहनत करते हैं क्या उनको भी बीपी और शुगर जैसी बीमारी हो सकती है?
3: देखिए, जो मेहनत करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, उनको होने के चांसेस कम होते हैं, मगर फिर और भी बहुत सारे कारण हैं। जेनेटिक कॉजेज होते हैं, पेरेंट्स को है तो बच्चों में होने के बहुत कॉजेज हैं, एंडोक्राइन कॉजेज होते हैं, इन कारणों से उन लोगों को भी हो सकता है, बट चांसेस कम होते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब सीधी सी बात है ये कि हम लाइफस्टाइल का ध्यान रख के इन समस्याओं को दूर तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है। ये सोचना कि नहीं हम मेहनत करते तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता, ये ठीक नहीं होगा, है ना
3: जी।
2: डॉक्टर साहब एक और कॉलर बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो।
4: हेलो
2: जी, नमस्कार।
4: जी मैम नमस्कार।
2: कौन बोल रही हैं?
4: मैम मैं निशा बोल रही हूँ, लखीमपुर खीरी से।
2: निशा जी क्या सवाल है आपका?
4: मैम मेरा सवाल ये है कि एक साल से उनको फीवर होता है, मतलब हम सुबह दवा ले आए खा लिए तो पूरा दिन उतर गया, उसके बाद मैम फिर आ जाते हैं, मतलब बहुत दवा कर चुके हैं मगर फायदा नहीं।
2: उम्र कितनी है आपकी?
4: जी मैम 30।
2: और कोई टेस्ट कराए?
4: मैम कराया तो बोले कि तुमको बसीरू बुखार।
2: ओके, तो डॉक्टर साहब बार बार बुखार आ जाना हमारी, मैं समझ रही हूँ कि हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, फिर भी अगर आप हमारी इन कॉलर की मदद कर सकें कुछ।
3: निशा जी देखिए, अगर आपको लगातार ऐसा लग रहा है कि आपको बुखार आ रहा है तो पहली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि थर्मामीटर से आपको बुखार दिन में कम से कम 3 से 4 बार, स्पेशली जिस समय आपको महसूस होता है उसको लेके डॉक्यूमेंट करना है। अगर ये बुखार आपका 100 के ऊपर 101 के ऊपर जा रहा है तो लग के किसी अच्छे चिकित्सक से मिल के आपको एक बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मतलब जो जांचें की जाती हैं ऐसे केस में, उनको कराना है ताकि उसका कारण पता चल सके और उसका निवारण हुआ जा सके।
2: तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और बिल्कुल लाइटली मत लीजिए निशा जी। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं हमारे साथ, लेकिन इनसे बात करने से पहले जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि दो गाने तो आपको ज़रूर सुनाऊंगी, तो चलिए अब बारी आपकी पसंद के दूसरे गाने की। इससे पहले कि मैं ये सॉन्ग प्ले करूं, शोर मूवी का सॉन्ग, आप कुछ कहना चाहेंगी?

0: दिस इज अ फिलोसफी ऑफ माई लाइफ.
1: ओके, तो आपकी जिंदगी का दर्शन इस गाने के जरिए हम सब तक पहुंचने वाला है. सुनते रहिए, 12:45 और 20 सेकंड हो चुके हैं. प्रोग्राम का नाम है हेल्थ एंड फिटनेस. मैं ज्योति आपके साथ, और आज खास तौर पर आपके लिए, जी हाँ आप ही के लिए, हमने इनवाइट किया है जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल अग्रवाल को हमारे स्टूडियोज में, जो कि जवाब दे रही हैं आपके सवालों के विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर. हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनसे जुड़ी हुई क्वेरीज को वो सॉर्ट कर रही हैं, सॉल्व कर रही हैं. तो फोन मिलाते रहिए, ईमेल करते रहिए, अभी भी काफी वक्त है हमारे पास.
2: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर.
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर.
2: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए.
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ. कॉल 666-444-444.

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
3: 12:50 और ये लीजिए 51 हो गए हैं। आप हैं हेल्थ एंड फिटनेस में और आज हेल्थ एंड फिटनेस में हमने बुलाया है एक बहुत ही खास शख्सियत को, जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल अग्रवाल आज हमारे साथ स्टूडियोज में है और ये बात कर रही है हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है

0: 12:50 और ये लीजिए 51 मिनट हो गए हैं. आप हैं हेल्थ एंड फिटनेस में और आज हेल्थ एंड फिटनेस में हमने बुलाया है एक बहुत ही खास शख्सियत को, जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल अग्रवाल आज हमारे साथ स्टूडियोज में है और ये बात कर रही हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में. तो अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो बिना संकोच, बिना झिझक, बिना हिचक हमसे कनेक्ट होइए और अपने सवालों के जवाब डायरेक्टली डॉक्टर साहब से लीजिए, बिल्कुल इनकी तरह. हेलो हेलो हेलो. तो हमारे ये कॉलर, मुझे लगता है डॉक्टर साहब बहुत देर तक इंतज़ार करा दिया तो कहीं चले गए हैं. दोबारा ज़रूर कनेक्ट होंगे ये पूरी उम्मीद है. तो दोस्तों, अगर आपको हमारे नंबर्स अभी भी याद नहीं हुए तो अब नोट कर लीजिए 2238852 एंड 2982377. ये हमारे स्टूडियोज़ के नंबर्स हैं और fmakashwani@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है. एमके राज का है ईमेल. मुनेश कुमार भानपुर हरवा लखीमपुर खीरी से इन्होंने लिखा है कि बीमारियां तो इंसान को कभी ना कभी घेरी लेती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लापरवाही करें. तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आज के दौर में मोबाइल इंसान के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है. इसके फ़ायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी कम नहीं. मेरा सवाल बीपी के मरीजों को लेकर है. क्या शर्ट के सामने वाली जेब में मोबाइल रखना या फ़ोन आने पर तेज़ रिंगटोन का अचानक बजना उनके लिए घातक हो सकता है अगर ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है? इस विषय में कृपया मेरी शंका का समाधान करें.
1: फ़ोन को अपने बहुत पास में रखना और अचानक से जब बहुत तेज़ रिंगटोन बजती है तो बॉडी एकदम से स्ट्रेस में आ जाती है, स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स निकलते हैं और बीपी भी शूट हो सकता है. तो कोशिश करनी है कि हमें फ़ोन रात में अगर हम रिंगटोन कम कर सकें और नॉर्मल डेज पे भी, डे टाइम में भी हम रिंगटोन कम रखें, फ़ोन को थोड़ी दूर पे ही रखें. जैसे पहले लैंडलाइन रहता था हमसे, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस हमारी बॉडी पे कम करेगा और बीपी कम हो सकता है.
0: सौम्या का ईमेल आया है डॉक्टर साहब लखनऊ से, ये जानना चाहती है कि क्या ब्लड प्रेशर की दवा अगर एक बार खानी शुरू कर दी तो ज़िंदगी भर खानी पड़ती है? अब अगर मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है तो मैं क्यों दवा कंटिन्यू करूं? एक सवाल इन्होंने और भी पूछा है कि हर दवा की तरह ब्लड प्रेशर की दवा के भी कुछ तो साइड इफ़ेक्ट्स होते ही होंगे, तो डॉक्टर ये क्यों कहते हैं कि इस दवा को छोड़ना नहीं चाहिए?
1: देखिए, हमेशा हमारा बेनिफिट हम देखते हैं. अगर दवाइयाँ खाने से ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू जो उससे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, तो हमें दवाई खानी है. कभी भी डॉक्टर आपसे ये नहीं कहते कि आपको केवल दवाई खानी है. वो हमेशा आपको सिखाते हैं आपको साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करने हैं. अगर आप उस हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे, खाने पीने पर ध्यान रहेंगे, नमक वगैरह कम करेंगे, कम नशा पत्ती करेंगे और बीपी को अपने कंट्रोल्ड रेंज में रखेंगे, तो आपकी दवाइयाँ कम भी हो सकती हैं. ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको उतना ही दवाई खानी है, मगर मॉनिटरिंग करना, डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना, रेगुलर फॉलोअप में रहना, इसकी ज़रूरत है.
0: मतलब कम हो सकती है लेकिन खानी है.
1: दवाइयाँ कहीं पर बंद भी हो सकती हैं, बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है जो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर पाते हैं. जनरली लोगों का इतना लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस हैं, दिक्कतें हैं या और सारी बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज़ वगैरह, तो बिल्कुल बंद तो नहीं हो पाती हैं, बट कम ज़रूर हो सकती हैं दवाइयाँ.
0: और अपने आप तो बिल्कुल भी बंद नहीं करनी चाहिए.
1: अपने से कभी भी दवाई बीपी की नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि एक एपिसोड अगर बीपी का 180-200 का पहुंच जाएगा तो उसमें बहुत जानलेवा चीज़ें जैसे कि शरीर में फालिश मारना, हार्ट अटैक आना, ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जो कि जानलेवा होती हैं. इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही दवाई को बंद करें या कम करें.
0: तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें डॉक्टर साहब.
1: देखिए, दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है मगर इतना ज़्यादा नहीं होता है. जनरली दवाइयाँ जब अप्रूव होती हैं तो FDA अप्रूव जब भी होती हैं तो इस तरीके से होती हैं कि उनके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हो. जब डॉक्टर आपको लिखता है, कोई अगर स्पेशल साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसके बारे में आपको अवगत कराया जाता है. और कुछ भी ऐसा नहीं होता जो बॉडी को इतना नुकसान करे. जो बीपी आपको कर रहा होगा उससे तो कुछ फ़ायदा ही पहुँचा रही होंगी.
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर बड़ी देर से इंतजार कर रही है. हेलो हेलो.
2: नमस्ते दीदी.
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना और अपना सवाल पूछें.
2: गगनदीप कमल बोल रहे. दीदी,
0: गगनदीप जी, स्वागत है आपका. अपना सवाल पूछें, डॉक्टर साहब इंतजार कर रही हैं.
2: सर के पीछे तरफ दर्द होने लगता है, एक क्या समस्या हो सकती है?
0: आपकी एज कितनी होगी गगनदीप जी?
2: 24 साल.
0: 24 साल की उम्र है, सर के पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है.
1: जनरली जब सर के पीछे दर्द होता है तो सर्वाइकल के पेन का रेडिएशन ज़्यादा होता है. सर्वाइकल के पेन, अगर गर्दन में भी दर्द साथ में है, हमारा बैठने का

0: पॉस्चर सही नहीं है, हमारे सोने का ढंग सही नहीं है, हम ऊंचा तकिया लगाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उस वजह से मांसपेशियों का दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा होता है, और वो जो दर्द होता है वो बैक ऑफ द हेड में रेडिएट कर सकता है। बट इसके और भी कारण हो सकते हैं, अगेन आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलिए और जांचें कराइए, कुछ एक्सरे कुछ स्कैन की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए कि क्या कारण है।
1: तो हर सर दर्द बीपी की वजह से हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है गगनदीप जी, ये किसी और वजह से भी हो सकता है, और सही वजह तभी पता चलेगी जबकि आप प्रॉपर जांचें कराएं, चेकअप कराएं। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: नाम बताएं अपना और अपना सवाल पूछें।
2: जी हम यूपी से उत्तर जिला सीतापुर से उत्ता गांव से उसामा बोल रहे हैं। हमारी जो मोम है उनको सर दर्द करने लगता है काफी ज्यादा।
1: कितनी उम्र होगी उनकी और किस वक्त पर सर दर्द होता है?
2: जिनकी होगी लगभग 55 साल।
1: अच्छा, और किस वक्त सर दर्द होना शुरू हो जाता है?
2: जी
1: किसी खास वक्त पर सर दर्द होता है या हर वक्त होता रहता है?
2: अचानक ऐसे कभी कभी सर दर्द करने लगता है।
1: सर के कौन से हिस्से में दर्द होता है?
2: पूरे सर में दर्द होने लगता है।
1: 55 साल की उम्र और सर दर्द अक्सर हो जाता है डॉक्टर साहब?
0: जैसे मैंने पहले भी बताया, सर दर्द के बहुत कारण हो सकते हैं जिसमें बीपी एक कारण है, तो बीपी ज़रूर अपना नपवाएं, अगर बीपी कारण है तो उसकी दवाइयाँ लें, बट उसके अलावा टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन, आंखें कमज़ोर होना, चश्मा ना इस्तेमाल करना, ये एक बहुत कॉमन कारण हो सकता है, इन सब की जांचें कराएं अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलकर।
1: लेकिन क्योंकि 55 ईयर्स एज है मैडम की, तो हम ये ज़रूर
0: बीपी ज़रूर अपना जाँच कराएं, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसका भी इलाज करवाएं।
1: डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे यहाँ पर और उसके बाद हम जुड़ेंगे हमारे कॉलर से।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
1: और डॉक्टर साहब अब हमारे साथ कौन फोन लाइन पर हैं, चलिए जानते हैं। हेलो हेलो,
5: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून, कौन बोल रही हैं?
5: और डॉक्टर मैम को भी गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून,
5: शमा परवीन बात कर रहे हैं, पचानापुर जिला सीतापुर से।
1: जी शमा
5: मैम, मुझे ये दिक्कत है, सर में दर्द रहता है हमेशा पूरे सर में, और जब उठ के चलते हैं तो चक्कर आने लगते हैं, पूरा अंधेरा सा छा जाता है आंखों के सामने।
1: शमा आप कितने साल की होंगी, कितनी उम्र होगी आपकी?
5: 18 साल।
0: शमा जी देखिए, 18 साल पे अगर सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो अगेन मैं कहूँगी कि बीपी एक कारण हो सकता है, उसको ज़रूर रूल आउट करें, बट क्योंकि आप 18 साल के हैं, इसका कारण कमज़ोरी, शरीर में आयरन की कमी, विटामिन्स की कमी भी हो सकती है, आपको ज़रूर अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, कुछ ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, अपना बीपी नपवाना चाहिए, और जैसा भी आपके रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से आपको अपना इलाज कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब आपसे अब मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे श्रोताओं को आप कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे कि अगर उनके जीवन में ऑलरेडी ये समस्या आ चुकी है हाइपरटेंशन की, तो वो समझ पाएं कि ये प्रॉब्लम्स हाइपरटेंशन की वजह से हो रही हैं, अगर नहीं आई हैं तो वो कैसे दूर रह सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो फिर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि वो खुद कर सकती हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो सीधी सीधी सी बात कहें तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि हेल्थ मंत्रा क्या होना चाहिए आज के वक्त, जबकि ऑलरेडी इतनी टेंशन्स है लाइफ में, तो ये तो कहना ही बेकार है कि भाई टेंशन मत लो, आराम से बैठो, कहना आसान है लेकिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपसे हेल्थ मंत्रा जरूर लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
6: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: तो इस ब्रेक पर जाने से पहले मैंने डॉक्टर साहब से ये कहा था, डॉक्टर कोमल अग्रवाल से जो कि जानी मानी विशेषज्ञ हैं, उनसे ये जानना चाहा था कि किस तरह से हम जाने कि हाइपरटेंशन

0: ने ऑलरेडी हमारी लाइफ में नॉक नॉक कर दिया है, दस्तक दे दी है, और अगर ऑलरेडी वो आ गया है हमारी लाइफ में तो क्या हेल्थ मंत्रा है, किस तरह से हम कंट्रोल में रख सकते हैं इस बीमारी को? तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को?
1: हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ। तो अगर हमें अपने हार्ट को बचाना है, अपने सारे ऑर्गन्स को अच्छा रखना है, तो हमें अपने बीपी को कंट्रोल में रखना है। अगर हमें बहुत ज़्यादा सिर में दर्द, आँखों में देखने में दिक्कत, कभी नाक से खून आना, सांस लेने में दिक्कत, ऐसी दिक्कतें हैं, धड़कन बहुत ज़्यादा महसूस होना ऐसा लगता है, तो हमें अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जाके अपना बीपी ज़रूर मेजर करवाना चाहिए। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसको कहते हैं अपने खान पान पे ध्यान देना है, नमक की मात्रा कम करनी है, शराब सिगरेट को छोड़ना है, अच्छा खाना खाना है, प्रॉपर नींद लेनी है, वज़न ज़रूर अपना घटाना है, वज़न घटने से बीपी पे बहुत असर आता है, और अगर हमारी दवाइयाँ स्टार्ट हुई हैं तो हमको अपनी दवाइयाँ टाइम से लेनी है और डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप पर रहना है।
0: डॉक्टर साहब आपके साथ जो आज चर्चा हुई, इससे मुझे लगता है कि इसका क्रक्स यही है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है, और डॉक्टर के पास जाने में, उनकी सलाह लेने में हमें हिचकना बिल्कुल भी नहीं है। संतुलित खान पान, नियमित व्यायाम, तनाव से थोड़ी सी दूरी और समय समय पर जाँच, ये वो छोटी छोटी सी आदतें हैं जो हमें साइलेंट किलर से थोड़ा तो दूर जरूर रखेंगी। और शो के अंत में एक छोटा सा विचार जिसे मुझे लगता है श्रोताओं आप सबको अपने जहन में बिठा लेना चाहिए, जो इंसान आज अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल सकता, उसे आने वाले कल में अपनी बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ता है, तो फैसला बस आपका है। डॉक्टर कोमल अग्रवाल जी, आपने अपने बेहद व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और इतनी सरल भाषा में हमारे श्रोताओं की शंकाओं का समाधान किया, इसके लिए आपका पूरे एफएम रेनबो परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद।
1: थैंक यू ज्योति जी।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया एफएम रेनबो लखनऊ से। स्नेहिल मार्गदर्शन रहा सुश्री सुमोना एस पांडे जी का, जो कि हमारी कार्यक्रम प्रमुख हैं, प्रोड्यूसर श्री कुंवर बहादुर सिंह जी, और विशेष सहयोग के लिए खास तौर पर धन्यवाद विनय कुमार जी को। अगले रविवार फिर होगी हमारी और आपकी मुलाकात एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमारा संदेश यही है कि स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो लखनऊ 100.7 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, लखनऊ।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। सहजन व विधानसभा क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्थापना काल से लेकर अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में देश में केंद्र के साथ 22 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाई है। सीएम ने कहा कि भाजपा देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसने हमेशा इस बात की घोषणा मजबूती के साथ की है कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम। जिला प्रशिक्षण वर्ग से पहले सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में 150 लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्रतिबद्धता है।

शिकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। जौनपुर जिले में बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला अस्पताल सहित जिले के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष तैयारियां की गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल में 10 बेड का विशेष वार्ड आरक्षित किया गया है। इसके अलावा जिले के सभी 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी वार्ड तैयार कर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से दोपहर में अनावश्यक बाहर ना निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की अपील की है। चित्रकूट जिले के ग्राम पंचायत बरगढ़ में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन और यूपी नेडा ने समन्वित प्रयासों से जिले की सभी 350 ग्राम पंचायतों में से सबसे पहले बरगढ़ का चयन पूर्ण सौर ऊर्जा युक्त सोलर विलेज के रूप में किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा ग्राम बरगढ़ में सर्वप्रथम पंजीकरण कराने वाले जागरूक नागरिक श्री नसीमुद्दीन को सम्मानित कर उनके प्रेरणादायी प्रयास की सराहना भी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

श्रोताओं, थोड़ी देर में आपको लिए चलेंगे अपने लखनऊ केंद्र के समाचार कक्ष में और आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, आप सुनेंगे इलाकाई खबरें। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج گورکھپور میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان 2026 کے تحت منعقد ایک پروگرام میں شامل ہوئے، جہاں وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا،
1: केंद्रीय संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल जिसने अपनी स्थापना काल के से लेकर के अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में देश के अंदर केंद्र के साथ साथ 22 राज्यों में अपनी सरकार अपने दम पर अपनी विचारधारा को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिस अभियान को आगे बढ़ाया

0: है। उस राजनीतिक दल के गोरखपुर जनपद के इस विशेष प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मैं आप सबका इस पूरे आयोजन के प्रति मैं जिला इकाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
1: इससे कबल वजीर आला ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िद जनता दर्शन प्रोग्राम में मुख्तलिफ अजला से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनी। इस दौरान वजीर आला ने अफसरान को अहकाम दिए कि वो पूरी हसासियत से ये यकीनी करें कि बगैर किसी तफरीक के सबको इंसाफ मिले और जल्द ही उनकी दिक्कतों का तस्फिया किया जाए। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए एजाजिया तकसीम को लेकर आज पूरी रियासत में उनके एजाज में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में मुनक़िद रियासती सतही जलसे में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के एजाज में इजाफा शुदा एजाजिया तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। वाज़ेह रहे कि इनका एजाजिया 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये फी माह करने का फैसला किया गया है। इजाफा शुदा एजाजिया 1 अप्रैल से नाफिज किया गया है। रियासत में जारी डिजिटल मरदमशुमारी के पहले मरहले के तहत खुदशुमारी का अमल 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाले इस अमल में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में खुदशुमारी का डिजिटल फॉर्म भरा। वजीर आला ने रियासती आवाम से इस अमल में शराकत दारी दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा कि यह मुल्क की पहली मुकम्मल तौर से डिजिटल मरदमशुमारी है। इसका खास मकसद सही इदाद व शुमार जुटाकर मुल्क की तरक्की और बहबूदकारी स्कीमों की आउटलाइन तैयार करना है। मरकजी सानवी तालीम बोर्ड CBSE ने तालीमी सेशन 2025-26 के दर्जा 12 के बोर्ड इम्तिहान के नतायज के ऐलान होने के बाद तलबा व तालिबात के लिए मुख्तलिफ सहूलियात का ऐलान किया है। बोर्ड ने इस मरतबा तशखीस के अमल को और ज्यादा सही और शफाफ बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है।
1: CBSE ने 1 जुलाई से दर्जा 9 के तलबा के लिए 3 जुबानों की पढ़ाई लाजमी करार दी है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और कौमी स्कूल तालीमी निसाब 2023 के मुताबिक इन 3 जुबानों में से कम 2 हिंदुस्तानी ओरिजिन की जुबानें होनी चाहिए। CBSE ने वाजह किया है कि दर्जा 10वीं में तीसरी जुबान R3 के लिए कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और R3 के लिए मुकम्मल तशखीस पूरी तरह से स्कूल पर मबनी और इंटरनल होगी। दिल्ली NCR की तरह उत्तर प्रदेश में भी SCR तैयार हो रहा है। UPSCR के डेवलपमेंट प्लान के तहत कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या के दरमियान नमो भारत कॉरिडोर बनाने और रैपिड रेल चलाने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट का वसी खाका लखनऊ तरक्याती अथॉरिटी में मुशीर एजेंसी ने दिया है। इसमें नयागंज कानपुर, उन्नाव बशीरतपुर, नवाबगंज बंथरा, अमौसी लखनऊ, सुशांत गोल्फ सिटी, जुग्गौर बरेल, सफदरगंज भिटरिया और अयोध्या में स्टेशन की तजावीज़ है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान है। NCRTC और उत्तर प्रदेश हुकूमत मिलकर मुश्तरका तौर से इस पर आगे काम करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात बांटेंगे। यह इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 134वीं कड़ी होगी। और महकमे मौसमियात के कयास के मुताबिक मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते रियासत में दस्तक देगा। इस साल मानसूनी सीजन में मामूल से कम बारिश के इम्कान हैं। महकमे आबपाशी और आबी वसायल की जानिब से रियासत के सभी 18 डिवीज़नों में 31 मई तक सैलाब कंट्रोल रूम कायम करने के अहकाम दिए गए हैं। सैलाब और मुतासर इलाकों की निगरानी के लिए ये कंट्रोल रूम 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI Life की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
3: मुस्कुराते रहिए और इतराते भी रहिए कि आप इस शहर में हैं। वैसे अगर आप इस शहर में नहीं भी हैं तब भी आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ, तो ये भी प्राउड फील करने की एक वजह तो है ना। प्रोग्राम का नाम HPTB यानी कि होटल पे तेरी बात। मैं हूँ ज्योति और आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिल जाए तो आप कौन सी सुपर पावर हासिल करना चाहेंगे। हमें ईमेल करिए और बताइए अपने दिल की बात।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: तो जी, मैंने आपसे ये जानना चाहा था कि आप, अगर आपको कोई भी सुपर पावर मिले तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे। तो मेरे सामने है रागिनी का ईमेल और वो कह रही हैं कि पहला ईमेल है मेरा आप तक जो पहुंचा, और अगर मुझे सुपर पावर मिलती तो मैं उस सुपर पावर को हासिल करती कि मैं जब कभी भी कॉल करूं रेडियो FM पर तो हर बार फोन मिल जाए, और जब भी मैं मैसेज भेजूं तो वो मैसेज भी पढ़ा जाए। हो स्वीट, इट्स एक्चुअली वेरी स्वीट, लेकिन उसके लिए आपको किसी सुपर पावर की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, हम यूँ भी कोशिश करते हैं कि हमारे सारे कॉलर्स के कॉल लें और सारे मैसेजेस को पढ़ा जाए। कभी कभार ऐसा मिस हो जाता है जब बहुत सारे कॉल्स एक साथ होते हैं, लेकिन वो कम होता है ना। तो भाई जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तभी तो हम हैं। एंड यस, ये बताइए कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिले तो कौन सी सुपर पावर आप लेना चाहेंगे।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
5: 1:30 और 25 सेकेंड्स हो गए हैं और ज्योति ने आज आपसे HPTB यानी कि होटो पे तेरी बात में ये जानना चाहा है कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिले, मतलब आपके सामने अगर ईश्वर आ जाए आपसे कहें कि क्या इच्छा है बच्चा, तथास्तु बोलने को मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो आप क्या मांगेंगे? बड़े स्वीट स्वीट से ईमेल्स आ रहे हैं मेरे सामने। रामेश्वर जी ने लिखा है कि बस हमारा ईमेल शामिल हो जाए। रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया,

प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, बधाई निशा कठेरिया, मुंगीसापुर कानपुर देहात से। कितने मतलब सिंपल और कितने स्वीट हैं आप सब। विजय पाल यादव ने ललहुआ लखीमपुर खीरी से लिखा है। हमें बस एफएम रेनबो में आप सबकी आवाज सुनने को मिलती रहे और कुछ नहीं चाहिए, ललहुआ जिला खीरी से। इतना सेल्फलेस जब प्यार आप सबसे मिलता है तो सच कह रही हूँ, एकदम दिल भर आता है। रामराज, राजू भानु, पप्पू पासी, मनीष, नीरज शंकर भैया की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से ईमेल आया है। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि आज का सवाल क्या है। आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम सभी ने कभी ना कभी सोचा होगा ना कि जैसे हम कहानियों में सुनते हैं ना कि हमने कुछ बड़ा अच्छा काम किया और एकदम से ईश्वर हमारे सामने प्रकट हुए और हमसे कहने लग गए, मांग लो कोई भी वरदान बच्चा, मांग लो। तो अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप क्या वरदान मांगना चाहेंगे, क्या सुपर पार आप चाहेंगे, जल्दी से हमें ईमेल करके बताइए। ईमेल आईडी वही पुराना, fmakashwani@gmail.com। प्रोग्राम का नाम HPTB यानी होठों पे तेरी बात, जिसमें होती है मेरी आवाज लेकिन बस आपके जज्बात, आपके अल्फाज। तो जल्दी से हमें ईमेल करिए और मैं ज्योति बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ आपके ईमेल्स का।

0: भाई ये मैं नहीं कह रही, ये हमारी अगली ईमेल सेंडर ने बोला है।
1: क्या बात है, क्या चीज है
0: बेसा। मिनिता जैन ने लिखा है कि भाई सच बोलूं तो अगर मुझे कोई सुपर पावर मिले तो मैं ये सुपर पावर चाहूंगी कि मैं जब जितना चाहूं उतना पैसा मेरे सामने आ जाए।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा।
0: लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर ये सुपर पावर बड़ी कॉमन होगी तो मनी इन्फ्लेशन कितना हो जाएगा, है ना? लेकिन हाँ, मजेदार सुपर पावर होगी। तो ये तो सोचना है इनका, आपका क्या सोचना है? अगर आपको कोई सुपर पावर मिले तो कौन सी वो खास शक्ति, कौन सी वो पावर आप हासिल करना चाहेंगे, मुझे ईमेल करके बताइए। ईमेल आईडी हमारे स्टूडियोज का वही पुराना, fmakashwani@gmail.com। मेरा नाम ज्योति, प्रोग्राम का नाम HPTV यानी कि होठों पे तेरी बात, और चैनल आपका पसंदीदा यानी कि FM रेनबो।
1: क्या बात है, क्या चीज है।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rain.

धड़कन लखनऊ की। तो जी 1:41 हो चुके हैं और 7:08 अभी भी आपके पास वक्त है, जल्दी से मुझे ईमेल करिए और मुझे बताइए कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिले तो आप कौन सी वो खास शक्ति हासिल करना चाहेंगे। मुनेश कुमार गांव भानपुर हरोबा जिला लखीमपुर खीरी से ईमेल कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है, नाम है सुपर पावर, कार्यक्रम है बेमिसाल, ज्योति मैम आपका शो भी है कमाल, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन्होंने लिखा है, अगर मुझे कोई सुपर पावर मिल जाए तो मैं भ्रष्टाचार को बैन कर दूंगा और दुनिया को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है, मतलब ये जो सुपर पावर है इससे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दुनिया भर को फायदा होगा, है ना। बसंत कुमार सिन्हा शॉ लिखते हैं, अगर मुझको सुपर पावर मिले तो मैं गांव गांव में रेडियो स्टेशंस का विस्तार करना चाहूंगा ताकि किसानों को खेती करने की नई नई बातें बताई जा सके, सभी गांव वालों को रेडियो का मजा आ सके, मनोरंजन भी प्राप्त हो सके, हर गांव में स्कूल कॉलेज नई सड़क की व्यवस्था करने की सोचूंगा। बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, अनिरुद्ध बाबू, कितना अच्छा लगता है ना कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो बिल्कुल सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो दुनिया के बारे में सोचकर चलते हैं। वकील अहमद साहब ने लिखा है कि अगर सुपर पावर मुझे मिली तो मैं सबकी मदद करना चाहूंगा। वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, क्षमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, इन सब ने मिल करके ये बात बोली है। महेंद्र देवपन का ईमेल है, जिला नागौर गांव रूड़ राजस्थान से। उन्होंने लिखा, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, अगर भगवान सामने आ भी गए तो सिर्फ इतना सवरदान मांगूंगा कि इस धरती पर जो भी जीव जंतु हैं उन्हें कभी कोई कष्ट ना हो। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि जब आपके जैसे श्रोता हैं जो इतने सेंसिटिव हैं, इतने कंपैशनेट हैं, इतने एम्पैथेटिक हैं, तो वाकई कितनी खूबसूरत ये दुनिया है। और कभी कभी हम छोटी सी बात हो जाती है और इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि लोग ऐसे हो गए, लोग वैसे हो गए, लेकिन तभी मैं कहती हूँ ना कि मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम वो टाइम होता है जब मैं आप सबसे कनेक्ट होती हूँ, क्योंकि तब मुझे एहसास होता है कि बिना किसी को जाने भी आप कितना जान सकते हैं उसको और दुनिया कितनी खूबसूरत है सिर्फ आपके जैसे लोगों की ही वजह से। बसंत कुमार सिन्हा शॉ ने दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से हमें ईमेल किया है। अनवर अंसारी जी ने ईमेल लिखा है, आपका प्रोग्राम बढ़िया लग रहा है, पंजाब अहमदगढ़ मंदिर से हैं मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी। घनश्याम सिंह जी का ईमेल आया है कि अगर ईश्वर मेरे सामने प्रकट हो जाए तो मैं कहूंगा कि इतनी शक्ति दीजिए और इतना धन दीजिए और स्वास्थ्य दीजिए। भाई ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तब तो आप सारी सुविधाओं को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कहीं बाई चांस अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो उनका फायदा उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि मैं ये सुविधा भी चाहूंगा जिससे कि मैं असहाय और गरीबों की मदद कर सकूं। तो घनश्याम जी इतनी सारी चीजें मांग लेंगे, लेकिन हाँ ये जितनी भी चीजें हैं बहुत ही सेंसिबल बात आपने कही है। एडवोकेट घनश्याम सिंह, नारायण नगर ए, फैजाबाद रोड, लखनऊ।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
3: एक बजकर 49 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ढेर सारी ईमेल्स मेरे सामने हैं, तो एक बार मैं बस टॉपिक रिपीट कर देती हूँ और फिर इन ईमेल्स पर आती हूँ। मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर आपसे ईश्वर खुद पूछे कि तुम्हें कौन सी सुपर पावर चाहिए तो आप कैसी, कौन सी सुपर पावर हासिल करना चाहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आ रहे हैं। मनोज विश्वकर्मा ने छत्तीसगढ़ से हमें ईमेल किया, जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव से। गुड आफ्टरनून, मुझे सुपर पावर मिले तो मैं हर काम में सफलता मांगूंगा। भाई मेरा ऐसा ठीक है, मतलब सोचने में कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना मनोज कि अगर आपको हर चीज में सफलता मिलती है तो आपकी लर्निंग बहुत कम हो जाती है। तो कभी कभी असफलता भी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि पहली बात तो वो आपको बैलेंस रखती है और दूसरी बात जितना कुछ आपको फेल्योर सिखाती है, सक्सेस उतना कुछ सिखा नहीं पाती, तो इसीलिए एक बैलेंस जरूरी है ना। सतीश कुमार ने सीतापुर से हमें ईमेल किया है, लिख रहे हैं पहली बार ईमेल कर रहा हूँ, यदि कोई सुपर पावर मिल जाए तो मैं चाहूंगा, ओहो ओहो ओहो, मैं बस यही चाहूंगा कि मुझे एक ऐसी जीवन साथी मिले जो मुझे सच्चे दिल से चाहे और हमारा साथ हमेशा बना रहे। हाउ स्वीट। तो जी, हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करेंगे कि आपका ये ख्वाब, आपकी ये मन्नत बहुत जल्द पूरी हो। आकाश लोधी मलिया बादी ने लिखा है, अगर हमें सुपर पावर मिल जाए तो हम सब तक शिक्षा पहुंचाएंगे। गुड थॉट। एमके राज ने लिखा है, थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए इस मैसेज को हॉटमेल में पढ़ना। ऑल राइट, तो हॉटमेल का मैसेज भी इन्होंने यहाँ पर ही डाल दिया है, विद द फरमाइश कि क्या आपको गाना चलाना है। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश की जाएगी।

सुधाकर जाधव जी ने लिखा है प्रोग्राम में अभी अभी शामिल हो रहा हूँ आज हेल्थ एंड फिटनेस में शामिल नहीं हो पाया टॉपिक पता नहीं है जो भी प्रोग्राम हुआ होगा अच्छा ही रहा होगा तो भाई अगर आप प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए कोई बात नहीं इट्स परफेक्टली ऑल राइट आप हमसे कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड होना चाहते हैं ये ही एक बहुत बड़ी बात है सुधाकर जाधव जी ने भी गाने की फरमाइश की है तो गाने की फरमाइश पूरी करने की कोशिश की जाएगी लेकिन फिलहाल तो वक्त है ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने

1:55 हो गए हैं, यानी कि बहुत कम वक्त बचा है। हालांकि मैं आपके साथ ही रहने वाली हूँ अभी अगले दो घंटे और, लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम में आपकी सुपर पावर्स डिस्कस करने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, तो चलिए जल्दी से ईमेल्स पढ़ लेते हैं। रमेश पटेल ने लिखा है, अगर मुझे कोई सुपर पावर मिले तो मैं जरूरतमंदों की जरूरतें पूरा करने का वरदान मांगूंगा। लेकिन ये तो बड़ा वेग सा है ना रमेश पटेल जी, किसकी क्या जरूरतें हैं? हो सकता है कि आप किसी एक की जरूरत पूरी करें और उससे दूसरे का नुकसान हो, है ना? तो ये भी सोचना पड़ेगा, कभी कभी ये भी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर किसी की ख्वाहिशें पूरा नहीं करता। और बार बार जब भी हम दुआ करते हैं तो यही करते हैं ना कि वाजिब जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो जरूर पूरी हो। इन्होंने हमें ईमेल किया जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण ने लिखा है कि उड़कर अंतरिक्ष में जाने की बड़ी ख्वाहिश है और अगर ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो बस क्या कहना, मेरे को सुपर पावर मिली तो दूसरों की मदद करूंगा। अभी अभी मेरे नजदीक रहने वाली एक महिला को दवाखाने में एडमिट करा के आया हूँ, उनके घर पर कोई नहीं था और उनकी डिलीवरी नजदीक थी, इस वास्ते एडमिट करा दिया। मन को बड़ी शांति।

मिली सुधाकर जाधव जी ने ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमें ईमेल किया। मुझे लगता है ना कि आपके जैसे जो लोग इतने सेल्फलेस हैं और सेल्फलेसली दूसरे की मदद करते हैं, उसी वजह से ये दुनिया इतनी खूबसूरत है। अगर मुझे सुपर पावर मिल जाए तो दुनिया में जब भी कोई जंग होगी तो मैं उसको रोक दूंगा। ये कहने वाले अजमत अंसारी साहब। धर्मवीर भारती ने लिखा है, शुक्ला गंज उन्नाव से, सुपर पार ये कि कोई भी अपने आप को सुपर पार ना दे सके, कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये भी बात सही है। ज्यादातर समस्या इसीलिए है क्योंकि हम में से कुछ लोगों को लगता है कि हम सुपीरियर हैं, तो ये भी बड़ी गहरी बात आपने कही है। तो भाई अगर आप मेरी सुपर पावर की बात कहें तो मैं तो बस इतनी सी सुपर पावर चाहूंगी कि आप सबसे हमेशा कनेक्टेड रहूं। ऑन दिस नोट अब बस आगे बढ़ती हूं और कहती हूं आपसे कि इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना होगा। स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रवाद के भाव से आचरण ही भाजपा कार्यकर्ता की मजबूत पहचान है। वे संस्थापकों के मूल्यों और आदर्शों पर देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के सहजनवा में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत पार्टी की जिला इकाई की तरफ से आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल प्रतिभागियों को राष्ट्रप्रथम के भाव से अनवरत आगे बढ़ते रहने को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम करने वाली भाजपा इकलौती पार्टी है। केंद्र और भाजपा की राज्य सरकारों ने इसे अपने कार्यक्रमों का आधार बनाया है। प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने आज पीलीभीत के देवहा में बाढ़ से बचाव के लिए ब्रह्मचारी घाट के पास कराए जा रहे बाढ़ राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर श्री गंगवार ने अधिकारियों को समय से गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ आने से पहले सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण करा लिए जाएं, जिससे बाढ़ में कोई नुकसान ना हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ नगर निगम द्वारा आज जिला अदालत और कलेक्ट्रेट के पास बने करीब 240 अवैध चैम्बर और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान पुलिस टीम और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्रवाई शुरू होते ही बड़ी संख्या में वकील मौके पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए वकीलों और दुकानदारों को हटाया।

मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं वहीं लखनऊ के डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत अवैध निर्माण हटाया जा रहा है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है इटावा में अब नदियों को नया जीवन मिलेगा जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने एक जनपद एक नदी योजना के तहत 53 किलोमीटर लंबी सिरसा नदी के पुनरुद्धार के निर्देश दिए हैं आगामी 1 जून से इस पर काम शुरू होगा जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि बिना सरकारी पैसा बर्बाद किए गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए बैठक में डिजिटल लाइब्रेरी प्राकृतिक खेती और गौशालाओं पर भी चर्चा हुई आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता रोकथाम पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं इस बुलेटिन में इतना ही अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 3 बजे जुड़े रहिए एफएम रेनबो से

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर पुरानी जींस और गिटार शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है रते आशिके जगा
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते जुड़ता है मन आस्था से संस्कारों से देवभूमि उत्तराखंड से केदारनाथ की दिव्यता बद्रीनाथ का आशीर्वाद गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें सेवा सहयोग और एकता का भाव रखें वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं संस्कार और संकल्प की पहचान सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी
5: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI इससे बेहतर कुछ नहीं
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की
8: और अब ये ना सिर्फ रह गई है धड़कन लखनऊ की बल्कि बन गई है धड़कन आप सबके दिल की हाय हेलो एंड गुड आफ्टरनून एक बार फिर आपके साथ है आपकी अपनी दोस्त ज्योति आपके अपने पसंदीदा चैनल पर जिसका नाम है एफएम रेनबो और अब अगले पूरे घंटे आप जी हाँ सिर्फ आप ही रूल करने वाले हैं एयरवेव्स पर क्यों क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है हॉट मेल और इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपके मेल्स पढ़ते हैं आपके मैसेजेस दूर दूर तक पहुंचाते हैं और आप ही की पसंद के गाने भी सुनाते हैं तो भी सोच क्या रहे हैं जल्दी से हमें ईमेल करिए वैसे कुछ ईमेल्स हमारे सामने भी आ गए हैं सतीश अनेजा जी ने लिखा है किसी का बुरा सोचे बिना उसका भला करो क्योंकि किसी ने कहा है जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू अक्सर रह जाती भाई वाह क्या बात के एकदम दिल जीत लिया चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा

ला अनीजा, तो सीधी सी बात है कि बिना ज्यादा सोचे हुए अगर आप अच्छे काम करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपका भी फायदा होता ही है। यासीन अंजन ने भी हमें ईमेल किया है, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, और हमें गाने सुनाने की फरमाइश की है। हरजिंदर शिंदा का ईमेल है, गांव नथाना पंजाब से, जसवीर जस्सी के साथ मिलजुल कर इन्होंने कहा है कोई भी गाना सुना दीजिए। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और गानों का सिलसिला शुरू करते हैं। याद रखिएगा इस पूरे प्रोग्राम में सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं बस आपकी पसंद के, मैसेजेस भी बस आपके ही, यानी के इस पूरे घंटे के सुपरस्टार तो आप ही हैं। जरा आप तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से ईमेल हम तक पहुँचाइए।

वेलकम शुरू होने से पहले ही ईमेल्स ढेर सारे हमारे सामने आ जाते हैं और ये इस बात का सबूत है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं एफएम रेनबो से। आज के वक्त जबकि टाइम सबसे बड़ी कीमती चीज़ है, ऐसे में आप हमें वक्त देते हैं, इतनी मोहब्बत से प्रोग्राम सुनते हैं और न सिर्फ सुनते हैं बल्कि प्रोग्राम्स में अपने इनपुट्स देते हैं, ईमेल्स भेजते हैं और फरमाइशें भी हम तक पहुंचाते हैं। उसके लिए आप सबका दिल से ढेर सारा शुक्रिया। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, इन सब ने हमें मिलजुल कर ईमेल किया है। दिग्दर्शन और कविता गौड़ का ईमेल आया है मेरठ कैंट से। ढेर सारे गानों की इन्होंने फरमाइश की है और कहा है कि कोई सा भी गाना प्ले कर दीजिए जी, पूरी पूरी कोशिश की जाएगी और यकीन जानिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप सबके ही गाने हम प्ले कर सके, लेकिन हमेशा ऐसा हो नहीं पाता एंड आई एम श्योर कि आप हमारी मजबूरी समझते हैं, तो पूरी कोशिश की जाएगी, बिल्कुल पूरी कोशिश की जाएगी। शम्सुल कमर राही गंज डुंडवारा से शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, करीम अंसारी के साथ इन्होंने ईमेल किया है और लिखा है कोई भी गाना प्ले कर दीजिए। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इन्होंने ईमेल किया है, मिलजुल कर गाने की फरमाइश की और आगे लिखा है जल्दी जल्दी आया करो। ओके जी, आपकी बात सर आंखों पर, कल रात को फिर से मुलाकात होगी नाइट शोज में। नाउ हैप्पी, मी टू, मैं भी बहुत खुश। हम दुआ करते हैं कि आप खुश रहें और खैरियत से रहें, किसी भी सदाबहार नगमे में शामिल करें। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, इन सब ने ईमेल किया है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगापुर राजस्थान से। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको सुनाते हैं आप ही में से किसी एक का फरमाइश किया हुआ ये खूबसूरत गाना। बढ़े आगे। ऑल राइट, तो भाई गाना कहाँ चला गया, गाना कहाँ चला गया। मुझे लगता है कि मेरी और आपकी बातों के बीच में कहीं गाने ने भी सोचा कि चलिए हम ब्रेक ले लेते हैं। तो जी गाना जी, प्लीज़ ब्रेक मत लीजिए क्योंकि हमारे सुनने वाले बड़ी मोहब्बत से इंतज़ार कर रहे हैं। सो हियर वी गो इस खूबसूरत गाने के साथ। ओके बात दिल से कहना चाहूंगी, इतने खूबसूरत गानों की आप फरमाइश करते हैं। कई सारे ऐसे गाने जो हमारी मेमोरी में भी कहीं पीछे पड़े होते हैं, मतलब हम भूल से गए होते हैं, लेकिन जब उनकी फरमाइश आपके थ्रू आती तो याद आता है अरे ये गाना भी तो था जो एक वक्त मेरा फेवरेट हुआ करता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ना सिर्फ आपके वक्त के लिए, ना सिर्फ आपके इनपुट्स के लिए, बल्कि इसलिए भी कि आपने कुछ ऐसे गाने हमें याद दिला दिए जिन्हें हम भूले हुए बैठे हुए थे।

2:20 आप हैं ज्योति मिश्रा के साथ इन द प्रोग्राम हॉट मेल। और ज्योति के सामने मेले रघुनाथपुरा जिला श्री गंगा नगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी का। दिलीप कुमार जी का भी ईमेल है, दिलीप कुमार सोनी कमल किशोर शाह मोदी चक भागलपुर बिहार से। टीडी मल्होत्रा जी का ईमेल आया, ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप के साथ सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। एंड कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज। अहमद फूल वाले का भी ईमेल आया है, दुखनी सदफ आरजू जूही इकबाल फूल वाले इमरान अहमद फूल वाले इन सब ने मिलजुल कर छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से हमें ईमेल किया है। और कापस सहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन आसमा परी राबी।

या मंतिशा, आज जो अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले परिवार, सुनील पाठक जी का ईमेल है, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गावया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक जी, इन सारे लोगों ने मिलजुल कर ईमेल किया है हमें और गाने की फरमाइश की है अनारकली बाजार जरगांव पंजाब से। शाहरुन नूर अंसारी जी का ईमेल है, हर हरपुर मटकली जिला बरेली से, शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इतरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी एंड डीजे प्रधान। बोधराज खुरवाल का भी ईमेल है, उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खुरवाल। और अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का और आप ही में से किसी की पसंद का गाना सुनाने का। फिल्म का नाम क्रिमिनल। वैसे आप भी हमें फरमाइश कर सकते हैं, अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं इसी चैनल पर जिसका नाम है 100.7 FM रेनबो। हमारा ईमेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। मेरा नाम ज्योति और चैनल वही आपका पुराना यानी FM रेनबो।

0: हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: हॉटमेल करने वाली ज्योति दीदी को हमारा प्रणाम। हमें ये गाना सुना दीजिए। ये कहने वाले हैं साई गायकवाड़, ओम रेडियो श्रोता सैंकोली नांदेड़ महाराष्ट्र से। इतनी दूर से इन्होंने ईमेल किया है। नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़, इन सब ने मिल करके बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उनका ईमेल पढ़ भी लिया गया है, फिर भी उन्होंने साथ साथ आठ आठ ईमेल और भेज दिए हैं। उसमें होता क्या है ना दोस्तों कि जो हमारे प्यारे लिसनर्स एक ईमेल करके बहुत पेशेंटली अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, उनके ईमेल कहीं छिप से जाते हैं, खो से जाते हैं। तो अगर आपका ईमेल पढ़ लिया गया है तो आपको क्या करना चाहिए सोच कर देखिए। रोजी डी कैस्ट्रो, जॉन डी कैस्ट्रो, पॉल डी कैस्ट्रो, विलिस डी कैस्ट्रो, इन सारे लोगों ने मिलजुल कर हमें ईमेल किया है। कहाँ से किया है? जनकपुरी सहारनपुर से। तालिब अंसारी साहब का भी ईमेल आया है, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। आसिफ अंसारी तेलंगाना से, साबिर अंसारी कानपुर से। तुलसी मस्कीन का भी ईमेल है, प्लीज किसी भी प्यारे से गीत में संदेश ले लें जी, थैंक्स। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना, चारू नूर अंसारी जी का ईमेल, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, मोहम्मद साबिर अंसारी जी का एक और ईमेल है, मोहम्मद तालिब अंसारी, आरिफ अंसारी तेलंगाना से, रामेश्वर जी का ईमेल है, लिख रहे हैं मेरा मेल कहीं खो गया। हाँ जी, खो ही जाते हैं, होता क्या है कि हमारे बहुत सारे दोस्त उनका ईमेल पढ़ लिया जाता है, उसके बाद भी ढेर सारी ईमेल करते हैं। मैं समझती हूँ ईमेल आप करते इसलिए है क्योंकि आपको हम सबसे बहुत सारी मोहब्बत है, हमारे चैनल से प्यार है, लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं के ईमेल इधर उधर गुम से हो जाते हैं। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, नरेश जी का भी ईमेल आया है, नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहत।

से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, भाविक सिक्का। तो इन ईमेल्स के बाद अब आगे बढ़ते और सुनाते हैं आपको एक ऐसा गाना जिसकी फरमाइश आप ही में से किसी एक स्वीट स्वीट लिसनर ने की है। ये सॉन्ग भी बहुत अरसे के बाद रेडियो पर बज रहा है मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे गानों की फरमाइश करने के लिए जिन्हें हम भूल से गए, हालांकि वो अपने वक्त के सुपर डुपर हिट सॉन्ग हुआ करते थे।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
3: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
4: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
5: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
6: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
7: मेरा मेल शामिल नहीं हुआ है। बस इतना सा लिखा है, अजीज अहमद तिहार सीतापुर यूपी से।
8: तो जी होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला हमारे बहुत सारे दोस्त हैं उनका ईमेल शामिल हो जाता है, उसके बाद भी वो ढेर सारे ईमेल करते रहते हैं और इसकी वजह से आपकी नाराजगी का शिकार होना पड़ता है हमको। दिनेश वर्मा जी ने ईमेल किया है रिंगिनी छत्तीसगढ़ से करुणा वर्मा के साथ। मनोज विश्वकर्मा ने लिखा है, एक नजर मेरे ईमेल पर डालिए मैडम, बेसब्री से इंतजार है। विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर हॉट मिल प्रस्तुत करने वाली दीदी को गुड आफ्टरनून जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ढेर सारी तारीफ के लिए। दीपक राजाजीपुरम लखनऊ से, सुरभि सीतापुर से, संजू गढ़वा हरदोई से, आजाद सिमरी से, ओंकार सीतापुर से, संतोष मौर बहुत बहुत शुक्रिया। और किन का ईमेल है, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा का भी एंड जयदेव देव। कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, गर्मी से बचने के कुछ उपाय इन्होंने शेयर किए हैं जो कि बड़े अच्छे हैं। जी हीट स्ट्रोक से जरूर बच करके रहें आप सारे लोग, ये इनकी गुजारिश है, ये इनकी रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया। जयदेव बैरागी जी, अरुणा जी, प्रियांशी, आदित्य रुद्रापुर, उधम सिंह नगर उत्तराखंड से, बिल्कुल सही बात है। जो मौसम है ना, और ऐसे भी कहते भाई जेठ में तो पड़ेगी ना गर्मी, ऑफकोर्स पड़ेगी। मुकेश कश्यप जी का ईमेल है, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राज्यपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवीर, लक्ष्य सोनी, मोनी ऋतिक, बलवीर सिंह के साथ, दुलापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद। अजमत अंसारी, हेलो मैम, प्लीज मेरा ईमेल पढ़ लीजिए, अजमत अली फ्रॉम सुल्तानपुर।

सॉन्ग पसंद आ रहे हैं मेरी होने वाली वाइफ रीजा भी आपका प्रोग्राम सुन रही तो रीजा जी सुनते रहिए यू ही एफएम रेनबो बाबू अंसारी जी का एक और ईमेल हमारे सामने देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से नसीम अंसारी मुन्नन अंसारी फैज अंसारी कुलदीप गुप्ता और बाबू अंसारी वारिस अली खान साहब तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे अश्क मेरी आंखों से निकल सकते थे अरे तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह साथ देते तो बहुत दूर निकल सकते थे भाई वाह क्या बात है बहुत ही खूबसूरत मनोज बंसल हांसी हरियाणी से नमस्कार भेज रहे हैं एंड ताज मोहम्मद जी इन्होंने ईमेल किया है गुलाम साविर राही महराज जहां के साथ आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत ईमेल्स के लिए आगे बढ़ते हैं और आप ही में से किसी एक ही पसंद का ये गाना आप तक पहुंचाते हैं

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: और लखनऊ की इस धड़कन पर धड़क रहा है इस वक्त सिर्फ आपका नाम, क्योंकि आपने पहुंचाए हैं हम तक आपके खुद के पैगाम थ्रू योर मैसेजेस। और यस, कुछ ऐसे सॉन्ग भी तो हैं जिनकी आपने फरमाइश की है, तो चलिए आगे बढ़ते। विनोद कुमार गुप्ता गोला गोकर्ण नाथ लखीमपुर खीरी से लिख रहे, पहली बार ईमेल किया है, प्लीज शामिल कर लीजिए। लीजिए जी, शामिल कर लिया, लेकिन बदले में आपको करना है ये कि अब आपको डेली ईमेल करना होगा, चलेगा? गुड। ताज मोहम्मद साहब का ईमेल है, गुलाम साबिर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। आनंद तिवारी जी का भी है, ईमेल मिल ही जाएगा हमें भी कोई टूट कर चाहने वाला, वाह वाह वाह वाह, मिल ही जाएगा हमें भी कोई टूट कर चाहने वाला, अब सारा का सारा शहर बेवफा तो हो नहीं सकता क्या।

बात है। जिंदगी जीने का दूसरा मौका जरूर देती है, जिसे हम कल कहते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये शेर भी आनंद तिवारी जी का था, दारुकोया मल्लावा हरदोई यूपी से, और ये खूबसूरत थॉट भी उन्हीं का था। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग का भी ईमेल आया है, एंड अब्दुल गफ्फार साहब का भी ईमेल है, नागचुन रोड संजय कॉलोनी से खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, बसंत कुमार सिन्हा जी, मेरा ईमेल कहाँ खो गया, 2 बजे से इंतजार कर रहा हूँ अपनी बारी का, प्लीज हाजिरी लगा दें। अब मैं क्या कहूँ बसंत जी, होता क्या है कभी कभी वाकई खो जाते हैं ईमेल, हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, लेकिन हाँ इतना आपको यकीन रखना होगा कि जानबूझकर किसी भी ईमेल को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जाता, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई और आरजे।

एंड अब्दुल गफ्फार साहब का भी ईमेल है, नागचुन रोड संजय कॉलोनी से कंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी और पायल जोशी, बसंत कुमार सिन्हा जी, मेरा ईमेल कहाँ खो गया, 2 बजे से इंतजार कर रहा हूँ अपनी बारी का, प्लीज हाजिरी लगा दें। अब मैं क्या कहूँ बसंत जी, होता क्या है कभी कभी वाकई खो जाते हैं ईमेल, हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, लेकिन हाँ इतना आपको यकीन रखना होगा कि जानबूझकर किसी भी ईमेल को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जाता, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई और आरजे, इतना फेथ इतना ट्रस्ट तो आपको इस दोस्ती में रखना होगा, है ना। दमदम एयरपोर्ट कैलकटा से ईमेल आया है इनका, और कई सारे हमारे दोस्त ऐसे भी है जिनका ईमेल पढ़ लिया जाता है फिर भी कह देते हैं हमारा ईमेल नहीं पढ़ा गया, हमारा ईमेल नहीं पढ़ा गया, हमारा ईमेल नहीं पढ़ा गया, तो ये ठीक है क्या? नॉट फेयर। उत्तम कुमार भगत जी का ईमेल है, मुन्ना भगत गुड्डी भगत के साथ बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से, श्वेता भगत की सुतासु अंडव आनंद सत्यम आनंद के संग पाकुड़ झारखंड से, और जी उम्मीद करती हूँ आप में से किसी का भी ईमेल मैंने मिस नहीं किया, और अगर हो गया है, अगर बाई चांस हो गया है तो हाथ जोड़कर आप सबसे सॉरी, ये जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया गया है, और अगली बार पूरी कोशिश की जाएगी कि जिनके ईमेल आपकी बार मिस हो गए बाय चांस वो अगली बार जरूर पढ़े जाए। तो अगली बार बस यूं ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सिर्फ इसी प्रोग्राम में, क्यों हर प्रोग्राम में, अभी जो अगला प्रोग्राम लेकर आने वाली हूँ ना वो आपको ले जाएगा एक ऐसी दुनिया में जिसे आप भुला ही बैठे थे। यस, एक नॉस्टैल्जिक प्रोग्राम लेकर के आ रही हूँ अगले पूरे घंटे सतरंगी दुनिया, तो जुड़े रहिए एफएम रेनबो से, क्योंकि ज्योति आपके साथ यूं ही बने रहने वाली है लेकर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए एफएम समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री उल्फ किस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अंगीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण और दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर सहयोग पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लायन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप यात्रा का तीसरा चरण है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता जताई है। सचिव ने बताया कि सीबीएसई ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर लखनऊ के राज्य संग्रहालय में कला, संस्कृति और विरासत से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 19 मई को आयोजित होने वाले इस समारोह में पाश्चात्य शैली मूर्तिकला वीथिका का लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान आदियोगी शिव पर आधारित विशेष टेक्सटाइल

प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जाएगा। ये प्रदर्शनी 19 मई से 19 जून तक राज्य संग्रहालय की अस्थायी वीथिका में आम दर्शकों के लिए लगाई जाएगी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार संग्रहालयों को केवल प्रदर्शनी स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक संवाद और सीखने के सशक्त मंच के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र में आज सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार दंपत्ति सहित 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। वहीं मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र में सुबह तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी की मौत हो गई जबकि एक बच्चा घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आईपीएल में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 4 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

तो जी हेलो हेलो से क्यों शुरू किया मैंने सोचा आपने अगर आपने आज का गुड मॉर्निंग सुना होगा तो आपने खट से कनेक्ट कर लिया होगा यस यस यस गाइस मैं आज बात करने वाली हूँ वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे यानी कि विश्व दूरसंचार दिवस पर टेलीफोन की यानी हेलो हेलो वो चीज जिसको जब हम हेलो बोलते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान आता है मतलब फोन ही तो दिमाग में आता है ना तो आज वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मैं ज्योति और प्रोग्राम का नाम है सतरंगी और आज हम करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें टेलीफोन से जुड़ी हुई भाई वो दौर था जब घरों में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे पेजर आया पीले रंग के पीसीओ बूथ्स आए और आज के ये चमचमाते हुए फ्लैशी स्मार्टफोन अब ये मत सोचिएगा कि वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे है तो अब ज्योति तो बिल्कुल क्लास लेने वाली है नेटवर्क टर्म्स के बारे में बताएगी टेक्निकल टर्म्स की ढेर सारी इंफॉर्मेशन देगी सवाल ही नहीं उठता इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी जरूर पहुंचेगी लेकिन ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जिसके लिए आपको लगेगा कि भाई पहले हम क्यों नहीं जानते थे तो चलिए भाई इस यादगार सफर की शुरुआत तो हो ही चुकी है अब आगे बढ़ते हैं रागिनी MMS के इस खूबसूरत गाने के साथ तो आप भी कहते रहिए मेरे साथ हेलो जी प्रोग्राम का नाम सतरंगी मेरा नाम ज्योति और चैनल वही पुराना वाला जिसका नाम है रेनबो

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
2: Yes, आज है 17th May, यानी World Telecommunication Day, यानी विश्व दूर संचार दिवस। तो आज हम बातें करने वाले हैं कुछ मीठी मीठी यादों की, उन प्यारी प्यारी मिस्ड कॉल्स की, ट्रंक कॉल्स की, पीले पीले पीसीओ बूथ्स की एंड उस इमोशनल हेलो की जिसमें हुआ करता था पूरा अपनापन। अच्छा, आपने कभी सोचा ये फोन उठाते हैं हम सबसे पहले हेलो क्यों बोलते हैं? सोचा आपने? वैसे इंटरनेट पे एक बड़ी कमाल की अफवाह फैली हुई है कि टेलीफोन बनाने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ये नाम रखा था, मतलब ये रिचुअल स्टार्ट किया था क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था मार्गरेट हेलो, इसलिए उन्होंने प्यार में उनका नाम अमर कर दिया। लेकिन दरअसल ये

सच नहीं है। आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे पर इस अफवाह का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्चेस ये कहती है कि ग्राहम बेल की ऐसी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, बल्कि वो खुद फोन उठाकर हेलो नहीं बल्कि जहाजों वाले कैप्टन की तरह अहॉय बोला करते थे। और ये तो हमारी महान साइंटिस्ट थॉमस एडिसन थे जिन्होंने 1877 में कहा कि अहॉय छोड़ो और हेलो बोलना शुरू करो, क्योंकि ये सबसे क्लियर है, प्रैक्टिकल है। और एडिसन साहब की वजह से अब हम आप सभी कहने लग गए हैं हेलो। अब क्योंकि हेलो भी इतने सारे गाने सुना चुकी हूँ तो अब उस पर गाना नहीं सुना रही हूँ, आपको जिस कहने वाली हूँ रेडी स्टेडी पो, क्योंकि मेरे खजाने में आपके साथ शेयर करने को बहुत कुछ है। ढेर सारा एंटरटेनमेंट, ढेर सारी इंफॉर्मेशन और भी जाने क्या क्या। सो स्टे ट्यून्ड, प्रोग्राम का नाम सतरंगी दुनिया, मेरा नाम ज्योति, चैनल FM रेनबो।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: टाइम हुआ करता था जबकि घर में लैंडलाइन होना किसी रॉयल स्टेटस सिंबल से कम नहीं हुआ करता था। फोन रखने के लिए घर में एक स्पेशल टेबल होती थी और उसके ऊपर मम्मी के हाथ से बुना हुआ खूबसूरत क्रोशिया कवर। और यस, याद होगा आपको कि कभी कभी उस फोन को लॉक करने के लिए, मतलब अभी आज की तरह के पैटर्न लॉक और फेस लॉक नहीं होते थे भाई, बाकायदा ताले और चाबी वाले लॉक हुआ करते थे उस फोन को लॉक करने के लिए। और भाई वो जमाना था जबकि लोगों के नंबर्स आपको नोट करने

के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं थी, ज्यादातर नंबर्स आपको यूं ही रटे हुए थे। और मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोगों के पर्स में, वॉलेट में होती थी एक छोटी सी डायरी। उस वक्त के वॉलेट्स होते ही थे एक्चुअली, एक छोटी सी डायरी के साथ, जिसमें जब भी जरूरत हो, आप जिसका भी जरूरी है, आप नंबर नोट कर लें। एंड यस, हुआ करती थी टेलीफोन डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टरी, यस टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, जो कि रखी जाती थी फोन के आसपास ही। अब आज का हाल देखिए भाई, चीजें बहुत बदल गई हैं, और कहते हैं ना कि जो ना बदले वो वक्त कैसा है ना। आज के वक्त लोगों को अपना खुद का नंबर भी याद नहीं रहता, फोन उठाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, और फिर वो बता पाते हैं नंबर। वो जमाना था जबकि फोन पर्सनल नहीं हुआ करता था, बल्कि वो पूरे खानदान का और कभी कभी पूरे मोहल्ले का एक सामूहिक इवेंट होता था। जैसे ही घंटी बजती, ट्रिंग ट्रिंग, पूरा घर ऐसे दौड़ता था कि भाई वाह, जाने ही क्या हो गया हो, और कहीं कहीं आपकी क्रश ने कॉल किया। तो किस्मत कुछ ऐसी होती थी कि ज्यादातर फोन मम्मी पापा ही उठाते थे, और जहां इधर से आवाज आती कौन बोल रहा है, खट से फोन काट दिया जाता था। तो आपके साथ भी हुआ है कभी ऐसा? सोचिए सोचिए याद करिए, और अगर लगता है तो हमारे साथ अपने जज्बात शेयर भी करिए। आज 17th में, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, यानी विश्व दूर संचार दिवस, और इस मौके पर आप और मैं यादें ताजा कर रहे हैं उस वक्त की, जबकि फोन नहीं हुआ करता था, बल्कि पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी हुआ करता था।

आज की पीढ़ी के लिए ये यकीन करना भी मुश्किल होगा कि अगर आपको आउटस्टेशन बात करनी होती थी तो ट्रंक कॉल बुक करनी पड़ती थी। तुरंत ऐसे नहीं कि फोन उठाया और खट से वीडियो कॉल। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता था। ट्रंक कॉल बुक करी जाती थी जो कि काफी वक्त के बाद, काफी अरसे के बाद कनेक्ट हो पाती थी। ऑपरेटर बोलता था लाइन होल्ड करिए और बस पूरी फैमिली एक्साइटेड होकर के सांस रोककर इंतजार मोड में बैठ जाती थी। और उस वक्त भी हेलो हेलो हेलो आवाज आ रही है, इतनी जोर से बात करनी पड़ती थी। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो पुरानी फिल्मों को देख लीजिए, या आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग बार है तो उनसे कन्फर्म कर लीजिए। एसटीडी बूथ एकदम हॉट प्लेसेस होते थे जहां लोग जाकर कॉल करते थे, जल्दी जल्दी बात करते थे, क्योंकि हर बीतते सेकंड के साथ पैसा बिल बढ़ता जाता था। और स्क्रीन पर बढ़ते हुए बिल को देख करके आपका दिल थक थक थक थक थक थक करना शुरू कर देता था। लोग लेकर के जाते थे मुट्ठी में छुट्टे पैसे, और अगर आपकी बात थोड़ी सी भी लंबी हो गई तो जो लोग पीछे खड़े होते थे ना, वो आपको ऐसे घूरते थे कि आपको लगे ओह माय गॉड। सबके चेहरे पर होता था जल्दी जल्दी कॉल खत्म करो। एंड यस, उस वक्त सिर्फ इतना कहने के लिए कि आप सेफली पहुंच गए हैं, या तो आपको तार भेजना पड़ता था और या फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था, सिक्का डालकर पीसीओ से कॉल किया जाता था। सोचकर देखिए कितनी तेजी से वक्त बदल रहा है। और इस बदलते हुए वक्त को अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के सतरंगी में। क्यों? क्योंकि आज है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग वो बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा डेटा, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी चीजें जिन्हें सुनकर आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी होता था।

जिसे हर दिल गुनगुनाए और जो ढेर सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए वही तो है एफएम रेनबो क्यों मेरे भाई धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा पेजर आए पेजर के बाद में घर घर की बात हो गई मोबाइल फोन वैसे अगर आपको लगता है कि मोबाइल फोन एकदम रीसेंट टाइम की बात है तो ना ना ना ऐसा नहीं है दुनिया का पहला मोबाइल फोन आपसे तकरीबन आज से तकरीबन 53 साल पहले 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कूपर ने बनाया था और उसका वजन जानते कितना हुआ करता था पूरे 1 किलो के आसपास मतलब फोन डंबल का डंबल इतना हैवी कि आप जब चाहे बात कर ले और जब चाहे तो बाइसेप्स बना ले उसकी बैटरी चलती थी सिर्फ 30 मिनट्स तक और आज का जमाना देखिए स्मार्टफोन्स इतने स्लीक हो गए हैं इतने थिन हो गए हैं इतने स्लिम हो गए हैं कि देखकर कर लगता है कि भाई वाह एंड यस एक चीज तो कॉमन है आज भी अगर इनकी बैटरी लो हो जाती है तो हम भी काफी लो महसूस करने लगते हैं तो क्या आपकी बैटरी भी लो हो रही है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए चलिए चलिए रिचार्ज करिए अपनी बैटरी को इस गाने के थ्रू और ये कितना भी कह ले आई हेट लव स्टोरीज सच्चाई तो यही है कि दिलों को करीब लाने में फोन्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है And actually, nobody hates love stories.

भाई कहे कोई कुछ भी, लेकिन दरअसल दिलों को करीब लाने में स्टोरीज, लव स्टोरीज को लव स्टोरीज बनाने में फोन्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब देखिए ना, पहले पीसीओ होते थे, पीसीओ के जरिए कितने लोग मिल जाते थे, कितने लोगों के दिल मिल जाते थे। फिर धीमे धीमे धीमे धीमे मोबाइल फोन्स आ गए और फिर उस पर कैसे कम्युनिकेशन होता था। मतलब मैं आपको याद दिला दूं कि जब शुरुआत हुई थी मोबाइल फोन्स की, तो आपको फोन अटेंड करने के लिए भी बिल देना पड़ता था। यस, यू हर्ड इट राइट। एक वो जमाना था जबकि आप अगर फोन अटेंड करेंगे तो आपको उसका भी पैसा देना पड़ेगा। अब अनलिमिटेड वाले जमाने में जो हम सब हैं, तो इसमें ऐसा सोचना या यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, बट सच तो सच ही है ना। तो मैं कहां थी, मैं थी लव स्टोरीज पर। तो भाई एक जमाना ऐसा था जबकि फोन पर लोग यूं ही रॉन्ग नंबर खेला करते थे, घंटी बजी और फिर जो इंसिडेंट्स होते थे बड़े लेजेंडरी होते थे। हेलो, रमेश है? नहीं, यहां कोई रमेश नहीं रहता। पूजा? नहीं, पूजा भी नहीं। अच्छा, तो अपना ही नाम बता दीजिए। कितनी बार फोन पर ही फोन फ्रेंडशिप हो जाती थी और दिल भी मिल जाते थे, और दिल मिलने के बाद में तो बस आप समझते हैं। एंड यस, मोबाइल फोन की जो मैं बात कर रही हूँ ना, इस पर भी शुरुआत में होती थी कोड लैंग्वेज। एक बार मिस्ड कॉल दी मतलब मैं पहुंच गया, दो बार मिस्ड कॉल दी यानी कि मैं बड़ा मिस कर रहा हूं, तीन बार मिस कॉल दी तो भाई बाहर आ जाओ। मिस कॉल का भी वो एक अलग ही जमाना हुआ करता था। और भाई ये रॉन्ग नंबर, मतलब आज के टाइम तो हम खट से नंबर्स को ब्लॉक करते हैं, लेकिन उस वक्त फोन की घंटी बजती थी तो लगता था कि अब अगले बंदे ने फोन किया है, उसका बिल जा रहा है, तो चलो बात कर ही लिया जाए। तो आजकल के ये जो टिंडर और बम्बल वगैरह है ना, उनसे ज्यादा काम आया करता था वो लैंडलाइन फोन दिलों को मिलाने में।

0: 9:27 और ठीक 27 सेकेंड्स आप हैं ज्योति के साथ इन द प्रोग्राम सतरंगी दुनिया
1: तुम्हारे।
0: और आज 17th May यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे पर ज्योति बात कर रही है दूर संचार यानी कि फोन से जुड़ी हुई कुछ एक ट्रिंग ट्रिंग यानी इंटरेस्टिंग बातें। कहते हैं ना कि जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है हम भी बदलते जाते हैं। पहले जो चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं बाद में एकदम ऐसी हो जाती है कि हमें लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बातें हैं ना। एक वक्त था जबकि हमारे पास फोन्स स्मार्ट नहीं हुआ करते थे लेकिन हमारी खुशियां बड़ी स्मार्ट थी। फोन में सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट क्या था जब मोबाइल फोन आ गया था वही स्नेक वाला गेम। और अगर खुद की पसंद की रिंगटोन डाउनलोड कर ली तब तो भाई वाह पूछो ही मत। फोन उस वक्त के इतने मजबूत हुआ करते थे कि अगर हाथ से गिर भी गए तो फोन को तो कुछ नहीं हो सकता था। बस डर ये लगता था कि कहीं कॉन्टैक्ट्स मिट ना जाए। और आज के वक्त क्या कहा जाए, फोन स्मार्ट हो गए हैं बातचीतें शॉर्ट हो गई हैं। अब हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि हमें किसी को फोन ना करना पड़े। घर में हर इंसान के पास 3-3, 4-4 कनेक्शंस हैं, लेकिन दिल उनका कनेक्शन कहीं पर थोड़ा सा तो कमजोर हो गया है। इसलिए जहां मोहल्ले में एक फोन हुआ करता था और उस पर इतने कॉल आया करते थे याद है ना, वहां अब हम सबके पास फोन है लेकिन फिर भी ना हमें कॉल आते हैं ना हम कॉल करते हैं। एक वो भी वक्त था जबकि मौका निकाल कर हम पीसी हो जाते थे और डायरी से फोन देख देख कर रिश्तेदारों को दुआ सलाम करते थे, हैप्पी दिवाली हैप्पी होली बोला करते थे, उनके हालचाल लेते थे। और अब बस एक मैसेज भेज दिया और उसके बाद खुद भी भूल गए कि हमने मैसेज किया भी था। होता है ना। तो क्या कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ कि फोन कनेक्शंस बढ़ रहे हैं लेकिन दिल का कनेक्ट कम होता जा रहा है। चलिए इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है, बस अभी हम यही कह सकते हैं कि कुछ भी हो कैसे भी हो वक्त के संग तो बदलना पड़ता है, बट ये जो कनेक्शन है वो किसी भी हालत में वीक ना हो तो अच्छा है ना। आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको एक ऐसा गाना जो मुझे बड़ा पसंद है। तो अगर आप अभी लगातार थिरक रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए। ऐसे भी अब आपका फोन क्या नहीं है,

अब ये टीवी भी है, कैलकुलेटर भी है, रेडियो भी है, आपको इंटरनेट की दुनिया में ले जाने का साधन भी है। तो सीधी सी बात है, व्हाट नॉट, है ना?

भाई वो जमाना था जबकि जिनके घर फोन होते थे उनका स्टाइल ही थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा जुदा हुआ करता था। संध्या त्रिगुनी का ईमेल आया है, वो लिख रही है कि पहले

बहुत कम फोन हुआ करते थे, बहुत कम घरों में भी फोन हुआ करते थे। तो 1982 की बात कर रही हूँ जब मेरी बहन का रोका होने को हुआ और उन्होंने एड्रेस पूछा, मतलब ससुराल वालों ने बहन के एड्रेस पूछा, तो पिताजी ने कह दिया कि जब आप कॉल में एंटर करिएगा केवल आप ये देखिएगा कि फोन का वायर किस घर में जा रहा है, जिस घर में जा रहा है वही घर हमारा है। भाई वाह। एंड यस, जीपीएस की उस वक्त कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, कभी कभी लगता है ना कि जब जीपीएस नहीं था तो हम कैसे किसी भी नई जगह पर पहुंच जाते होंगे, है ना। यही होता है, वही टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे आदत डाल लेती है कि समझ ही नहीं आता कि उसके बिना हम सर्वाइव कैसे करते थे। वीके गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता, गुलाब गोकर्ण नाथ से लिख रहे हैं कि तब फोन ऐसे होते जिन्हें थे जिनमें डायल करना पड़ता था। यस, क्र क्र की आवाज आती थी फोन मिलाते टाइम और फोन मिल जाने के बाद ट्रिंग ट्रिंग। आगे इन्होंने लिखा है, विश्व दूर संचार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, काफी कुछ नया जानने को मिला आज के दिन। जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मोहब्बत से।

0: 10 out of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल ओके देन।
0: पर एक अलग में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जी हाँ, जिंदगी के सभी रंग FM रेनबो के संग धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप। 4:55 का वक्त और यूथ वेव सुन रहे हैं आप। यूथ वेव में बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर फ्रॉड से कैसे आपको बचाया जाए, साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको बताया जाए। तो चलते चलते बस यही कहूँगा कि अपना पूरा ख्याल रखें और हम सभी मोबाइल, लैपटॉप और कहते हैं ना कि पूरी तरह चारों तरफ डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं और बहुत सारे फ्रॉड्स, बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं। करना सिर्फ आपको कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको किसी लालच में नहीं पड़ना है, किसी से भी नहीं डरना है, जब किया ही नहीं तो डरना क्या, और बस अपना पूरा ख्याल रखिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। समाचार और उसके बाद एक विशेष कार्यक्रम के बाद प्रोग्राम लेकर आऊँगा FM टॉप 10। फिलहाल के लिए ऐसा जादू डाला रहे।

नमस्कार, 5 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एक निजी समाचार पत्र से बातचीत में श्री जोशी ने बताया कि कुल बिजली मांग का करीब 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा पहले से ज़्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार हो गया है। उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षण गृह NTH की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से MSME निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली फुटवेयर परीक्षण सेवाएँ मिल सकेंगी। मंत्रालय के अनुसार यह सुविधा तेजी से बढ़ रहे फुटवेयर क्षेत्र के लिए देश की गुणवत्ता जांच व्यवस्था को और मजबूत करेगी। वाराणसी में ग्रीन आर्मी से जुड़ी 50 महिलाओं को मिशन शक्ति से जोड़ा जाएगा। महिलाएं समाज में नशाबंदी, जुआखोरी और छोटे अपराधों पर अंकुश लगाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। DCP वरुणा जोन मोद ने यह जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी से सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और समस्याओं के समाधान के लिए मिशन शक्ति केंद्रों का सुझाव भी दिया, जहां नियमित रूप से क्षेत्र की महिलाएं अपनी समस्याएं रख सकें और उन्हें समय पर सहायता मिल सके। हमीरपुर में मौदहा थाना क्षेत्र के छिरका गांव के पास कानपुर सागर हाईवे पर खड़े ट्रक में कार की टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौदहा थाना प्रभारी ने बताया कि कानपुर निवासी बागेश्वर से दर्शन कर वापस जा रहे थे। मृतकों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में अलीगढ़, बुलंदशहर, संभल तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। वहीं गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ और गाजियाबाद तथा आसपास के इलाकों में भी बादल गरजने, आकाशीय बिजली के साथ साथ आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: और आइए अब सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संकट से निपटने के लिए देशवासियों से की गई अपील और उसके प्रभाव पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट।
2: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा

0: शिक्षा और आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। परिणाम स्वरूप तेल की आपूर्ति में रुकावट के कारण LPG, पेट्रोल, डीजल समेत अन्य वस्तुओं की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। इस संकट के दीर्घकालिक प्रभाव से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सामने इस संकट ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
1: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जो क्षेत्र युद्ध से प्रभावित रहे हैं, उन देशों के साथ हमारा व्यापार का महत्वपूर्ण रिश्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। देश अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए 60% LPG आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने LPG के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही LPG के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया।
1: पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने नागरिकों से 7 अपील की हैं। इनमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग न करने, विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास के अभ्यास को फिर से लागू करना शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने, विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने की अपील की है। नागरिकों से खाने के तेल के उपभोग में कमी करने और किसानों से विदेश से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी करने को कहा है। वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता भारत के लिए आवश्यक है।
1: साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरते, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं।
0: ऊर्जा बचत के क्रम में प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। श्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो, बिना कोई नई कार खरीदे उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए जाएं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर राज्यों में भी ईंधन संरक्षण को लेकर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया है। साथ ही वर्चुअल बैठकों और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री सप्ताह में एक निर्धारित दिन मेट्रो, बस, ई रिक्शा, कार पूलिंग या साइकिल जैसी सुविधाओं का उपयोग करें, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और आम जन भी इससे प्रेरणा लें।
2: जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की या शटल बस की सेवा सिटी के अंदर है, और अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीने तक प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्राओं से परहेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने LPG सिलेंडर के स्थान पर PNG कनेक्शन को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव तत्काल किए जाएं। श्री योगी ने प्रदेशवासियों से वैकल्पिक ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने गौशालाओं के जरिए गोबर गैस प्लांट लगाने और सामुदायिक रसोई चलाने जैसे उपायों को बढ़ावा

0: देने पर भी जोर दिया है।
1: मैं उत्तर प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि गांव में उन गौशालाओं के पास जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा संचालित, क्या हम उन गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट लगा करके और गांव की सामूहिक किचन की व्यवस्था एक साथ कर सकते हैं। गांव के लोग अपना अपना राशन लेकर के दें, एक साथ मिलकर के करें, सामूहिकता का परिचय दें। मुझे लगता है ये एक राष्ट्रीय कार्य हो सकता है।
0: मुख्यमंत्री ने 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनाने पर भी बल दिया है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश सरकार के कई मंत्री और अधिकारी ई रिक्शा और साइकिल से कार्यालय पहुंचकर ऊर्जा बचत में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से लेते हुए लोगों ने इस दूरदर्शिता की सराहना की है। अयोध्या में नगर निगम ने इस अपील पर अमल करते हुए हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग के जरिए कार्यालय आने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि ये पहल ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण और प्रधानमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
2: डोर टू डोर कलेक्शन में जो भी वाहन लगे हैं उसमें ज्यादातर वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चले, और इसके अतिरिक्त जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं सबसे कहा गया है कि वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हुए, कारपूलिंग का प्रयोग करते हुए ऑफिस आएं। और माननीय महापौर जी के आह्वान पर सभी के लिए कहा गया है कि सभी हमारे माननीय पार्षद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही निगम में आएंगे। हर आम जनमानस से भी आह्वान है कि अपना छोटा छोटा योगदान इस कार्य में।
0: आम जनता में भी प्रधानमंत्री की अपील को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। गाजियाबाद के अमित सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सही समय पर जनहित में लोगों को सतर्क किया है, जो एक सकारात्मक कदम है।
3: एक बहुत बड़ा युद्ध होने के कारण ऐसा माहौल बना हुआ है कि आने वाले समय में हमें शायद जो ऊर्जा है, जो हमारे ईंधन है, जो हमारी गैसें हैं, जो हमारी अन्य चीजें हैं, वो महंगी हो सकती हैं। तो उस महंगाई से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक सही अपील की है कि हम सब लोगों को आगामी आने वाले खतरे को देखते हुए हम लोगों को इन खर्चों में अपनी कटौती करनी चाहिए।
0: इस संकट से निपटने के लिए भारत प्रभावी कदम उठा रहा है। बीते 11 वर्षों में देश में एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, साथ ही कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी गई है। युद्ध के कारण बने हालात से निपटने के लिए सरकार और आम जनमानस का साझा प्रयास देश की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।
4: विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संकट से निपटने के लिए देशवासियों से की गई अपील और उसके प्रभाव पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट।
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर फिर रात को फुर्सत के वो पल
6: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
5: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
7: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
8: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
7: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
9: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
10: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी।
11: और वह एक विशेष कार्यक्रम के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। सुन रहे हैं आप सर्वेश जायसवाल आज आपके साथ और FM टॉप 10 लेकर आ गया हूँ। और हमें फिल्मों के साथ साथ फिल्मी म्यूजिक का भी शौक होता है ना, और FM रेनबो आप इसीलिए सुनते हैं कि फिल्मी म्यूजिक आप पसंद करते हैं। तरह तरह के गाने, नए पुराने बहुत सारे। बॉलीवुड फिल्में हमारी जान होती हैं तो वहीं इसके गाने हमारी लाइफलाइन होते हैं। आज FM टॉप 10 में हम बॉलीवुड की ऐसी ही फिल्मों का जिक्र करेंगे जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप रहीं लेकिन म्यूजिकली हिट थीं। 90 के दशक में आज की फिल्म के गानों ने तहलका मचा दिया था। आज भी आज की फिल्म के गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं लेकिन महेश भट्ट साहब की ये फिल्म बॉक्स

जी हाँ, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए और म्यूज़िक के लिए आपको चाहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, जैसे आप सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक एंजॉय करते हैं और बहुत सारे गाने हम आपके लिए प्ले करते हैं। और आज FM टॉप 10 में हम उन्हीं गानों की बात कर रहे हैं जिनकी जो फिल्में तो नहीं चली लेकिन गाने सुपर डुपर हिट रहे। साल 2000 की बात करें, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी, फिल्म तो फ्लॉप रही, जेपी दत्ता साहब लेकर आए थे, लेकिन इसके गाने सुनने वालों को बहुत पसंद आए। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके।

जी हाँ, साल 2003 की फिल्म झनकार बीट्स, और इस फिल्म के बारे में आज भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, है ना। लेकिन इनके जो गाने इतने हिट हुए थे उसको आज भी हम याद करते हैं। उसी फिल्म का एक गाना, म्यूजिकल हिट थी ये झनकार बीट्स फिल्म, तू आशिकी है।

2013 में आई फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में शाहिद कपूर और इलियाना थी। हालांकि फिल्म की कहानी और इन दोनों हीरो हीरोइन की एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन ये गाना, जी हाँ, मैं रंग शरबतों का तो मीठे घाट का पानी।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: जी खड़े में ठीक 5:30 हुए हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं आप FM टॉप 10 सर्वेश जायसवाल के साथ और बात कर रहा हूँ उन फ्लॉप फिल्मों की और उन फ्लॉप फिल्मों में जो म्यूजिक हिट था सुपर हिट था उन गानों को आज हाथ तक लेकर आया हूँ। अर्जुन रामपाल रणबीर कपूर और जैकलिन फर्नांडीज स्टारर फिल्म रॉय बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी लेकिन इसके गाने काफ़ी पॉपुलर हुए थे उनमें से एक चिड़िया कलाइयाँ।

जी हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ स्टार फिल्म बार बार देखो, लेकिन इसको किसी ने भी नहीं देखा इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन इस फिल्म के गानों ने कमाल कर दिया था। काला चश्मा, सुनिए गाना।

और आपसे बात करते करते वक्त कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। 5:37 का वक्त हो चुका है, 6 बजे प्रोग्राम शाम और लेकर आऊँगा और उसके बाद 7 बजे प्रोग्राम हेलो एफएम। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, संडे का दिन है, एंजॉय करने का दिन है, वीकेंड का दिन है। अवध की शाम वैसे भी बहुत अच्छी होती है ना। 2015 में आई इम्तियाज़ अली साहब की फिल्म, रोमांटिक फिल्म थी और इसमें कौन थे याद है ना आपको, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। लेकिन ये भी भाई फिल्म लोगों को बहुत पसंद नहीं आई। कौन सी फिल्म, फिल्म का नाम ही था तमाशा, लेकिन ये गाना पहुंच रहा ना आप तक, समझ गए ना, ये गाना बहुत हिट हुआ था, आज भी अच्छा लगता है।

जी हाँ, इसमें सिग्नेचर ट्यून से कुछ याद आया, बरसात मूवी सन 1995, बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना की बॉलीवुड में एंट्री हो रही थी, लेकिन इस बरसात से बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। ये फिल्म बहुत नहीं चली, राजकुमार संतोषी साहब ने इसे डायरेक्ट किया, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म बहुत लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन इसके गाने क्या बात है।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घड़ी में 5:50 हो चुके हैं।
1: देखा सनम,
0: बिल्कुल आपने देखा होगा, लेकिन इस फिल्म को बहुत लोगों ने नहीं देखा। इस फिल्म के गाने बहुत सुने गए। द गवर्निंग पैशन 1999 आई ये फिल्म, जिसमें अक्षय खन्ना और सोनाली बेंद्रे थी। और इसका जो कहते हैं ना कि स्टोरी लाइन थी, वो एक इंटरकास्ट मैरिज को लेकर बनाया गया था, लेकिन ये जो कहानी थी ना लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन ये गाने बहुत समझ में आए। और ये गाना आज भी आप जब सुनते हैं 90s की याद दिलाता है। तो सुनते रहिए FM टॉप 10 सर्वेश के साथ। एक और गाना है जो फिल्म नहीं चली थी लेकिन गाना बहुत चला था, बताऊंगा, लेकिन अभी का वक्त इस गाने को सुनने का है।

0: सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: घड़ी में 5:56 हो चुके हैं। जाते जाते एक और फिल्म के बारे में बताऊंगा, खामोशी। इसका नाम ही खामोशी था और बिल्कुल खामोश रही है बॉक्स ऑफिस पर। और इस फिल्म में सलमान खान, मनीषा कोइराला, नाना पाटेकर, सीमा विश्वास और हेलन ने भी भूमिका निभाई थी। संजय लीला भंसाली ने निर्देशन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म नहीं चली। लेकिन ये गाना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे।

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक के कैशलेस चिकित्सा का लाभ देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में बेसिक शिक्षा में कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। जब सरकार साफ नीयत स्पष्ट नीति से काम करती है तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है। यही कारण है कि प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट 18% से घटकर 3% हो गया है। उन्होंने कहा कि जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस मौके पर गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि हमारी सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है, सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। मंत्री संजय गंगवार ने कहा कि जनपद में 1,985 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल प्राप्त कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA अहमदाबाद में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी फैजान शेख उर्फ फैजान सलमानी के मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह रामपुर की तहसील स्वार पहुंची, जहां NIA ने फैजान और उसके दोस्त के घर में छापेमारी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान फैजान के परिवार से कई घंटों तक कड़ी पूछताछ की गई। वहीं जाँच टीम फैजान और उसके दोस्त मुकीम के बीच के करीबी रिश्तों को देखते हुए दोनों के कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और पुराने संपर्कों को भी तलाश रही है। फतेहपुर जिले के ललोली थाना क्षेत्र में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य दो को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होने देने की संभावना जताई है। विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे सुना जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद और मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा और बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
6: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
5: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
6: ओनली 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ, बोरियत को करिएगा ऑन क्योंकि प्रोग्राम लेकर आ चुका हूँ और प्रोग्राम हो चुका है ऑन शाम आवाद। तो भाई लखनऊ वालों, एक हफ्ते में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा और शहर में पछुआ हवाओं का जो असर है ना, गर्माहट का जो असर है वो साफ दिख रहा है। कल के टेम्परेचर की अगर बात करें तो 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया था और मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश में पारा जो है ना 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। तो भाई अपना पूरा ख्याल रखिए, ऐसा ना हो कि फिर से आप लापरवाही बरतने लगे, क्योंकि ऐसा हुआ ना, मई का जो महीना शुरू हुआ और कहने को तो जेठ का महीना शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ बारिश, आंधी और ठंडा भी लग रहा था। कभी कभी लग रहा था सावन चल रहा है, कभी कभी ये भी लग रहा था कि दिवाली से पहले का मौसम चल रहा है, लेकिन वो सब फसाना था। हकीकत यह है कि जेठ का महीना चल रहा है, तो भाई अपना असर तो दिखाएगा ना। तो बिल्कुल अपना पूरा ख्याल रखें, अगर बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉपर हाइड्रेटेड होकर निकलें, पानी की बॉटल साथ में रखें, अपने को कवर रखें और बस सुनते रहें 100.7 FM रेनबो। क्योंकि आप कहते हैं ना, FM रेनबो के बारे में क्या कहते हैं, चलिए हम बताते हैं।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: हेलो FM,
3: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
4: What is mobile number? What is your smile number?
5: What is your style number? करो क्या dial number?
6: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
7: जी हाँ, हेलो FM प्रोग्राम लेकर आया हूँ ठीक 7 बजे। लेकिन अभी का जो वक्त है, शाम में अवध की बात हो रही है, अवध की शाम की बात हो रही है। और जब भाई रविवार का दिन होता है ना, तो अवध की शाम और भी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि जब फुर्सत होती है तो शाम भी बड़ी अच्छी लगती है ना। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपडेट्स मिलती रहनी चाहिए कि लखनऊ शहर में क्या कुछ चल रहा है, इन फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। तो चलिए, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि CSIR यानी कि राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान NBRI पर्यावरण संरक्षण और बागवानी में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं ना, उनके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है। 4 और 5 जून को कंजर्वेशन हॉर्टिकल्चर पर 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाएगा। इस बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लिए, 0522 22 07 9 6 3। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 0522 22 07 9 6 3, 0522 22 07 9 6 3। खूबसूरत सगाना फ्रॉम द मूवी जानशीन।

तो भाई शाम के बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि शहर के ट्रैफिक के क्या हाल चाल हैं, क्योंकि संडे का दिन है और आज आईपीएल मैच भी नहीं है, तो ट्रैफिक जो है ना अमूमन बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर भी अगर आप कहीं पर आपको लगता है कि ट्रैफिक सही नहीं है और आप बाहर हैं तो हमें मेल करके बता सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर, है ना। फिलहाल हुआ है आज पहली बार फ्रॉम द मूवी सनम रे।

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
3: पुरानी जींस और गिटार,
2: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
4: है रते आशिकी जगा,
2: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
5: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जी हाँ, एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, धड़कन लखनऊ की। 6:33 का वक्त, शाम में बहुत प्रोग्राम चल रहा है और आपको बता दूं कि आज से पुरुषोत्तम मास व मलमास लग गया है, तो भाई 15 जून तक शादी बारात का जो माहौल है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, उन पर ब्रेक लग गया है। लेकिन कहते हैं ना कि बाकी कार्यक्रम चलते रहेंगे। और लखनऊ की बात करें तो भाई

जी हाँ, तो अपने यूपी में भी कहते हैं ना कि वीक में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया है, और जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर ये बात आ रही है कि दो दिन वर्क फ्रॉम होम, तो बढ़िया ना। गर्मियों का मौसम चल रहा है और आप घर में बैठे हुए हैं, वहीं से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या है। फिलहाल रश के कमर।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: हेलो FM,
3: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
4: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
5: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
6: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
7: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
6: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
7: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
6: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
7: जरीदार जलवे जवा अंजुमन,
6: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम।
7: आओ कि लखनऊ

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

छः बजकर 54 मिनट का वक्त, और ये वक्त है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि 7 बजे प्रोग्राम लेकर आऊँगा हेलो एफएम। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने 30 जून तक सभी म्यूज़ियम में सभी के लिए एंट्री फ्री कर दी है। तो अगर आप कभी फुर्सत में हो, कोई म्यूज़ियम देखना चाहें, तो बिल्कुल भी आपको टिकट देना नहीं पड़ेगा। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, आता हूँ समाचारों के उस पार। प्रोग्राम हेलो एफएम लेकर।

में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने 30 जून तक सभी म्यूजियम में सभी के लिए एंट्री फ्री कर दी है। तो अगर आप कभी फुर्सत में हो, कोई म्यूजियम देखना चाहें, तो बिल्कुल भी आपको टिकट देना नहीं पड़ेगा। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, आता हूँ समाचारों के उस पार। प्रोग्राम हेलो एफएम लेकर।

नमस्कार। अब सुनिए यूपी की दिन भर की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अनुदेशकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के सहजनवा में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रवाद के भाव से आचरण ही भाजपा कार्यकर्ता की पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और किसी भी मत तथा मजहब से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किया। उन्होंने कहा कि सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है, हमारी सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों के साथ पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मऊ के मधुबन पदारथपुर में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 61 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ नगर निगम द्वारा आज जिला अदालत और कलेक्ट्रेट के पास बने करीब 240 अवैध चैम्बर और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस दौरान वकीलों ने कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में की और अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया। इटावा के जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने एक जनपद एक नदी योजना के तहत 53 किलोमीटर लंबी सिरसा नदी के पुनरुद्धार के निर्देश दिए हैं। आगामी 1 जून से इस पर काम शुरू होगा। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए 2 पालियों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। दोनों पालियों को मिलाकर 4,238 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए। प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य लोग घायल हो गए। फतेहपुर में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र में 4 और शाहजहांपुर के कांट इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी हाँ बिल्कुल, बोरियत को करिए गौन, और गौन करने के लिए आपको करना क्या होगा, 0522 22 38 842 और 22 38 842 नंबर मिलाने हैं, और जब समाचार हम पढ़ रहे होते हैं उसी दौरान हमसे कोई ना कोई जुड़ जाता है, क्योंकि आपकी मोहब्बत एफ एम रेनबो के लिए, स्पेशली हेलो एफ एम के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं? हेलो
1: जी सर।
0: जी अपना नाम बताएं।
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे
0: हैं।
1: और बताइए सर, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप अपने हालचाल बताइए कैसी हैं?
1: हमारे हालचाल बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके हम और अच्छे हो गए। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: वाह, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
1: तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना।

0: सारा सनम।
1: नहीं ये तो पता चलता है क्योंकि
0: वाला नंबर नहीं चालू है, हमारे भाई अपने भाई बहनों से बता रहे हैं 2982377।
1: ओके ऐसा ये नंबर चालू हो गया। चलिए हमारे श्रोता इतने बढ़िया हैं कि हमको करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अपडेट रहना चाहिए।
0: 77 वाले पे कॉल किया है।
1: चलिए ये लाइन कभी कभी डिस्टर्ब लाइन। जी जी जी जी जी अच्छा ये बताइए आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: तेरे नाम ने किया है जीवन अपना सारा सनम, और गाना डेडिकेट करना चाहते
1: हैं। बिल्कुल जल्दी से नाम लीजिए।
0: सबसे पहले आपको
1: क्या बात है?
0: बागवंत मोहम्मद भाई, सिराजुद्दीन भाई, मोहम्मद अमीन भाई, बबलू यादव भाई
1: जी,
0: आसिफ भाई, गुलाब साप्ती, साहबान सारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम, महक अंसारी, और वकील अहमद भाई, सत्यम कुमार भाई, विनीत भाई और जावेद अख्तर भाई।
1: क्या बात है, और कोई? बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

जी, अगर आपने भी जीवन अपना सारा एफएम रेनबो के को समर्पित किया है, बहुत सुनना चाहते हैं और सुनते हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिए। और एक और नंबर हमारा चालू हो गया है 2982-377, क्योंकि हमारे लिसनर्स फ़ोन मिलाते रहते हैं और उनको पता रहता है। तो 0522-2738-845, 2238-852 और 2982-377, ये नंबर मिला के आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: सात बजकर दस मिनट का वक्त हो चुका है। हेलो एफएम सुन रहे हैं आप और बराबर हमें कॉल कर रहे हैं 0522 2338 842 0522 2338 842 और 2982 3770 ये नंबर्स हैं। इन पर आप जल्दी से कॉल कीजिए और हमसे जुड़िए, अपनी पसंद का गाना सुनिए और कुछ आप कहिए, कुछ हम सुने, कुछ हम कहें, कुछ आप सुनिए। हेलो।
3: हेलो सर, नमस्ते, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग, कैसी हैं आप?
3: सर हम बहुत अच्छे हैं और एकदम मस्त और झक्कौआ
2: हैं। झक्कौआ टंटना हुआ है ना सब है। और बताइए क्या हाल चाल है, नाम तो बताइए सुनने वालों को।
3: हाल चाल तो सर एकदम बेकार है, क्योंकि सर कॉल लगाते लगाते हम थक जाते।
2: देखिए अब ये मत कहिए, देखिए दूसरी कॉल आपकी लगी है, मतलब आप तो खुश हो जाइए।
3: जी सर, काफी अंतराल के बाद आपसे बात हो रही, बहुत अच्छा लगा। और सर हम अपना परिचय तो देते।
2: वही तो मैं कह रहा हूँ, अपना नाम बताइए।
3: जी सर्वेश सर की दो दीवानियाँ, नाम है रिंकी और पिंकी, दीवानों के शहर जिला रायबरेली से बात कर रही।
2: क्या बात है, एफएम रेनबो की दीवानियाँ, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं।
3: जी बिल्कुल सर रेनबो की दीवानियाँ है, तभी तो सर हम लोगों को रेडियो का इतना भूत चढ़ा है कि सर घर पे इतनी डांट पड़ती है कि सर पूछो मत।
2: अच्छा कोई नहीं, हम नहीं पूछेंगे। गाना कौन सा सुनना चाहेंगे वो पूछेंगे।
3: जी सर, मूवी का नाम तो नहीं पता है, सॉन्ग के बोल है बरसों के बाद बांधी है आज पायल।
2: मूवी का नाम है अब इंसाफ होगा।
3: जी सर,
2: अब मूवी का नाम है अब इंसाफ होगा।
3: जी जी सर, क्योंकि सर मैं सॉन्ग अक्सर सुनती रहती, मूवी अभी इस टाइम नहीं देख पा रही, नहीं समय नहीं मिला।
2: कोई नहीं, उसके लिए एफएम रेनबो है ना, धड़कन लखनऊ की। और किसी को सुनवाना चाहेंगी?
3: सुनते रहते, रेडियो सुनने का हमें बहुत शौक है और इसका क्रेडिट हमारी बड़ी वाली दीदी।
2: क्या बात है। तो आज किसी को सुनवाना चाहेंगी?
3: बहन से भी थोड़ी सी बात।
2: हाँ जल्दी से बात करिए, गाना मैंने लगा। नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके?
4: सर एकदम मस्त और जबरदस्त है, आप कैसे हैं?
2: वाह, मैं भी जबरदस्त और मस्त हूँ।
4: जी सर,
2: और ये गाना आपको लग गया है, बरसों के बाद मैंने बांधी है आज पैर।
3: और सर गाना डेडिकेट कर दें।
2: जल्दी से कर दीजिए।
3: जी सर, सबसे पहले तो आपको और हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं पूनम दीदी कानपुर से, गुंजन तिवारी, समा परवीन, साहिब अंसारी, सुरभि सिंह और ममता दीदी और सुषमा दीदी और नीलम वर्मा है बच्चावा से, और तिवारी अंकल, हरिकेश भाई, बाकी जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को, और वकील अहमद भाई हैं उनको।
2: क्या बात है।
4: नमस्ते सर।
2: नमस्ते जी,
3: नमस्ते सर भाई। और सर विविध भारती पर भी कभी आया करो।
2: आपने सुना नहीं, कल हम विविध भारती पर भी थे।
3: सर, आप तो वहां का रास्ता ही भूल गए, हमें लगता सर आपको जबरदस्ती लाना पड़ेगा।
2: नहीं नहीं नहीं, हम आ जाएंगे, जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: हम लोग
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: घड़ी में 7:15 का वक्त हो चुका है। कोई है जो हमसे जुड़ चुके हैं? हेलो,
1: रास्ता ये एतबार का मोड़ा तो जाएगा, रास्ता ये एतबार का मोड़ा तो जाएगा, हमको किसी मुकाम पर छोड़ा तो जाएगा। अपनों से टूट जाए या गैरों के हाथ से, अपनों से टूट जाए या गैरों के हाथ से,
0: ओके,
1: टूटने की चीज है तोड़ा तो जाएगा।
0: ओहो,
1: टूटने की चीज है तोड़ा तो जाएगा।
0: लेकिन एफएम रेनबो दिल जोड़ता है। हेलो एफएम प्रोग्राम के माध्यम से अपना नाम बताएं।
1: अकबर अंसारी बोल रहे हैं, विलेज चौखंडी,
0: डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से। क्या हाल चाल है आपके?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, आप सबकी दुआओं से हम बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे
0: जी, और बिल्कुल।
1: जितने भी सभी सुनने वाले हैं वो भी अच्छे होंगे।
0: तो सुनने वालों को आज कौन सा गाना सुनवाना चाह रहे हैं?
1: फिल्म का नाम तो हमें ध्यान में नहीं आ रहा, शायद जोश मूवी है, पता नहीं कौन सी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: जिस हारे हारे
0: जिस
1: तो दिल से
0: जिस जोश से आपने शायरी सुनाई उसी जोश फिल्म से गाना है। तो चला दो ये गाना।
1: प्रोग्राम अच्छा, कई दिनों के बाद हमने कॉल भी की है।
0: जी जी जी,
1: कॉल करके
0: तो किसी को सुनवाना चाहेंगे? जल्दी से नाम ले लीजिए क्योंकि समाचार शुरू होने वाले हैं।
1: जी हमारे दोस्त हैं मोहम्मद तालिब, मोहम्मद आसिफ
0: जी,
1: और समा परवीन जी हैं जो अभी कॉल की हुई थी, और साहिबा जी हैं, और बाकी सभी सुनने वाले हैं, यासिर हमीद जी हैं और निशा अंसारी जी।
0: ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: से केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले

0: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें।
1: लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 30 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मजबूत इमारत नहीं बन सकती। इसीलिए सरकार का मानना है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और बेसिक शिक्षकों के मानदेय से जुड़े मामलों को सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए। श्री योगी ने ये बात आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमा किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और सकारात्मक कदम से बेसिक शिक्षा में कायाकल्प हुआ है। सरकार की मंशा है जब हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
2: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना है। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। वो आज गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के क्रम में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर केंद्रित इस सत्र में श्री योगी ने कहा कि स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। श्री योगी ने केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है, जिससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
3: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जिन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने के अभियान का क्रम है।
1: श्री योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन शुक्ल, पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। इस अवसर पर श्री योगी ने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया है। उधर मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां मकानों की सूची तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।

0: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधा और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने आज पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। श्री गंगवार ने कहा कि जनपद में 1,985 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
2: मोदी योगी सरकार बड़े बड़े भाषण घोषणाओं में यकीन नहीं करती और जो घोषणा करती भी है वो धरातल पे, जमीन पे, गांव पे लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और उन योजनाओं को, खासतौर से स्वास्थ्य की सेवाओं को धरातल पे पहुंचाने में आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
1: गाजियाबाद स्थित एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई, निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और अच्छी क्वालिटी वाले फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मथुरा समेत समूचे ब्रज मंडल में आज से एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहू और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में बांटकर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
1: प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए हैं। फतेहपुर जिले में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में दुर्घटना होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। उधर शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जारी रहने और कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बांदा, चंदौली, चित्रकूट, उन्नाव और वाराणसी में कल भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मानसून के 18 जून को दस्तक देने की संभावना जताई गई है। इस साल मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा होने का भी पूरा अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अनुदेशकों को 5,00,000 तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत।

0: फतेहपुर में नदी में डूबने से चार युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जी धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप, हेलो एफएम सुन रहे हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। 7:31 का वक्त और जल्दी से हमें कॉल करें, सीधे जुड़ जाएं। नंबर से एक बार फिर से बता दूं या याद हो चुके हैं? 0522-2238-845 और 2982-377। ये नंबर जल्दी से मिलाइए और हमसे जुड़ जाइए। फिलहाल समाचारों के दौरान किसी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हेलो
3: हेलो, नमस्ते सर, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आपके? अपना नाम बताएं पहले तो।
3: हमार बढ़िया है सर, अपना बताओ पहले।
2: आपका बढ़िया है तो हाँ, यहाँ भी सब बढ़िया बढ़िया है।
3: हम विनीत कुमार बोल रहे हैं सर।
2: तो बताएंगे तभी तो हम जानेंगे। विनीत कुमार कहाँ से बोल रहे हैं?
3: विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर।
2: जिला सीतापुर से आपने कॉल किया है और कौन सा गाना आज सुनना चाहेंगे?
3: जीत फिल्म का है, दिल का क्या करे साहिब हम उन्हीं के मरते हैं।
2: हाँ, ये दिल का कोई कुछ नहीं कर सकता है ना।
3: बहुत मतलब सपना दिया आपको बात करने की
2: जी,
3: याद करें तब फोन लगा।
2: हाँ, बहुत टाइम पहले आपसे बात हुई थी और मुझे ध्यान है आपने बात।
3: लड़का संगीत में भी भारती पर कार्यक्रम करने आए हैं
2: जी। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो
3: दोस्तों को याद करें
2: जी। बिल्कुल याद कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं
3: जी। आजाद सिमरी से हैं, हमारे रामगढ़ चीनी मिल के पास से हैं
2: जी जी।
3: उनको डेडिकेट रहेगा। और समा परवीन अंसारी सीतापुर से हैं, ओमकार भैया सीतापुर से हैं
2: जी।
3: कुमार मोर हरदोई कोठावा से हैं, फिर भी सीतापुर से हैं। सीमा रावत राजा जी पुरम लखनऊ से हैं
2: जी
3: जी सर। और नवनीत है लखनऊ से, और हरिकेश है मंत्रा लखनऊ से। और आपके लिए सर स्पेशल,
2: और सर्वेश जायसवाल भी लखनऊ से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनीत भाई, ऐसे ही मोहब्बत बरकरार रखिएगा, फोन पिलाते रहिएगा। और देखिए दिल का क्या करें साहब, आ गई हैं तब्बू जी।
3: ठीक, नमस्ते
2: नमस्ते जी।

0: जी हाँ, आप अपने दिल का क्या करेंगे इसका उपाय तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आप अपने फोन का क्या करेंगे वो बता सकते हैं। 0522-2738-845 मिला के जल्दी से हमसे बात कर सकते हैं ना, करेंगे ना बात, तो जल्दी से फोन उठाइए ना। 7:37 का वक्त अभी भी आपके पास पूरा टाइम है हमसे बात करने का, FM रेनबो से बात करने का और लखनऊ की धड़कन से बात करने का। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर जी।
0: कहाँ खो गए थे साहब, अपना नाम बताएं।
1: जी हम खोए नहीं थे सर जी, हम इंतजार कर रहे थे और गाना एंजॉय कर रहे थे।
0: ओहो, दिल का क्या करें साहब। और आप अगला गाना कौन सा सुना? गाना बढ़िया था ना
1: जी, गाना बहुत बढ़िया।
0: आप लोग गाने बढ़िया चुनते हो तो मजा आ जाता है सुनने के बाद।
1: जी जैसे म्यूजिक होती है वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आज कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे आप
1: जी? हम तो आपका सुरूर मूवी का सुनेंगे, नाम है तेरा तेरा, हिमेश रेशमिया भाई साहब का। लेकिन उससे पहले अपना नाम हम परिचय करा दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, हम मोहम्मद तालिब अंसारी बोल रहे हैं, राजा कटरा बाराबंकी से।
0: बाराबंकी से
1: जी। काफी देर से फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन सर जी जैसे ही फोन लगते सर जी इतना अच्छा लगता है सर जी, मजा आ जाता है।
0: मजा आ जाता है
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये मजा अपने तक ही रखिएगा, वरना अगली बार फोन नहीं लगेगा।
1: होता है सर जी, हम लोग इतनी शिद्दत से फोन लगाते हैं।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सच कही आपने।
1: फोन लगता है सर जी बहुत अच्छा लगता है।
0: नहीं नहीं ये बात तो मानता हूँ आपकी बात। तो आपका सुरूर FM रेनबो का कितना सुरूर है आपके ऊपर?
1: जी बहुत बहुत ज्यादा है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि जब हम छोटे थे तब हम आकाशवाणी लखनऊ पे एक बाल जगत प्रोग्राम आता था, स्टूडेंट के लिए था, छोटे बच्चों के लिए।
0: हाँ, अभी भी आता
1: बहुत
0: है।
1: शुरुआत की थी, उसमें पत्र भेजते थे और वो हमको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था।
0: अच्छा, अब आप बड़े हो गए हो, अब
1: 2012 की बात है।
0: जी जी जी जी,
1: अब उसका नाम चेंज हो गया, बाल मंच के नाम।
0: जी जी जी जी, तो अब आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे, आपका सुरूर से सुनना चाहेंगे और सुनवाना किनको चाहेंगे जल्दी से बताएं।
1: जी आसिफ और साबिर और अकबर।
0: ओके बस
1: जी, बस
0: बस, और कोई तो नहीं?
1: और नहीं, और को नहीं सर जी। और नहीं, बाकी सभी लोग जिसके वहाँ तक जहाँ तक आवाज जा रही है वो लोग सुनेंगे तो है ही, सभी सुनने वाले
0: सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे।
1: और सर जी आपने फोन उठाया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: हम तो बैठे ही यहाँ पे हैं, कहते ना ड्यूटी यही कर रहे हैं कि आप फोन करें और आपका फोन जल्दी से उठा लें और आपसे बात करें, सभी सुनने वालों से बात करें जो कॉल कर रहे हैं ना। तो देखिए आपका गाना आ गया, आपका सुरूर।
1: जी थैंक यू सर जी, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते।

0: और देखिए 7:43 का वक्त हो चुका है और कोई है जो आ चुकी हैं हमसे बात करने के लिए। हेलो।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम रेहाना।
0: जी कैसी हैं रेहाना, और कहां से आपने हमें कॉल किया है?
1: हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूं और आपके फोन कॉल्स ले रहा हूं तो और अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके।
1: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, आप सबके दुआएं हैं।
0: कहां से कॉल किया आपने हमें?
1: हम लखीमपुर खीरी से।
0: लखीमपुर खीरी से, क्या करती हैं आप?
1: हम घर पे ही वर्क करते हैं, सफाई वगैरह, सिलाई है, छोटा मोटा काम।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और गाना आज कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: गाना हम सुनना चाहेंगे जब तक तुम सामने रहते हो।
0: अच्छा, FM रेनबो जब तक सामने रहता है तो मन बड़ा खुश रहता है।
1: बिल्कुल। वो क्या ना हम घर में अकेले रहते हैं, बच्चे भी हैं नहीं, तो हस्बैंड भी चले जाते तो हम पूरा दिन बस रेडियो ही सुनते रहते हैं। मेरा दूसरा साथी रेडियो
0: है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, हस्बैंड चले जाते तो समझो बच्चे तो अभी तो स्कूल बंद हो गए होंगे।
1: जी जी,
0: चलिए बहुत बढ़िया। आज गाना तो आप ये सुनना चाहती हैं, और किसी को सुनवाना चाहेंगी, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी?
1: अब डेडिकेशन तो किसी को मेरा

0: नहीं है क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं वो सभी सुन सकते
1: क्या
0: हैं।
1: बात है, तो सभी को डेडिकेशन हो गया। जी,
0: अगर हम डेलीगेटिंग करेंगे भी तो सुनेंगे तो सभी, कोई पर्सनल वो सुनेंगे नहीं।
1: ये टेक्निकल पॉइंट तो मेरे आज तक दिमाग में नहीं आया।
0: वही तो मैं अक्सर प्रोग्राम सुनती हूँ, लोग डेलीगेशन करते हैं, इतने सारे नाम लेते हैं जिसमें आधा टाइम उसी में चला जाता है। अच्छा सभी को बोल दो।
1: चलिए, जब तक तुम सामने रहते हो ये गाना आपका आ गया। और रिहाना, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे ही फोन करते रहिएगा।
0: वेलकम जी। जी जी,
1: ओहो, आज का दिन आपका स्वर्णिम दिन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल पिक की।
1: ओके ओके, वेलकम जी।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NACC द्वारा जनहित में जारी।
2: सात बजकर 48 मिनट का वक्त और वक्त धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आप नंबर मिला सकते हैं 0522-2838-52, 2238-845 और 2982-3773। देखें अभी लाइन पर कौन है। हेलो,
3: हाँ भाई साहब।
2: नमस्कार जी, अपना नाम बताएं जल्दी से।
3: नमस्कार
2: जी,
3: हम खेती बाड़ी का काम करते हैं भाई साहब।
2: बहुत अच्छा काम करते हैं आप। और अपना नाम बताएं।
3: श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव
2: से बात करना चाह रहे हैं। और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? वैसे हमने गाना लगा दिया है, अपनी तो जैसे तैसे, अपनी तो जैसे तैसे।
3: हाँ, हाँ,
2: और किसको जी जी डेडिकेट कीजिए? बहुत
3: परवीन जी है, संतोष भाई है, केश भाई है, और बाबू अंसारी भाई है, नवनीत भाई है
2: जी,
3: और आप, आपकी पूरी टीम को ओंकार भाई भी है
2: जी जी जी।
3: बस बस भाई साहब, थैंक यू।
2: और कुछ कहना चाहेंगे?
3: बस भाई साहब, और क्या कहना है, गाना को आप लगा ले हमारा।
2: देखिए हमने गाने,
3: पुराने गाने सुनते हैं भाई साहब।
2: जी जी, बहुत अच्छी बात है, आप पुराने गानों के शौकीन हैं। जी जी, कितनी
3: आपके नियमित श्रोता हैं।
2: जी जी जी, और बताएं कुछ कहना चाहेंगे या हम आपको सीधे गाने पर ले जाएं?
3: ठीक भाई साहब, थैंक यू।
2: ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: और भाई 7:53 का वक्त हो चुका है और वक्त बहुत कम बचा हुआ है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं 0522 2738 845 2738 852 और 2982 3770। अभी देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: मिंटू तिवारी, ग्राम भखारना, तहसील खाड़ा, जिला
0: फतेहपुर से बोल रहे हैं
1: जी।
0: और बताएं क्या हाल चाल है मिंटू जी।
1: बढ़िया है सर, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे। मतलब
0: जी आपकी आवाज कुछ कट रही है, शायद लाइन में प्रॉब्लम है। हेलो।
1: हाँ हाँ हेलो
0: जी। जी अब आ रही। और बताएं क्या हाल चाल है, कुछ कहना चाहेंगे। गाना कौन सा
1: गाना डेडिकेट करना चाहते हैं किसी को
0: जी? गाना तो बता दे कौन सा।
1: आप जमाना दीवाना का तुझसे पूछूं एक सवाल, मेरे सवाल का दे तू जवाब।
0: क्या बात है, और डेडिकेट किसको करना चाहेंगे?
1: पहले तो आपको, आपकी एफएम की टीम को,
0: सुरेश
1: कुमार होगा सिद्धार्थ के पुरोवा से, और रसूलपुर गुलराज प्रभाकर तिवारी जी, राजेंद्र प्रसाद होगा
0: जी
1: सीतापुर से, होगा क्षमा परवीन जी, नहीं लगता वो शेष बहुत अच्छा फोन करती तो बड़ा अच्छा अंदाज देता
0: जी।
1: राहुल भाई इटावा से होगा और राजेंद्र प्रसाद होगा वहाँ रसूलपुर गुलराज है
0: जी,
1: और मेरे भाई हैं, बड़े भाई विनोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, सतीश तिवारी, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी
0: सुनने वालों को मिंटू तिवारी की तरफ से गाना सुनवाया जा रहा है ना। देखिए गाना आ गया, ये पहुंचा गाना आपके पास।

और 7:56 का वक्त, मुझे अनुमति दीजिए फिर किसी दिन किसी प्रोग्राम में बिल्कुल हाजिर होऊंगा और आपसे मुखातिब होऊंगा। अभी के लिए बस यही कहूँगा, अपना पूरा ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना। और सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा पूरी की। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रदेश के अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया और मंत्रियों द्वारा अनुदेशकों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में अयोध्या में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अनुदेशकों को चेक

वितरित किया। इस अवसर पर श्री शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश कभी बीमारू प्रदेश कहा जाता था, लेकिन आज यूपी तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस मौके पर गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है, हमारी सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। मंत्री संजय गंगवार ने कहा कि जनपद में 1985 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल प्राप्त कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कन्नौज जनपद के सभी 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 3 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आज मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले में रोगियों की निशुल्क जांच, उपचार, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। मेला में 1500 से अधिक मरीजों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान आयुष्मान योजना के तहत 26 गोल्डन कार्ड बनाकर भी वितरित किए गए। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना जताई है। विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी व पूर्वी प्रदेश में कई जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
3: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर. शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद. शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
4: है.

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: Kabhi alsai dopahar ki ruswai, to kabhi dhalti hui sham ki angdai.
4: Sham hone ko hai.
3: Pyar ki barish, mohabbat ki thandak, ishq ki aahein, tanhai ka ehsaas.

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: कहना ही सही, सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है तो ताबीर करके देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाए, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आबशार 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन।

तू कहीं भी रहे तेरे सर पर इल्जाम तो है, तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। और यकीनन ये नाम जब शामिल हो जाता है जिंदगी में तो जिंदगी वाकई में बड़ी खुशगवार हो जाती है। 8:13, 7:01, प्रोग्राम आबशार में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ।

जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। वाकई जिंदगी बड़ी खुशगवार हो जाती है। लेकिन अगर हम उस माजी की यादों में खो जाते हैं तो कई बातें दिल को खुश भी करती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें दिल को गमगीन भी कर जाती हैं। और मैं कहूंगा कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो नए गिले, वो नए शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो।

न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, और वक्त के साथ वो मुलाकात हो भी जाती है, और फिर गुजरते वक्त में जो मुलाकातें होती हैं वो हर शख्स यही चाहता है कि ता जिंदगी वो मुलाकातें कायम रहें, कभी साथ एक दूसरे का ना छूटे। और फिर अगर कोई और जिंदगी में आने की कोशिश करता है तो फिर दिल के हालात, दिल के जज्बात कुछ ऐसे हो जाते हैं जो शायद शायद जिंदगी को बेहतर नहीं लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी और के दिल में समाने की जरूरत क्या है, तू अगर है तो समाने की जरूरत क्या है, सब कुछ तो तू ही है ना। आबशार में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की.
3: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई.
4: शाम होने को है.
3: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास.

0: गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
4: मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है।

सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं किसी के दस्त तलब में हूं तो किसी के हरफे दुआ में हूं। मैं नसीब हूं किसी और का, मुझे मांगता कोई और है।

उनको भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, और जिंदगी में कई सारी बातें हो जरूरी तो नहीं, मुकम्मल जिंदगी हो जरूरी तो नहीं, जो कुछ चाहा है वो मिल जाए जरूरी तो नहीं, लेकिन यकीन जानिए वो चीजें जो इंसान चाहता है उसे मिल जाती हैं, तो उससे कोई ज्यादा खुशकिस्मत भी नहीं होता। तमन्ना हर शख्स करता है, हासिल शायद हर किसी को नहीं होता। इसीलिए तो इस तरह से मोहब्बत की शुरुआत कीजिए कि जो पहला दिन हो वही आखिरी दिन भी हो, कुछ ऐसा ही हो मोहब्बत में।

यकीनन जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए कोई भी जगह हो, कोई भी मौका हो, कोई भी मौजू हो, आगाज हमेशा बेहतरीन होना चाहिए। और प्रोग्राम आबशार से मेरी यानी जमशेद की विदाई अहमद फराज के इस शेर के साथ कि तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, तुम आए हो ना शब इंतजार गुजरी है। और थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा वक्त, और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होगी मुलाकात आपके अपने खूबसूरत से प्रोग्राम पॉप टाइम के साथ। आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री

0: पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपेन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, इन तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की

0: हुई हो, तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
2: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
3: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता।

श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

इस सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, हैरते आशिके जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

बिल्कुल जहां हैं आप वहीं हैं हम 9:04 साथ में है कुछ सेकंड्स 100.7 एफएम रेनबो पर वादे के मुताबिक एक बार फिर मैं यानी जमशेद जुड़ चुका हूं आपके साथ बिल्कुल मैं वही हूं जो कुछ देर पहले आपके साथ था और अगले दो घंटे और भी साथ रहने वाला हूं आपके साथ यानी एक घंटा ये पॉप टाइम का और उसके बाद दो घंटे रजनीगंधा के तो बस इसी तरह से ये दौर भी रहेगा चलता फिलहाल पॉप टाइम का सफर हो चुका है शुरू और शुरुआत तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा तो आप हमारे साथ हम आपके साथ और हमारे साथ है 100.7 एफएम रेनबो की फ्रीक्वेंसी और साथ में है पॉप टाइम

your voice. I am singing song. Soup song. Flop song.

0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज़े
3: का अंडा. स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
5: और काले चश्मे के बाद आ गए हैं जसवीर जसी कुछ कहने के लिए, क्योंकि चश्मे ने असर तो किया है भाई. 9:15 साथ में कुछ सेकंड जमशेद आपके साथ पॉप टाइम में.

सुखबीर भी कुछ कहने के लिए है बेकरार। और सुखबीर कहेंगे ढेर सारी बातें, फिलहाल ढेर सारे मेल आ चुके हैं आपके हमारे पास, चलिए उनकी भी बात करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा गीत सुने।

और ये मेल आ चुका है मलियाबाद से, आकाश लोधी ने लिखा है और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं घर में बैठे और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। और अगला मेल हमारे पास आया आनंद तिवारी का। आनंद तिवारी जी ने मेल किया है मल्लावा हरदोई से और कहते हैं, अपनी मुस्कुराहटों के पीछे गम का समंदर रखते हैं, किस हाल में है किसको पता, ना चले दिखावे के लिए खुशनुमा मंजर रखते हैं। गाने ज़बरदस्त आपको लग रहे हैं आज के। और साथ साथ मेल हमारे पास है अरविंद कुमार दुबे जी का, इन्होंने हमें मिर्ज़ापुर से किया है मेल और प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं। और कुछ नाम इन्होंने लिखे हैं, अरविंद, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, ग्राम धर्म देवा पोस्ट छठहरा, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। देखिए मैंने पूरा पता आपका पढ़ दिया। और वैभव प्रकाश का भी मेल आ चुका है नागपुर महाराष्ट्र से, प्रोग्राम को पूरी तरह से कर रहे हैं एंजॉय और गाने इनको भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और लिखते हैं कि कुछ तो बात है तुझमें कि तेरा इंतज़ार रहता है, गली से गुजरती है खुशबू, तेरे आने का एहसास होता है। चलिए चलिए, आपने कह दिया पॉप टाइम के लिए, मैंने पॉप टाइम में आपका जो लाइनें थी वो पढ़ दी। आप गंगोई सीतापुर के सभी साथियों को नमस्कार कह रहे हैं। राजकिशोर जी का मेल आ चुका है, ईमानदारी से काम करने वालों का शौक भले ही पूरा ना हो लेकिन नींद ज़रूर पूरी होती है। और आपने हमें कहाँ से मेल किया है, मेल कहाँ से किया आपने नहीं लिखा, चलिए ये भी लिख दीजिएगा अगले मेल में। फिलहाल वकील अहमद का भी मेल आ चुका है, वालेकुम अस्सलाम, वकील मंसूरी कटका हतूरी ज़िला सीतापुर से, और साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी, पिंकी, महक और अंसारी और अहमन का नाम इन्होंने लिखा है। जावेद अख्तर का भी मेल आ चुका है, वालेकुम अस्सलाम, और आपने कहा है कि आपके नारियल जैसी कड़क आवाज़ सुनने के लिए कान तरह तरह से, पॉप टाइम का जलवा सिर चढ़कर बोल रहा है, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपका रहे मेल, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा और शाहीन का आपने लिखा है नाम। तो चलिए अभी और भी ढेर सारे मेल हैं, एक आध और पढ़ देता हूँ जिसमें किसी को ये ना लगे कि अच्छा मोनू सेठ जी आपने भी मेल कर दिया है और पॉप टाइम में आपका हृदय से स्वागत बा भैया मोनू सेठ।

और ऐसा ही होता है जब दो नैना लड़ते हैं और उसका जवाब भी कुछ आने वाला है इस गाने के साथ। और ये मुकाबले तो लगातार होते रहे हैं, होते रहेंगे। फिलहाल 9:34 साथ में कुछ सेकंड्स मैं हूं जमशेद आपके साथ और जो मेल है आपकी वो मैं लगातार अब तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल इस गाने को करते हैं एंजॉय।

ये गीत लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ, लेकिन मेल की बात करता हूं मैं। ढेर सारे मेल जो आपके हमारे पास आ चुके हैं। विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर पोस्ट, रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर, और गुड इवनिंग आपने कहा है, और सुपर हिट लाजवाब गाने आपको सुनने को मिल रहे हैं, और कुछ नाम आपने लिए हैं, सुनील गोकुलपुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, संतोष मौर्य हरदोई से, संजय गुड़वा हरदोई से, और ममता हरदोई से, इन सबको गाने पसंद आ रहे हैं। मनोज विश्वकर्मा का भी मेल आ चुका है, बड़ौदा बाजार ग्राम तारा शिव से, छत्तीसगढ़ से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बोले तो गुड इवनिंग सर जी, प्रोग्राम की प्रस्तुति छत्तीसगढ़ी में बोलूँ तो ताबड़तोड़ है, क्या बात है। और प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है। सोनल सिंह का भी मेल आ चुका है हमारे पास, हरदोई जिला रायपुर से हूँ, और आज बहुत दिन के बाद मेल कर पाए, मुझे एफएम के सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, और हमारे पिताजी और मम्मी बहुत बड़े फैन हैं, एफएम रेडियो सुनना हमें बहुत पसंद है, और आज गांव आए तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो चलिए, और पिताजी का नाम आपने लिखा मलखान सिंह जी, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम को कर रहे हैं एंजॉय। और बाबू अंसारी जी का भी मेल आ चुका है, अहमदपुर बाजार बारा बंकी से, और डांस करता हुआ एक इमोजी भेजा है, क्या बात है। और पूरी तरह से गाने आप एंजॉय कर रहे हैं। अमन नवाब का भी मेल आ चुका है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाना बनाते समय डांस करते हुए मैं खाना बना रही हूँ, प्रोग्राम को सुन रही हूँ। और आगे की बात करूं तो पवन कुमार जी का मेल आ चुका है, आपने हमें लखनऊ से मेल किया है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। साथ साथ इंद्रपाल मिश्रा का भी आ चुका है मेल, पूरी तरह से प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। आपने अमृता सीतापुर से किया है मेल, और कहते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर कार्यक्रम सुनते हैं, और समस्त ग्रामीण श्रोता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत कुमार जी का भी मेल आ चुका है, साथ साथ हमारे पास मेल आया है विजयपाल यादव जी का, नमस्कार, पता पढ़ दूं, चलिए, ललहुआ जिला खीरी से आपने किया है मेल, गजलें भी आपको अच्छी लगी और गाने भी आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक और मेल आ चुका है अमर सिंह यादव का, और अमर सिंह यादव का जो मेल आया है उसमें लिखा हुआ है यूपीपी गुड इवनिंग जी, बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे हैं। विरजीत सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराइच से आपने किया है मेल, और बिल्कुल कोशिश रहती है खूबसूरत से गीत आपको सुनने को मिले। गुड़िया लुधी फ्रॉम मलिहाबाद से किया है मेल, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपको लगता है।

है पॉप टाइम, और साथ साथ शहनू नूर अंसारी का भी मेल आ चुका है। प्रोग्राम को सभी लोग कर रहे हैं एंजॉय। मटकली जिला बरेली से आपने मेल किया है और इस गीत को सुन रहे हैं। लैला, एक नोट डाउन था है ना और ये गाने काफी मकबूल हुआ था अपने दौर में।

और आज की रात ढेर सारे होंगे गीत, खूबसूरत से रजनीगंधा में होंगी मोहब्बत की बातें, इश्क की बातें, हुस्न की बातें, और इसी तरह से ये जो दो घंटे होंगे रजनीगंधा के आज गुजरेंगे खूबसूरत बातों के साथ। फिलहाल आपसे विदा लेने से पहले कुछ मेल हमारे पास आ चुके हैं, 9:54 साथ में है कुछ सेकंड्स, और मेल है किसका किसका, चलिए एम के राज LMP यानी लखीमपुर खीरी से आपने किया है मेल। मुनेश कुमार है भानपुर हरुआ जिला लखीमपुर खीरी से, पॉप टाइम बहुत लाजवाब लगता है, रोज लाइव सुनते हैं और कहते हैं कि आपकी आवाज़ का जादू दिल को छू जाता है, पॉप टाइम सुनते हैं और हर गम दूर हो जाता है, क्या बात है। चलिए रिक्वेस्ट आपने छोटी सी की है तो चलिए पूरा गाना देखिए, गाने मैं बिल्कुल नहीं काटता, गाने पूरे चलते हैं और बीच में गाना रोकना तो बेहतर नहीं होता। अनुराग गुप्ता जी का भी मेल आ चुका है हमारे पास, आपको मज़ा आ रहा है पॉप टाइम सुनकर, वैसे छोटे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट बिल्कुल है आपको पूरी तरह से, काजल गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता, अंश गुप्ता, यश गुप्ता और अनुराग गुप्ता, यानी मेल भेजने वाले आपने अपना भी नाम लिख दिया है। अहमद नवाब का भी आ चुका है मेल और अगली बार आपको ब्लैंक ईमेल करूंगे क्योंकि आप सही से मेल शामिल नहीं करते। क्यों भाई, पूरा मेल तो आपका हमने पढ़ दिया और ये वाला भी मेल देखिए पूरा पढ़ दिया है, ब्लैंक नहीं है, एक प्यारा सा आपने टैडी बनाया है। और रामराज जी का भी मेल आ चुका है, पॉप टाइम जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से सुन रहे हैं रामराज, राजू, भानु,

पप्पू पासी मनीष नीरज मधु मिर्जा पवन कुमार यादव और आपको हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त इसी तरह से गुजरता चला जाता है और वक्त गुजरता चला जाएगा, यानी 9:56 हो चुके हैं, साथ में कुछ सेकंड्स भी चल रहे हैं। मैं यानी जमशेद लूंगा फिलहाल प्रोग्राम पॉप टाइम से इजाजत, और एक छोटे से न्यूज ब्रेक के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद फिर करता हूं आपसे मुलाकात आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ। तो आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। कन्नौज जिले में आज जनपद के सभी 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 3 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ। नोडल अधिकारी आरोग्य स्वास्थ्य मेला डॉक्टर जितेंद्र कुमार, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण किया गया। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले में आने वाले रोगियों की निःशुल्क जांच, उपचार, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, परिवार कल्याण, हेपेटाइटिस बी एवं सी कार्ड टेस्ट, टीबी संभावित रोगियों की जांच, नेत्र रोगियों का परीक्षण, गोल्डन कार्ड आदि सेवाएं प्रदान की गईं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज मऊ भ्रमण के दौरान मधुबन तहसील के पदारथपुर में 132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र का विधिवत भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। लगभग 61.11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक विद्युत उपकेंद्र की कुल क्षमता 2x63 MVA यानी 126 MVA होगी, जिससे मऊ जनपद की मधुबन तहसील तथा बलिया जनपद की बेलथरा रोड तहसील के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती विद्युत मांग और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए इस नवीन विद्युत उपकरण का निर्माण अत्यंत आवश्यक था। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य आज जिला पंचायत सभागार में अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किए जाने के कार्यक्रम में

मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री के द्वारा जन प्रतिनिधि गणों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के लखनऊ में आयोजित अंशकालिक अनुदेशक सम्मान समारोह कार्यक्रम का जिला पंचायत सभागार प्रयागराज में सजीव प्रसारण भी किया गया। उप मुख्यमंत्री के द्वारा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मंच पर 23 अंशकालिक अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया गया। प्रदेश सरकार की लोक जन कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत जनपद लखनऊ में निराश्रित और बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए एक अत्यंत सुव्यवस्थित ढांचा विकसित किया गया है। वर्तमान में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों की संख्या में आश्रय स्थल संचालित हैं, जो न केवल गोवंश को सुरक्षित आवास प्रदान कर रहे हैं बल्कि उनके आहार, पेयजल और स्वास्थ्य की भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं। जनपद में संचालित कान्हा उपवन जैसे विशाल केंद्रों ने निराश्रित, बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गोवंश को नया जीवन प्रदान किया है। 53 बीघा जैसी विस्तृत भूमि पर स्थापित ये केंद्र आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां गोवंश की देखरेख के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की.
3: सुबह की खूबसूरत शुरुआत.
4: Love you, जिंदगी.
3: सुकून से भरा दोपहर.
5: पुरानी जींस और गिटार.
3: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद. शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर.

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

और मैं कहता हूं हमेशा कि जब भी किसी से कोई वादा करो तो उस वादे को पूरा जरूर करो। यकीन जानिए, जब वादे टूटते हैं ना, तो उसकी तकलीफ का अंदाजा या उसकी तकलीफ का एहसास उस शख्स से पूछिए जिससे वादा किया गया हो। कुछ देर पहले मैंने आपसे वादा किया था, होगी मुलाकात आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा में, और उस वादे को पूरा करते हुए एक बार फिर मैं यानी जमशेद जुड़ चुका हूं आपके साथ 100.7 FM।

तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। और इस पर मैं ये कहूंगा कि दुनिया भर की खुशियां मुकम्मल हों ना हों, बस ये मेरी दुआ कबूल हो जाए कि मेरे रिश्तों की किताब में तेरा नाम भी शामिल हो जाए। कुछ ऐसे तो मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए।

वाकई बड़ा खूबसूरत सा होता है किसी की आमद का वो हर एक लम्हा, जिसमें जुड़ जाती है उसकी बातों की खुशबू, जुड़ जाते हैं कुछ उसके साथ बिताए हुए पल, उनकी यादों में उसका मुस्कुराना, इटलाना, छोटी सी बात पर रूठ जाना, मान जाना, हर एक खूबसूरत सा एहसास जुड़ जाता है उसके साथ जब वो जिंदगी में शामिल होता है और एक साथ ख्वाब देखते हैं।

जाए रहे हम संग हैं और हमेशा साथ रहेंगे, संग रहेंगे, ये वादा एक दूसरे से जरूर होना चाहिए। बदल जाए घर बेकरारों की दुनिया, बदल जाए घर बेकरारों की दुनिया, तो मैं अपनी दुनिया लुटा दूं खुशी से। समझते हैं हम खेल दुनिया के गम को, हमारी खुशी है तुम्हारी खुशी से।

0: सदाएं,
1: खामोशियों की सदाएं बुला रही है मुझे। तेरी मोहब्बत में मैं खुद को खो चुका हूं। पहले मैं खुद को जानता था, पर जब से मैं तुझसे मिला हूं, मेरा हर एहसास बदल गया है।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का.
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
3: सुबह की खूबसूरत शुरुआत. सुकून से भरा दोपहर.
4: पुरानी जींस और गिटार.
3: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद. शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर.

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

और धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। तेरा छू लेना किसी दुआ सा लगता है, तेरी नजरें जब मुझ पर ठहरती हैं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। अब मैं खुद को नहीं ढूंढता क्योंकि मैंने खुद को तुझ में पा लिया है। तेरी मोहब्बत अब मेरी पहचान बन गई है, जिसे मैं कभी खुद को अलग नहीं कर सकता क्योंकि तू ही मेरी जिंदगी बन गई है।

दर्द छुपा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी लगती है। दर्द छुपा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी लगती है। जाने क्यों बिन तेरे मुझको हर रात हर शाम अधूरी लगती है।

का आगाज था ये मन मेरा, और कोई ना कोई नाम जिंदगी में लिखकर जरूर जाता है। अब समझना यह है कि जो नाम लिखकर गया है वो कितनी दूर तक आपका साथ निभाता है या कितनी देर तक आपका साथ निभाता है। मैं तो बस यही कहूंगा कि तेरी मोहब्बत मेरी रूह का सुकून है, तेरे बिना भी मैं तुझमें जीता हूं, हर सांस में हर सांस के साथ तेरा नाम लेता हूं। इश्क कोई लफ्ज नहीं, ये तो एक एहसास है जो बस बस तुझसे जुड़कर मुकम्मल होता है, और शायद इसको ही मोहब्बत का एहसास कहते हैं।

कोई हमें बता दे, और बताएगा कौन? ये बातें तो दिल से होती हैं, ये बातें तो दिमाग से होती हैं, ये बातें तो आंखों से भी हो जाती हैं, बस नजरें मिलती हैं और नजरों नजरों में ही वो सारी बातें सब कुछ आया हो जाती है। 10:55 साथ में कुछ सेकेंड्स, ये वक्त मैंने इसलिए बताया कि प्रोग्राम रजनीगंधा का आधा वक्त खत्म होने को आया। एक छोटा सा न्यूज ब्रेक और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होगी फिर से मुलाकात, और आपसे मैं यही कहूंगा कि आप बने रहिए हमारे साथ यानी 100.7 FM रेनबो के साथ, क्योंकि हमें भूलना इतना आसान नहीं है। चलिए कुछ देर के बाद फिर खूबसूरत सी बातें और उन बातों के साथ खूबसूरत गीतों की सौगात।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सेमी कंडक्टर नीति 2024 राजकीय औद्योगिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण ठोस कदम है। यह नीति न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार कर रही है। रोजगार सृजन, तकनीकी आत्मनिर्भरता, वैश्विक निवेश और आर्थिक विकास, इन सभी पहलुओं को समाहित करते हुए यह नीति उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो रही है। अमरोहा में आज जवाहर नवोदय विद्यालय बसेड़ा तगा में 33वीं एनसीसी के 10 दिवसीय कैंप में 600 छात्र छात्राओं को पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों की जानकारी व यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर यातायात नियमों का पालन करने हेतु शपथ दिलाई गई। यातायात संचालन करने में प्रयोग होने वाले यातायात उपकरणों के बारे में, जैसे लेजर स्पीड, रडार गन, बर्थ इन लाइजर, डेसिबल मीटर, बैटन लाइट, लाइट फ्लोरोसेंट जैकेट आदि के बारे में भी जानकारी छात्र छात्राओं को दी गई। इस मौके पर यातायात प्रभारी राजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गौतमबुद्ध नगर जिले के अनुदेशकों हेतु बढ़े हुए मानदेय के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सोमेंद्र तोमर, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रियंका, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित

कर किया गया। जिले में 7 अनुदेशकों को सांकेतिक चेक वितरित किए गए। मुख्य अतिथि सोमेंद्र तोमर ने अपने उद्बोधन में सभी अनुदेशकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कानपुर नगर में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि यह निर्णय बच्चों के व्यक्तित्व विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनुदेशकों के योगदान का सम्मान है। बढ़ावा मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा तथा अनुदेशकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से भी आच्छादित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की.
3: सुबह की खूबसूरत शुरुआत.
4: Love you जिंदगी.
3: सुकून से भरा दोपहर.
5: पुरानी जींस और गिटार.
3: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद. शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर.

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

दिल दिल का एतबार क्या कीजिए, ऐसा ही होता है मोहब्बत का एहसास। और कहते हैं कि अगर मोहब्बत का एहसास साथ हो तो दुनिया की हर चीज खूबसूरत सी नजर आती है। बस इस बाग में भी कुछ ऐसी ही बातें, खूबसूरत शेरों की चाशनी में डूबे हुए प्रोग्राम रजनीगंधा में, और जिसे लेकर आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ।

और वाकई जिंदगी की दास्तान बड़ी अजीब होती है, मोहब्बत की दास्तान बड़ी अजीब होती है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको उनकी मोहब्बत मिल जाती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हर किसी को ये मकाम हासिल नहीं होता, तो शायद गलत नहीं होऊंगा मैं। तेरा ख्याल, तेरी तलब, तेरी आरजू, तेरा ख्याल, तेरी तलब, तेरी आरजू, मैं उम्र भर चला हूं किसी रोशनी के साथ।

जो तुम कहो पसंद वही बात कहेंगे, सिर्फ तुझ पे है एतबार मुझे। अब तो आ जा, है इंतजार मुझे, बस तेरी एक झलक पाने को दिल ये करता है बेकरार मुझे। मेरे दिल की हर एक खुशी के लिए करती रहती है तलबगार मुझे। तुझ में डूबा हूं एक दिन कैसा, ऐसा ना कर दरकिनार मुझे। दिल ये करता है बेकरार मुझे, बस तेरी एक झलक पाने को

प्यार की राहों में तेरे साथ चलूं, तेरी बाहों में मेरी जिंदगी बिताऊं, तेरी नजरों में मोहब्बत की चमक है, तेरे साथ होकर हर गम को भूल जाऊं, ऐसा हो तेरा साथ।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
5: पुरानी जींस और गिटार,
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
6: है रते आशिकी जगा।
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
7: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
8: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

जाने कौन आसपास होता है, आसपास तो वही होता है जिससे आपने दिल लगाया होता है, जिसको अपना सब कुछ सौंप दिया होता है। लेकिन मैं कहूं कि इश्क कोई खेल नहीं जो हर किसी से किया जाए, ये तो रूह का सुकून है जो बस एक से निभाया जाए।

हर लम्हा अधूरा सा लगता है। उसकी मोहब्बत सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं, वो मेरी सबसे खूबसूरत हकीकत बन गई है।

मेरे दिल की सबसे प्यारी धड़कन बन गई है। उसकी मौजूदगी में ये दुनिया हसीन लगती है, उसके बिना

ना जाए रात, टूट ना जाए सपने। और कहते हैं कि जब कोई मोहब्बत दिल से करता है तो उसका हर लफ्ज दुआ बन जाता है, और तेरा नाम मेरी हर दुआ का सबसे हसीन हिस्सा है। 11:51 साथ में है कुछ सेकंड्स। प्रोग्राम रजनीगंधा में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ, 100.7 FM रेनबो के साथ।

कुछ कहा और दिल ने बहुत कुछ सुना, और अभी दिल में बहुत सी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। वक्त तो बस यही कह रहा है कि रजनीगंधा आज बस यहीं तक। तो इस वादे के साथ फिर किसी रोज किसी प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी आपसे। तब तक मैं यानी जमशेद आपसे कहूंगा खुदा हाफिज, शब खैर। और हां, चलते चलते एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। खुदा हाफिज़।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नींव का निर्माण सबसे कठिन कार्य होता है। कमजोर नींव पर सशक्त, समर्थ और मजबूत इमारत का निर्माण नहीं हो सकता। अक्सर हम नींव की उपेक्षा कर देते हैं क्योंकि वह दिखाई नहीं देती। अनुदेशकों व शिक्षा मित्रों का कार्य अत्यंत गरिमापूर्ण है, इसलिए उनका मानदेय भी सम्मानजनक होना चाहिए। सरकार ने अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाकर 17,000 रुपये किया है। साथ ही उनको 5,00,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। अनुदेशक और उनके परिवार को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री आज लोकभवन में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह के अवसर पर अनुदेशकों को मानदेय का प्रतीकात्मक चेक वितरण करने के उपरांत अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। फर्रुखाबाद लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत एवं जिलाधिकारी डॉ अंकुर लाठर की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान एवं उनके बढ़े हुए मानदेय वितरण के शुभारंभ हेतु एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अनुदेशकों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंशकालिक अनुदेशकों के समर्पण, योगदान एवं शिक्षा व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करना है। जनपद उन्नाव में आज मुख्य अतिथि राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मद्य निषेध नितिन अग्रवाल की उपस्थिति में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय एवं अनुदेशक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने 5 शिक्षकों को बढ़े हुए मानदेय के प्रतीकात्मक चेक प्रदान कर बधाई दी। जनपद कासगढ़ के सभागार में अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद के 88 अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलने का कार्यक्रम में हर्ष व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा व सुना गया। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। सूर्योदय 5:18 पर, सूर्यास्त 6:47 पर होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन प्रातः 7 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेडियो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा समाप्त होती है। प्रातः 5:55 पर